सुप्रभात, हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 11वीं तिथि। तदनुसार तारीख 2 जुलाई सन 2026। इस वक्त सवेरे के 5:57 हो चुके हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हम FM सन सिटी से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.1 MHz पर सवेरे के 6 बजने वाले हैं। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम

0: मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये FM सन सिटी है, FM बैंड 102.1 MHz पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब से लेकर सवेरे 8 बजे तक आप सुनेंगे हमारे विविध भारती केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम।

वंदन वार सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, स्वयं को तलाशने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये समस्त संसार ईश्वर की देन है। सुख दुख हानि लाभ क्रोध मोह लोभ जैसी माया भी उसी ईश्वर की देन है। भक्ति प्रेम स्नेह जैसे भाव भी तो ईश्वर की रचना है। ये प्रत्येक जीव पर निर्भर है कि वो माया चुनता है या ज्ञान।

आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत सुबह 6:35 से श्री रामचरित मानस सुन सकेंगे। आज सुनिए 237वां भाग। संगीत सरिता में श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। दूसरी कड़ी सुनिएगा आज। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रूण मजुमदार। 7 से भूले बिसरे गीत। सुबह 7:30 से हम है राही प्यार के। 8 से समाचार प्रभात। सुबह 8:15 से त्रिवेणी के अंतर्गत कार्यक्रम त्रिवेणी सुनिएगा। 8:30 से चित्रलोक। 9:30 केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। पिटारा में आज के मेहमान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आज सुन सकते हैं 10 से। और इस कार्यक्रम में सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार, कवि, व्यंगकार, निबंधकार, आलोचक, अनुवादक, संपादक, समीक्षक, लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी। सुबह 11 से रंग तरंग, 12 से हिंदी में समाचार, 12:05 से यादों की महफिल और दोपहर 1 का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर का। दोपहर 2 से त्रिवेणी, 2:15 से दोपहर समाचार, 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। दोपहर 3 से सखी सहेली कार्यक्रम और 4 होंगी आपकी फोन इन फरमाइशें पूरी कार्यक्रम हेलो फरमाइश के साथ। शाम 5 छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने, 6 से सुनिए हिंदी में समाचार और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 से संध्या रंजन सुन सकते हैं कार्यक्रम और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। दूसरी कड़ी सुनिएगा। कलाकार है बांसुरी वादक पंडित रूनू मजुमदार। 7 से जय माला। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आज इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में निर्देशक फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की दूसरी कड़ी सुन सकते हैं। प्रस्तुति जुबैर खान की। 7 सुनिए रात 8 से हवा महल में। लेखन सुरेंद्र कौशिक का, निर्देशन सुशील बैनर्जी का। 8:15 से चित्रलोक। 8:45 से सुन सकते हैं समाचार संध्या। 9 से सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। रात 10 से छाया गीत।

10:30 से ढलती जाए रात और 11:00 से रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस आज 237वीं कड़ी।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। सभी श्रोताओं को नमस्कार। रोनू दादा, आपका एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो बताइए, आज की इस कड़ी में अपने खजाने से कौन से मोती बिखेरेंगे? मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो कि बांसुरी के जन्मदाता, बांसुरी की उत्पत्ति, इस संदर्भ में कुछ बताएंगे?
2: इंग्लिश में दो लाइनें कही जाती हैं, When there was nothing in the world, still there was sound. And that sound was sound of nature. जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तो भी नेचर था।
1: बिल्कुल।
2: जीव जंतु, आदि मानव या कुछ भी, उससे भी पहले पेड़ पौधे थे, नदियां थी, जंगल थे, वन थे, तो बांस भी था। तो ये कहना कि भगवान कृष्ण जी से बांसुरी की शुरुआत हुई, ये गलत है। उससे पहले भी बांसुरी थी।
1: बिल्कुल।
2: उन्होंने बांसुरी को एक साज की तरह बजाया जिससे लोग प्रेरित हुए, मगर जंगल में उन बांस के अंदर जो कीड़े मकोड़े छेद कर देते, मैंने खुद जाके सिलचर, असम सिलचर में जाके मैंने खुद जंगल में मैं गया था
1: जी।
2: और मैंने देखा कि ऐसा लग रहा है कि हवा जब चल रही तो बहुत लोग एक साथ बांसुरी बजा रहे हैं, तो वो कीड़े मकोड़े जो छेद करते हैं वहां से इंसान को बजाने की प्रेरणा मिली, उन कीड़े मकोड़ों की वजह से। और बांसुरी लोक संगीत में बजती रही
1: जी।
2: और शास्त्रीय संगीत में तो सारंगी सबसे प्राचीन वाद्य माना जाता है और रावण हत्ता के रूप में बजता था
1: जी।
2: क्योंकि रामायण काल में रावण उसको बजाते थे। और शास्त्रीय संगीत में बांसुरी का जो स्थान है वो नहीं था। लोग सोचते थे ये तो बस छोटी छोटी बंसी है, ये नुमाइश में बजेगा और लोकवाद्य कोई भाटियाली धुन या कजरी बनारस की बजेगी और या तो फिर आदिवासी लोग बजाएंगे
1: जी।
2: तो इसको शास्त्रीय संगीत में लाने का श्रेय स्वर्गीय पंडित पन्नालाल घोष जी को जाता है।
1: जी जी, जी।
2: संक्षिप्त में अगर मैं कहूं तो उनका उम्र बहुत कम था, मेरे जन्म से पहले वो गुजर गए 1960 में। तो उन्होंने ये बड़ी बांसुरी जो आप देख रहे हैं
1: जी जी,
2: जिसमें मैंने पिछले एपिसोड में मैंने खाली हाथ बजाई थी
1: जी,
2: इस बांसुरी का निर्माण उन्होंने किया।
1: क्या
2: और सा कैसे बजेगा,
1: हाँ।
2: इस कंसेप्ट, क्योंकि लोक संगीत में तो क्या है कि चार छेद ओपन करके भी बजा दीजिए, पांच छेद भी खुला रहे तो क्या नुकसान है।

0: कोई साइंस नहीं है ना उसमें,
1: जी जी
0: उसमें सिर्फ आत्मा है। जब वो राग रागिनी में आ जाता है तो उसमें साइंस भी आ जाता है, विज्ञान आ जाता है,
1: सुर आ जाता है फिर
0: जी,
1: सुरों की संख्या
0: जी। तो उन्होंने तीन होल बंद रखना तीन खोलना, ये सा दे दिया हमको।
1: अच्छा,
0: इतनी
1: क्या
0: बड़ी
1: बात है,
0: उनकी, और ये जो छोटी उंगली है उससे तीव्र मध्यम बजाने की कला भी। इसीलिए जो पन्ना बाबू को फॉलो करते हैं वो सेवन होल टेक्निक बजाते हैं, और जो हरिप्रसाद जी के गुरु भोलानाथ जी की टेक्निक से बजाते हैं वो लोग छह होल से बजाते हैं।
1: वाह क्या बात है।
0: और फिर उसके बाद पन्ना बाबू और रघुनाथ सेठ जी को ये भी श्रेय जाता है कि थंब के नीचे एक होल लगाए ताकि सा से पा तक भीड़ देखे। मैं बजा के सुना रहा हूं
1: जी
0: ऐसे फ्रेज जो बांसुरी में बजते नहीं थे वो बजने लगे। और आज उसके बाद चार प्रमुख बांसुरी वादक पन्ना बाबू से प्रेरणा लेके बने। पहले बुजुर्ग पन्ना बाबू के सन इन लॉ, उनके जवाई, क्योंकि पन्ना बाबू की बेटी से उन्होंने शादी की थी,
1: जी जी
0: देवेंद्र मुर्देश्वर जी,
1: जी
0: उसके बाद मेरे गुरु जी बड़े थे वो पंडित विजय राघव राव जी,
1: जी
0: और उसके बाद रघुनाथ सेठ जी, और इन तीनों से छोटे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। हरि जी ने तो कमाल ही कर दिया।
1: जी
0: मैंने एक बार हरि जी को एक नाम दिया था, जन्माष्टमी के दिन पीटीआई ने मुझसे पूछा कि हर साल हम लोग एक बांसुरी वादक से बात करते हैं, इस साल वो आप हैं रोनू दादा। उसी साल मुझे कुमार गंधर्व अवार्ड मिला था,
1: जी जी
0: 2006।
1: जी जी
0: तो बोले आप पन्ना बाबू और हरि जी को कैसे देखते हैं। मैंने कहा कि पन्ना बाबू देवकी है
1: वाह
0: और हरिप्रसाद जी माँ यशोदा है।
1: क्या बात है, गजब
0: क्योंकि
1: उदाहरण दिया।
0: माँ देवकी ने जन्म दिया मगर बांसुरी को पाल पोस के बड़ा किया हरि जी ने। उन्होंने घर घर पहुंचा दिया, क्योंकि पन्ना बाबू का जो अधूरा काम था असामयिक वो तो 60 भी पूरा नहीं कर पाए,
1: बहुत कम उम्र में चले गए, बिल्कुल
0: 53-54 साल की उम्र में गुजर गए।
1: जी
0: तो बहुत सारा काम अधूरा था, उस अधूरे काम को इन चारों के साथ मिलकर हरि जी ने फिर पूरा किया। फिर वो पीटीआई ने पूछा तो फिर आप क्या है, मैंने कहा मैं सुदामा हूँ।
1: गजब क्या बात है
0: मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूँ,
1: अद्भुत।
0: मेरे पास कुछ नहीं है, वो झाल मुड़ी में जो मुड़ी डालते हैं वो मैं तौलिया में लपेट के कृष्ण को खिला दूंगा, वो खुश हो जाएंगे मेरा वादन सुन के।
1: पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने भी बांसुरी को जनता तक, आम जनता तक पहुंचाई और बांसुरी एकदम से प्रचलित हो गई। दादा आपने बांसुरी में कुछ नए प्रयोग किए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए।
0: मुझे ऐसा लगता था कि बीनकारी अंग जो है,
1: जी
0: जो कि रुद्र वीणा को बीन भी बोलते हैं,
1: जी
0: तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि बीन मतलब वो सपेरा जो बीन बजाता है वो बीन, तो बीनकार मतलब बीना,
1: जी
0: वादक के अंदर जो घसीट का जो काम होता है वो बांसुरी में आप ऐसे कह सकते हैं कि वो मैंने सबसे पहले घसीट और आंदोलन।
1: जी
0: जो चीज रुद्र वीणा में बजा के सारे तो भैरव में कोमल ऋषभ अति कोमल है और धैवत भी अति कोमल है, मतलब कोमल से भी और थोड़ा सा उतरा हुआ।

0: अब मंद्र सप्तक के लिए मैंने ये शंख बांसुरी बनाई
1: जी जी,
0: जो अब पूरे संसार में पॉपुलर है
1: जी जी।
0: और बहुत सारे बांसुरी वादक मुझे फोन करते हैं कि पंडित जी ये जो नीचे के सा मंद्र सप्तक
1: जी
0: की खरज

0: खर्च का काम के लिए ये जो आपने बनाया और इसको कॉन्सर्ट का हिस्सा ही बना दिया आपने, तो खुशी होती है कि वो कहते हैं ना कि मैं धुआं बन के जहां से चला जाऊंगा
1: जी,
0: मेरे वादन में मुझे ढूंढा करेगी दुनिया।
1: क्या बात है।
0: तो मैं धुआं बन के जहां से चला जाऊंगा तो मैं एक दिन नहीं रहूंगा, मगर मेरा शंख बांसुरी बच्चे बजाएंगे, बुजुर्ग बजाएंगे, मुझे उसकी खुशी है। तो मैंने कभी किसी को रोका नहीं कि ये मेरे नाम से रजिस्टर है, आप मत बजाइए, ऐसी मैंने दृष्टता कभी नहीं की। देखिए शंख बांसुरी में भैरव का, भैरव में शंकर भगवान की जटाओं का जो गहरापन है, भोले बाबा का, वो देखिए।

0: किया आपने
1: अति सुंदर अति सुंदर। तो दादा ये जो शंख बांसुरी आपने बजाई इसकी विशेषता भी बताएंगे हमारे श्रोताओं की क्या विशेषता है?
0: विजय राघव राव जी के बाद भारत रत्न पंडित रविशंकर जी से भी मैंने सीखा
1: जी।
0: तो मैं उनके साथ मॉस्को गया था 1988 में
1: जी जी।
0: भारत का फेस्टिवल ऑफ इंडिया वहां चल रहा था और आप जैसे जानते हैं रशिया शुरू से हमारा दोस्त रहा है
1: जी।
0: और रशियन लोग बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। वहां जब सब लोग सीख रहे थे मेरे सीनियर गुरु भाई पंडित विश्व मोहन भट्ट जी और पंडित तरुण भट्टाचार्य जी और पार्थो सारथी जो
1: जी,
0: मेरी जनरेशन का ही है, शुभेंद्र राव, ये लोग मंद्र सप्तक का काम बहुत अच्छा कर रहे थे
1: जी, जी।
0: मैं नहीं कर पा रहा था
1: जी।
0: छोटी उंगली जो जिसको हम लोग लिटिल फिंगर कहते हैं उसका इस्तेमाल करके भी आप मध्यम तक इतना जा सकेंगे
1: जी जी जी
0: उसके नीचे क्या
1: जी।
0: तो उस बात ने मुझे विचलित कर दिया।
1: क्या बात,
0: मन व्यथित हो गया।
1: अच्छा
0: कि जो गुरुजी बजा रहे हैं सितार में वो मेरे बांसुरी में क्यों नहीं आ रहा है। वहां से मैं भारत आया और काम में लग गया और जो मेरी ओरिजिनल शंख बांसुरी है वो अभी घर में उसको मैंने एक याद एक संग्रह करके उसको मैंने रख दिया है। अब उसको बाहर ले जाने में डर लगता है। उस वक्त एक बैंबू जो आप देख रहे हैं शंख का, इसकी आवाज शंख जैसी है।

0: बजाने से लगता था शंख बज रहा है।
1: जी जी जी।
0: तो उसलिए मैंने ये नाम इसका दे दिया कि शंख की तरह ये बजता रहे। और मंद्र सप्तक
1: जी
0: मैं चला गया फिर मैं नीचे के साथ तक।
1: बिल्कुल। और जब कभी जब थियरी में लोग सीखेंगे बांसुरी की थियरी के बारे में, तो इस शंख बांसुरी को उन किताब के पन्नों पर अंकित किया जाना चाहिए। और
0: किया भी है दीपक तो, करके लालमणि सिंह वो सरदार हैं
1: जी,
0: तो उन्होंने पूरा पीएचडी ही किया मेरे ऊपर।
1: क्या बात है।
0: उसमें पंडित शिव कुमार शर्मा उन्होंने बहुत कुछ मेरे बारे में ऐसा लिखा जो मुझे अपने मुंह से बोलते हुए भी ये लग रहा है कि मैं अपनी तारीफ कैसे करूं। उन्होंने कहा कि रोनू के वादन में आमूलचूल परिवर्तन रविशंकर जी के पास जाने के बाद हुआ। उनका बजाने में जो कृंतन जमजमा की जो होती है ना, ताना ना ना ना, ये करेंगे तो गमक हो जाएगा। उसके पहले का जो है उसमें स्ट्रेस दिए बगैर जो जमजमा का थाम है
1: जी जी,
0: जो विलायत खान साहब जिसके बादशाह माने जाते थे।
1: क्या बात है। तो ये जो जानकारियों का खजाना है, इसको हम अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विराम दे रहे हैं क्योंकि हमारा आज की कड़ी का समय समाप्त हो रहा है। कल ढेर सारी जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम श्रोताओं से अनुमति ले रहे हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं।

इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कल उपस्थित होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

तलत महमूद की आवाज में गीत आप सुन रहे थे। बारादरी फिल्म के इस गीत को लिखा खुमार बाराबंकवी ने और इसे संगीत से सजाया शौकत दहलवी नाशाद ने। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं आप।

0: देवदास फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली।

ली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो।

0: टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: विविध भारती पर कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

0: नूर जहाँ की आवाज़ में दुपट्टा फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुशीर काजमी के बोल, फिरोज़ निज़ामी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर भूले बिसरे गीत।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।

0: तलत महमूद की आवाज में कमर जलालाबादी के बोल आप सुन रहे थे। पंडित हुसनलाल भगतराम का संगीत आदिले जहांगीर फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में उड़न खटोला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत। कार्यक्रम भूले भी से गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा दें। मुकेश और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म श्री 420। सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में आप सुन रहे थे लाल पत्थर फिल्म का ये गीत, नीरज ने से लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हम है राही प्यार के विविध भारती पर।
1: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
2: क्या क्या क्या

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे कल आज और कल फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा शैली शैलेंद्र ने, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। लीजिए सुनिए मन मंदिर फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मेला फिल्म से एक गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

परवाना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में कैफ निज़ामी के, माफ़ कीजिएगा, कैफी आज़मी के बोल मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाजें किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की, फिल्म पराया धन।

पराया धन फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज, और इसके साथ ही हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम FM सन सिटी से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.1 MHz पर सवेरे के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी इनमें सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण खनिज फार्मास्यूटिकल्स स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर आकाशवाणी समाचार दिल्ली
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू सैन्य संपर्क द्विपक्षीय अभ्यास प्रशिक्षण क्षमता निर्माण समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑनलाइन दावों ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम

बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमेरिका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी

0: प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। दो क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब डूरन कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाया तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी जोधपुर के FM सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए हाजिर है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

गुजारिश फिल्म से अभी आपने सुना कुणाल गांजावाले की आवाज में विभू पुरी का लिखा हुआ ये गीत। संगीत था संजय लीला भंसाली का। शान की आवाज फिल्म क्लिक से। शब्बीर अहमद का लिखा हुआ गीत। समीर टंडन का लिखा हुआ, माफ कीजिए, समीर टंडन का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत। शान के साथ आप सुनेंगे श्रेया घोषाल को।

राहत फतेह अली खान की आवाज़, अनविता दत्त का लिखा हुआ गीत और प्रीतम की धुन, फिल्म बदमाश कंपनी।

बदमाश कंपनी फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत को यहीं पर विराम देते हैं। ये FM सन सिटी है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 8:30 होने वाले हैं। हमारा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार हम हमारे प्राथमिक चैनल से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: स्वागत अभिनंदन सभी सुदेश श्रोताओं का, ये है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार, दोस्तों नया दिन नई सुबह केवल सूरज के आने का संकेत नहीं है, उसके उगने का नाम ही नहीं है। ये उगना है यादों का, ये उगना है शब्दों का, ये उगना है सुरों का और नए जोश का। और यही जोश लेकर हाजिर हैं मैं कविता
1: और मैं सूफिया। बिल्कुल श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में। और जो खूबसूरत पंक्तियां कविता जी ने आप सभी को सुनाई, आई होप आपका दिन आज बहुत ही अच्छा शुरू होगा। और इस कार्यक्रम में ढेर सारी बातें तो होगी ही श्रोताओं, और साथ ही सुनवाएंगे एक से एक बेहतरीन नगमे आप सभी को। लेकिन इससे पहले आपको करवाते हैं हमारी टीम से परिचय। तो श्रोताओं, ट्रांसमीटर से हैं पारसपुरी गोस्वामी और कैलाश चंद्र सोलंकी।
0: कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं सुनील जयपाल।
1: अनाउंसर हैं हमारे साथ आकांक्षा वैष्णव।
0: और वहीं एफएम की कमान संभाली है नेमी चंद ने।
1: श्रोताओं नमस्कार, प्रोग्राम की प्रस्तुति और संयोजन किया है राजेश लामरू ने।
0: सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: दोस्तों, जीवन जो है हमें कई तरह के रंग दिखाता है, कभी सुख के, कभी दुख के, कभी हंसी के, कभी खुशी के। ये सारी चीज़ें जो है जीवन से ही तो जुड़ी है श्रोताओं। लेकिन जीवन में किस्म किस्म के लोग भी आते हैं, वो हमसे मिलते भी हैं, और हमारे जो संघर्ष होते हैं, हमारे जो दुख होते हैं, हमारे जीवन के जो उतार चढ़ाव होते हैं, उनमें वो भागीदार भी बनते हैं कभी कभी।
1: बेशक बहुत अच्छी बात कही है आपने सोफिया जी, कि जिंदगी के उतार चढ़ाव में बहुत सारे लोग भागीदार बनते हैं। और वो लोग कई बार हमें संकट से उबरने का एक रास्ता दे जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी अच्छी भली जिंदगी को संकट में डाल भी देते हैं। लेकिन चाहे जो हो, उतार चढ़ाव जिंदगी के जो है ना, वो हमें मजबूत बनाते हैं,
0: बिल्कुल
1: जिंदगी को जीना सिखाते हैं,
0: ये
1: मुसीबत से लड़ना सिखाते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: कविता जी, ये एक रंग बिरंगे गुब्बारे के जैसे होते हैं।
1: बिल्कुल
0: जैसे कोई हंसी का गुब्बारा है, कोई खुशी का गुब्बारा है, ये सारे जो गुब्बारे जैसे जो हमारे जीवन के जो पहलू हैं, वो हमसे ही आपस में जुड़े हैं।
1: और आप देख लीजिए, दीवार पर रंगीन गुब्बारे अगर लगा दिए तो दीवार खुश रंग हो जाती
0: बिल्कुल,
1: है
0: एक
1: ना?
0: चेहरे पे खुशी आ जाती
1: तो
0: है,
1: ठीक उसी तरह
0: जिस तरह
1: से
0: बच्चा खुश होता है गुब्बारे लेके।
1: ठीक उसी तरह से ये सारी सिचुएशंस जो है ना, ये हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है।
0: बिल्कुल।

0: श्रोताओं कहते हैं कि जीवन एक कोरे कागज की तरह है, उस पे क्या लिखना है क्या मिटाना है वो हमें तय करना है। लेकिन कागज से याद आया कि बच्चे जो है अभी बहुत इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश आए और कब उस कागज की कश्ती बनाकर हम उस पानी में चलाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे क्यों, हम भी और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हमारे भीतर भी एक बच्चा है जो झूमना चाहता है, जो बाहें फैलाकर बारिश में भीगना चाहता है और जिंदगी में विचारों के उन रंगों को भरना चाहता है जो हमारी कल्पनाएं तय करती है। और इस तपिश में कल्पनाओं ने भी सोना सीख लिया है।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि वो भी अब काम नहीं करती, उन्होंने भी छुट्टी मांग ली है और हर तरफ एक ही एक इंतजार दिखाई पड़ रहा है। और अब जब हम न्यूज देखते हैं टीवी चैनल्स पे, तो लगता है कि कहीं तो इतना पानी बरस रहा है, कहीं ओले पड़ रहे हैं, और हे भगवान हम क्यों बारिश को तरस रहे हैं। तो आइए विचारों के अलग से रंग कुछ बरसात को लेकर भरते हैं अपने इस प्रोग्राम में।

0: कहते हैं ना कि बारिश जब होती है और बारिश की पहली बूंद तपती हुई धरती पर पड़ती है तो धरती के मन मयूर भी नाच उठते हैं। और ऐसा ही इस गीत में कहा है कि
1: बिल्कुल
0: आ जा रे बरखा आ, गम को बहा ले जा।
1: बिल्कुल, बरखा का हर किसी को इंतजार है और पहली बारिश जो है उसका तो खास ही रंग होता है। बच्चे बड़े सभी पे मन मयूर नाच उठता है और मन खुश भी हो जाता है। कुछ ऐसी ही चीज होती है पहली बारिश में। बिल्कुल, पहली बारिश की बात की है श्रोताओं, और जल्द ही हमारे शहर में भी बारिश आएगी। आपको गर्मी की तपिश से जो है वो जरूर राहत मिलेगी।
0: राहत मिलेगी। और पहली पहली का जब आपने जिक्र किया ना, पहली पहला शब्द ही जो है ना वो अपने आप में बहुत सारी चीजें समेटे रहता है।
1: बिल्कुल।
0: पहला पहली पहली बार की बारिश, या पहला एहसास, पहली मुलाकात, पहली नजर, पहली पहला इम्तिहान,
1: और पहला
0: प्यार।
1: प्यार वो भी तो खास ही होता है।
0: बेशक खास होता है। और इस पहले प्यार को लेकर कई सारे

0: जरूरी नहीं कि वो इस तरह से भौतिक हो। मीरा जी को ले लीजिए,
1: बिल्कुल
0: जिन्होंने कृष्ण को देखा ही नहीं लेकिन पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और उनके लिए कोई और वजूद का होना उनके
1: मायने
0: जीवन
1: नहीं
0: में
1: रखता
0: जरूरी
1: था,
0: ही नहीं था, है
1: बिल्कुल
0: ना। वो तो कहते थे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो प्यार का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। प्यार का मतलब है अगर हो तो सिर्फ तुम ही हो।
1: बिल्कुल।

0: बिल्कुल श्रोताओं, गाने से पहले हमने बात की थी कि पहली जो चीज़ होती है वो बहुत ही खास होती है, चाहे पहली मुलाकात हो, एहसास हो और प्यार ही क्यों ना हो।
1: बिल्कुल। और पहले का हम बात कर रहे थे, लेकिन प्यार के भी माने ना समय समय पर एकदम अलग अलग देखने को मिलते हैं। एक समय हुआ करता था जब प्यार पर पूरा जीवन कुर्बान, है ना, जैसे

और इसी के साथ श्रोताओं, अब 9 बजने वाले हैं और फिलहाल हम एक न्यूज़ ब्रेक के लिए रुकेंगे। 9:10 पर फिर से हाजिर होंगे कार्यक्रम नमस्कार के साथ।

0: कार्यक्रम नमस्कार जारी रहेगा। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: अजमेर से प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के देवमाली गांव से वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे। जयपुर में चल रहे 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में आज केंद्रीय

0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान करेंगे राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान की शुरुआत और प्रदेश में मॉनसून के आज प्रवेश के आसार पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के देवमाली गांव के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री यहां से वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे इसके साथ ही वे जल जीवन मिशन के तहत लगभग 418 करोड़ रुपए की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे कार्यक्रम के दौरान 78 नई पेयजल टंकियों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने जयपुर में लोक मंथन 2026 के कर्टिन रेजर कार्यक्रम में शिरकत की कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों से राजस्थान की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मजबूत पहचान दिलाने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि राजस्थान शक्ति भक्ति विचार वीरता संस्कृति और लोक परंपराओं की भूमि है और हमें इस पर गर्व है मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भारत के लोक विषय पर आयोजित हो रहा लोक मंथन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वैश्विक संवाद का माध्यम बनेगा
1: ये हमारे राजस्थान की एक बहुत प्यारी संस्कृति है आप जहां जाओगे वहीं आपको लगेगा कि उस संस्कृति में मनोहर हो स्वागत हो वो अपने आप में निराला मिलेगा और ये हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए ये आयोजन राजस्थान को राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करेगा आइए हम सब मिलकर इस आयोजन को केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना बौद्धिक शक्ति और राष्ट्र प्रथम के संकल्प को का महोत्सव मनाएं
0: कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोक मंथन भारतीय सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच है इस अवसर पर लोक मंथन की वेबसाइट का लोकार्पण और एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आज समापन होगा समापन अवसर पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे ये पुरस्कार ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होंगे सम्मेलन में आज डिजिटल गवर्नेंस तथा उभरती प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों पर तीन प्लेनरी सत्र आयोजित किए जाएंगे सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उद्योग जगत के विशेषज्ञ स्टार्टअप्स तथा शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए फंडिंग नेटवर्क संचालित करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस इंटेलिजेंस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि आरोपित रफीक खान चांद शेख महाराष्ट्र के औरंगाबाद का निवासी है इस पर आईएसआई के लिए काम करने और जासूसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों तक धनराशि पहुंचाने का आरोप है उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनवरी में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई इस मामले में जैसलमेर निवासी एक व्यक्ति और असम के डिब्रूगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर कार्यरत एक कर्मचारी को गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी को निलंबित कर दिया है इसके साथ ही आईएएस अधिकारी भास्कर ए सावंत को एसोसिएशन का प्रशासक नियुक्त किया है कार्यवाहक सीजे न्यायमूर्ति एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए अदालत ने श्री सावंत को व्यक्तिगत रूप से एसोसिएशन की प्रबंध समिति

0: के चुनाव 3 महीने में पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। उन्हें 29 जुलाई तक अदालत को चुनाव कार्यक्रम से अवगत कराने को भी कहा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता और प्रवर्तन अभियान शुरू किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की ओर से 16 जुलाई तक चलने वाले अभियान के दौरान बिना हेलमेट और तेज गति से वाहन चलाने, अवैध पार्किंग करने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लेन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत दुपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले सहयात्री दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले कल मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सड़क सुरक्षा पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ और जवाबदेह तरीके से काम करने के निर्देश दिए। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया है। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, बार बार होने वाले चुनावों से होने वाली रुकावटें कम होंगी और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है और चुनाव आयोग, विधि आयोग तथा अन्य विशेषज्ञ निकायों ने समय समय पर इसकी सिफारिश की है।
1: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हुआ।
0: और अब मौसम। प्रदेश में आषाढ़ महीने की शुरुआत कुछ स्थानों पर बरसात के साथ हुई। राजधानी जयपुर में कई इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। भरतपुर में कल सुबह बरसात के बाद दिन भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। कोटपूतली बहरोड जिले के कोटपूतली, विराटनगर और पावटा में कल देर रात हल्की बरसात से मौसम सुहावना हो गया। भीलवाड़ा में भी देर रात तेज हवा के साथ कुछ देर झमाझम बादल बरसे। इस बीच आज भी राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं तथा नम हवाएं चल रही हैं। हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया है कि वहां बादलों की आवाजाही से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पूर्वी इलाकों से मॉनसून दस्तक देगा। उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग ने 4 और 5 जुलाई को कोटा तथा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और एक दो स्थानों पर बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कल से आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक किया जाएगा। आयोग के अनुसार परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा तारीख से 3 दिन पहले आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के देवमाली गांव से वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे। जयपुर में चल रहे 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में आज केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान की शुरुआत और प्रदेश में मॉनसून के आज प्रवेश के आसार। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में तेज बारिश के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार में।
3: और अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने और जानते हैं क्या रहा इतिहास में आज खास।
2: तो
3: तो दोस्तों आज ही के दिन 1757 में प्लासी की लड़ाई में हार के बाद बंगाल

0: साल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की हत्या हो गई थी।
1: और श्रोताओं, साल 1940 की बात करें तो आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया था। और 1964 में आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने ऐतिहासिक नागरिक अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे और इससे देश में नस्लीय भेदभाव पर रोक लगी थी।
0: और 1979 में सुशांत बी एंथनी डॉलर जारी किया गया था और एक महिला का सम्मान करने के लिए पहला अमेरिकी सिक्का था ये।

0: और 1964 में आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने ऐतिहासिक नागरिक अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे और इससे देश में नस्लीय भेदभाव पर रोक लगी थी।
1: और 1979 में सुशांत बी एंथनी डॉलर जारी किया गया था और एक महिला का सम्मान करने के लिए पहला अमेरिकी सिक्का था ये।
0: साल 1972 में आज के दिन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
1: और अब बात करें 2002 की, तो आज ही के दिन हेपेटाइटिस सी को जांच को पूरे भारत में अनिवार्य कर दिया गया था।
0: दो हजार चार में श्रोताओं, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था आज ही के दिन।
1: और 2 जुलाई 2012 में स्पेन ने इटली को हराकर यूरो कप फुटबॉल जीता था।
0: और इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

0: दोस्तों, किसी से पूछा जाए कि आपको क्या शौक है या क्या अच्छा लगता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें पानी के किनारे पर बैठकर पानी में गिरती उठती लहरों को निहारना बेहद अच्छा लगता है। और क्यों ना लगेगा, सच में पानी सभी को अच्छा लगता है। लेकिन पानी की गहराई में एक ऐसी दुनिया है जहाँ सूरज की रोशनी भी झिझक कर उतरती है, जहाँ खामोशी बोलती है और हर सांस की कीमत और बढ़ जाती है जब किसी को तैरना ना आए और वो पानी में उतर जाए।
1: बिल्कुल, और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं श्रोताओं, जो इस खामोश दुनिया में सांस लेते हैं, जो डूबते को बचाते हैं। हमारे स्टूडियो में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जीवन रक्षक गोताखोर भारत चौधरी जी। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार
1: बहुत बहुत स्वागत भरत चौधरी जी आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार में।
2: नमस्कार दीदी।
1: तो भरत चौधरी जी,
0: छोटा सा अपना एक परिचय हमारे श्रोताओं के लिए।
1: बिल्कुल
2: जी, मैं जोधपुर में रहने वाला हूँ, कायलाना झील पे।
1: बिल्कुल
2: और डूबते हुए लोगों को बचाने का मेरा निःशुल्क कार्य है।
0: जी, जब आप, हाँ जी,
2: मैंने अभी तक 300 से 350 लोगों को जीवित बचाया, 150 बॉडी बाहर निकली है। और सभी जोधपुर वासियों और राजस्थान के लोगों को सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे अभी बारिश का मौसम होने वाला है, तो बारिश में जहाँ कोई खड्डा दिखे, जहाँ कोई पानी हो या कोई नाली हो, तब वो जैसे भी कोई भी चीज हो, पानी के पास ना जाए। खड्डा
0: जी,
2: कितना गहरा हो सकता है उसका नाप नहीं लिया जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने।
2: सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप ऐसे जो

0: घटना से दूर रहे।
1: जी, तो भरत जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप पहली बार पानी में लगभग 50-60 फीट नीचे उतरे होंगे, तो वो पल कैसा था? डर था, रोमांच था, कुछ और था? हमारे श्रोताओं के लिए बताएं।
0: पहली बार एक लड़का और एक लड़की डूबे थे।
1: अच्छा।
0: वो 33 फीट नीचे गहराई में थे पानी के अंदर, तो उनको बाहर निकालना था और जो जीवित बच गए दोनों।
1: या, ये बड़ी खुशी की बात है।
0: उसकी वजह से उनके परिवार वाले और सभी जो बालेश्वर गांव के थे, तो बालेश्वर तो अभी जिला बन गया, पहले गांव था, तो बालेश्वर के थे रहने वाले, तो वो सब के सब उन्होंने मुझे बहुत ही खुशी दी और बहुत ही आशीर्वाद दिया। उसकी वजह से आज मैं लगातार ये सेवा कर रहा हूँ।
1: तो आपको ये विचार कब आया कि आपको ऐसा करना चाहिए?
0: मैं 13 साल की उम्र के अंदर ये सेवा करनी शुरू कर दी।
1: आपने तैरना सीखा?
0: पहले ना झील पर ही रहता था और पढ़ाई कर रहा था, तो साथ साथ में ये लोग डूब रहे थे और जो डूबते हैं वो उनका शव मिलता है, तो वो परिवार वाले आते थे, चिल्लाते थे, तो उनकी देखते हुए मैंने ये संकल्प ले लिया कि मेरे सामने किसी को डूबने नहीं दूंगा। अगर मैं यहाँ रहूंगा जब तक किसी को डूबने नहीं दूंगा।
1: तो आपने फिर तैरना सीखा?
0: तैरना यहाँ कायलना पर ही सीखा था। 2013 के अंदर मैंने तैराकी सीखी थी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और उसके बाद लगातार ये सेवा कर रहा हूँ।
2: बिल्कुल भरत चौधरी जी, अब सवाल ये उठता है कि गोताखोरी में सिर्फ तैरना आना काफ़ी नहीं होता, यानी ऑक्सीजन, प्रेशर, अंधेरा, बहुत सारी चुनौतियाँ होती है। आप अपनी किट में सबसे ज़रूरी क्या मानते हैं, और अगर एक आम आदमी को पानी में जाने से अगर वो जाए, तो उसको पानी में जाने से पहले कौन सी दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए?
0: पानी के अंदर एक तो अगर आपको स्विमिंग पूल या कोई छोटे तालाब में तैरना आता है, तो बड़े झीलों में या बड़े तालाबों में आपको जाना नहीं चाहिए, और जहाँ कम पानी हो, टांका हो, कुआ हो, उसमें भी नहीं जाना चाहिए। उसको पानी को काटने में और जो तालाब में पानी काटने के लिए वो डिफरेंस रहता है, उसमें बहुत अंतर होता है। और एक आप तैर रहे हो, बाई चांस आपके क्या है कि ये बाइंटा आता है, पैर पे आ जाता है, हाथ पे आ जाता है, पीठ पे आ जाता है, तो नाड़ी चढ़ने की वजह से बाइंटा आता है, और बाइंटा की वजह से वो कितना भी बड़ा तैरा क्यों ना हो, वो भी डूब जाएगा। वो कहावत है कि तेरू की राउंड होती है, तो इसलिए वो होती है
2: जी। तो इससे कैसे बचा जाए अगर तैराकी के दौरान
0: उल्टा तैर रहे और बाइंटा आ गया, तो आपको सीधा हो जाना चाहिए और आराम से पैर सीधा करके धीरे धीरे, अगर नहीं तैर रहे हो तो सो जाओ पानी के ऊपर, और जो बड़ा तैराक है उसको सोना भी आता है पानी के अंदर।
2: आपके
0: घूम जाओ, उल्टा हो तो सुबह घूमोगे तो अपने आप वो बाइंटा निकल जाएगा, बाइंटा निकलने के बाद में आप वापस तैरना शुरू कर दोगे।
2: जी,
0: ऐसी एक घटना जोधपुर के अंदर हुई थी। कैप्टन अंकित गुप्ता थे, तो ट्रेनिंग के दौरान उसको बाइटा आ गया और ऊपर से जंप लगाया था, बाइटा आने की वजह से वो कायलाना में डूब गए। 7 दिन तक से वो नहीं मिला था, 7वें दिन मैंने निकला था उनका।
1: तो इतनी गहराई में जब आप जाते हैं पानी में
0: जी,
1: तो इतने समय तक सांस रोक कर रखना तो असंभव है।
0: वो कंटिन्यू मैं ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ कायलाना के अंदर के मैं कितनी कैपेसिटी है, मैं कितना जा सकता हूँ, तो मेरी कैपेसिटी अभी 30-35 फीट हो गई है। धीरे धीरे रात दिन मैं कंटिन्यू वो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरी वो कैपेसिटी बढ़ी है।
1: तो आप कोई किट रखते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ऐसा कुछ?
0: किट कुछ नहीं है, मेरा देसी जुगाड़ है, लाइबो है, रिंग है, ट्यूब है और बिलोया है, ऐसे वो देसी एंकर बनाए हुए हैं, देसी जुगाड़ से मैं ये कर रहा हूँ।
1: जी भरत जी, आपने कहा कि आपने बहुत सारे सैकड़ों लोगों को पानी से निकाला है, रेस्क्यू किया है, तो कोई एक ऐसा मिशन जो आपको याद हो, आपकी आंखों के सामने समय समय पर वो तैर जाता है, और कोई ऐसा पल जहां आपको भी लगा हो कि अब तो खुद मेरे बचने के आसार भी कम नजर आ रहे हैं, और ऐसे में आपने हार नहीं मानी हो और वो सक्सेस आपको मिली हो?
0: बिल्कुल, ये 2021 की एक घटना हुई थी मेरे साथ।
1: जी,
0: जो सगे 3 भाई आए थे
1: जी,
0: जिसके अंदर तीनों भाई कायलाना झील के अंदर सेल्फी लेते हुए डूब गए थे।

0: जी
1: एक दूसरे को बचाने के लिए तीनों पानी के अंदर चले गए
0: हाँ
1: और तीनों को बचाने के लिए मैं भी कूद गया, तो तीनों ने मुझे बीच में पकड़ लिया। तीनों को तैरना नहीं आता था,
0: जी
1: तो तीनों को छुड़वाने के लिए मैं भी डूब रहा था उनके साथ और छुड़वा नहीं पा रहा था। तो मैंने एक दिमाग में सोची क्यों नहीं इनको छुड़वाने के लिए क्या करूं, तो मैंने उनके हाथ किसी के हाथ पर हाथ दिला तो हाथ से दाता भर लिया, किसी के बाल दिले तो बाल खींचे, ऐसे करके छुड़वा दिए तीनों से। तीनों से बहुत मुश्किल से छुड़वाया, मुश्किल से छुड़वाने के बाद में उनको तीनों को बाहर निकालने में बहुत प्रयास किया, जिसने दो को बाहर निकाल लिया और दोनों को जीवित बचा लिया गया, एक मर गया था। सके तीन भाई थे, तीन ही थे उसके पिताजी के, चार बहने और तीन भाई थे, उसमें से दो को जीवित बचाया, एक खत्म हो गया।
0: जी, तो उस समय आपको भी लगा होगा कि यहां से बच के पास जाना मुश्किल है ना?
1: मुश्किल था और रियल में था मुश्किल, बहुत मुश्किल से मैं बच के आया था। और वहां बचाने वाले और पास में कोई रस्सी फेंकने वाले इतने लोग थे, लेकिन किसी ने कोई रस्सी नहीं फेंक सके।
0: जी।
1: और ऐसी घटना होती है और पास में कोई देख रहे हैं तो आपके पास, चाहे गांव के हो तो किसी के पास चुंदड़ी होती है, किसी के पास कुछ भी कपड़ा होता है,
0: साड़ी
1: और
0: होती है, साड़ी की भी काफी लंबाई होती
1: साड़ी
0: है।
1: होती है, किसी के पास कोई भी चीज वस्तु हो, और कोई सिटी के अंदर हो या किसी पास में हो, जिसी के अंदर पैंट होती है, वो पैंट भी उतार कर अगर उसको फेंक के बचा सकता है, एक तो कूदने से नहीं बचेगा और वो अगर पैंट फेंकेगा और कपड़ा पकड़ लिया वो सुरक्षित बाहर निकल सकता है,
0: जी, क्योंकि पानी में हल्के हो जाते हैं वजन।
1: हल्के हो जाते हैं।
0: जी
1: ऐसी
0: जी
1: घटना
0: जी
1: एक सुरपुरा डैम हुई थी, 7 लोग डूबे
0: ओहो
1: थे जोधपुर के अंदर, ईद का त्योहार था, 7 आए, 7ों में से 7ों डूब गए एक दूसरे को बचाने के लिए।
0: बिल्कुल भरत जी, बिल्कुल। और जब हम आपको बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं अभी, तो एक सवाल ये भी उठता है कि जो कायलाना, बैरीगंगा या बावड़ियों में अक्सर हम हाथ से सुनते हैं, यहाँ पानी जो है वो उसमें क्या खास चुनौती है? और एक सवाल ये भी है कि क्या आप जोधपुर में ही ट्रेनिंग देते हैं?
1: जी, ट्रेनिंग तो मेरी यही है कि जहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है दाऊद की रानी पर नगर, वहाँ हम देते हैं ट्रेनिंग।
0: जी
1: और एक कायलाना झील ऐसी झील है जो साल में वो अपने आप 2-4 लोगों को तो कैसे कि कितनी भी ध्यान रखोगे तो भी डूबेंगे वहाँ,
0: जी
1: ये कायलाना की खासियत है। आज से नहीं है, मैं देख रहा हूँ, मुझे खुद को 13 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन ये घटना हमेशा होती आ रही है।
0: जी तो ये तो झील की बात हो गई। अब जैसे बैरीगंगा है, बावड़ियां हैं या कुएं हैं?
1: तो बावड़िया में यही होता है कि ऊपर से लोग आते हैं, जंप लगाते हैं कि हमें तैरना आता है, और वो जंप लगाते हैं, जंप लगाते समय वो बाइटा आता है, और बाइटा आने की वजह से वो नीचे चले जाते हैं, उसके बाद वो वापस आने का संभावना ही नहीं रहती है।
0: हाँ, तो वहां से, वहां के लोगों को बचाने के लिए कुछ और प्रक्रियाएं होती हैं और तैयारी होती है, या एक ही व्यक्ति जो झील में से बाहर निकाल सकता है वही व्यक्ति कुएं में से भी बाहर निकाल सकता है, बावड़ी में से भी बाहर निकाल सकता है?
1: जी, वहाँ भी हो सकती है सरकार की तरफ से, अभी नागरिक सुरक्षा जोधपुर के अंदर 300 बंदे हैं, तो वहाँ हर बावड़ी पे एक एक बंदा लगा दे तो वो बचा सकते हैं,
0: जी।
1: और रोक टोक भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कायलाना पे निःशुल्क रोक टोक कर रहे हैं, निःशुल्क बचा रहे हैं, तो उनको तो सैलरी मिल रही है, सरकार भी वहाँ बैठक को तिनका दे रही है, तो उनको वहां लगाना चाहिए, मैं तो यही कह रहा हूँ। मैंने
0: जी।
1: एप्लीकेशन भी दी थी सरकार को, मैंने कहा ये ऐसे दुर्घटना हो रही है, तूर जी के झांदरे में अभी पिछले महीने में एक घटना हुई थी, तो वो लड़का ऊपर से डाई लगाई और डाई लगाने की वजह से वो नीचे सिर पे चोट आई और वो नीचे ही रह गया, ऊपर ही नहीं आया, तो ऐसे में हुआ था। मैंने प्रशासन को वो लेटर भी लिखा था, मैंने कहा सर ऐसा है श्रीमान जी, यहाँ आपने गोताखोर लगा दो एक या दो ताकि वो बचा सके।
0: वैसे कहते भी है ना कि डाई उसी पानी में लगानी चाहिए जो पानी आपका जाना पहचाना हो, जिसकी
1: हाँ वो तो
0: गहराई के
1: बात
0: बारे में आप जानते हो।
1: जी,
0: और एक सवाल ये उठता है भरत जी कि कोई जो लोग गोताखोर नहीं हैं पर पानी के वो आसपास रहते हैं, उनके लिए आपकी एक सबसे ज़रूरी सुरक्षा सलाह क्या होगी? क्योंकि कई जो आज के युवा हैं वो एडवेंचर के लिए स्कूबा डाइविंग भी सीखना चाहते हैं।
1: वो सीखना चाहते हैं तो स्विमिंग पूल है, जैसे कि बड़े बड़े स्विमिंग पूल है, कोच भी है, वैसे सीखने के बाद में अगर आपके पास कोई अच्छा ट्रेनर हो या वहाँ का स्थानीय, जैसे रात दिन अनुभव होना चाहिए कि भाई ये स्थानीय गोताखोर है, इनको पूरा ध्यान है कि इसमें कैसा

0: पानी है, कैसा नहीं है। अब हर जगह क्या कहाँ पर भी कोई झाड़ियां होती है, कोई झाड़ियां होती है, कुछ भी बबूल भी होते हैं, कुछ पत्थर भी होते हैं। तो आप जैसे डाई लगाते हो सिर पे लग जाती है या झाड़ियां में फंस जाते हो, तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए आपको। अगर जाना पहचाना पानी हो और आप रात दिन जो डाई कर रहे हो तो ठीक है, और अगर आपको तैरना नहीं आता है तो 2 मीटर दूरी बनाकर ही रखे
1: जी
0: और पानी के पास में कभी भी धक्का मुक्की ना करें, मजाक मस्ती करते हैं तो भी दूर करें। क्योंकि अगर मस्ती मस्ती में ऐसे क्या प्यासे हो गए जो घूमने के लिए आते हैं, ऐसे हंसते हंसते खेलते खेलते डूब जाते
1: और
0: हैं।
1: आजकल तो हम देखते भी हैं कि कई जो युवा हैं वो रील्स के चक्कर में अपनी जान गंवा देते
0: और
1: हैं।
0: अब ये रही बात जो ग्रामीणों की, ग्रामीणों में अभी जो सरकार की तरफ से वो हौद बन रहे हैं, तो हौदों के अंदर जो पानी के हौद बने हैं वो तिरपाल बिछाते हैं, वो तिरपाल होता है चिकना, मैनिया, जो तिरपाल की वजह से वो सेल्फी ले रहे हैं या वीडियोग्राफी कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, तो सेल्फी के चक्कर में वो तिरपाल चिकना होता है, चिकने की वजह से वो फैल ही होता है और होते 10-12 फीट गहराई होती है और वो चले जाते हैं। ऐसे अभी जोधपुर के अंदर पिछले महीने और इस 4 महीनों के अंदर मैंने ये देख लिया है कि 30 से 40 लोग डूब गए।
1: इस कारण
0: हाँ, इसकी वजह से जोधपुर संभाग के अंदर 30 से 40 लोग डूब गए। अभी बाड़मेर के अंदर वो 2 डूब गए थे, माँ और बेटा। तो ऐसी घटना हो रही है लगातार, तो यही उनसे कर रहे हैं निवेदन के 2 मीटर दूर रखो। आप वीडियो बना रहे हो तो 2 मीटर दूर रह के बनाओ, उस मैनिये के ऊपर से क्यों बना रहे हो। तब
1: बिल्कुल
0: मैनिया चिकना होता है और पैर स्लिप होता है, आपको दिख रहा है कि
1: जी
0: यहाँ से पैर स्लिप हो सकता है, किस ट्रेन में जान जा सकती है, तो
1: भरत
0: आप वहां
1: जी,
0: जाओ ही मत ताकि आपकी जिंदगी बच सकेगी।
1: बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही अनमोल सलाह आपने अपने हर बात में दी है हमारे श्रोताओं को। बहुत अच्छा लगा, आपने अपना वक्त और अनुभव हमारे साथ साझा किया और हमारे इस निमंत्रण को आपने स्वीकार किया, बहुत ही अच्छा लगा, शुक्रिया आपका। पर चलते चलते हम आपसे ये पूछना जरूर चाहेंगे कि आप रेडियो सुनते हैं
0: जी बिल्कुल,
1: तो गीतों का भी शौक होगा आपको?
0: नहीं गीतों को नहीं, मैं थोड़ी न्यूज सुनता हूँ, न्यूज हमेशा सुननी
1: अच्छा,
0: चाहिए।
1: कोई आपकी पसंद का गाना हो तो आप बता सकते हैं, हम बजाएंगे आपके लिए।
0: बिल्कुल, पसंद का तो गाना अभी ऐसा कुछ नहीं है, मारवाड़ी में है
1: अच्छा, फिल्मी गाने आप कम सुनते हैं?
0: जी, फिल्मी गाने कम सुनते हैं।
1: चलिए कोई बात
0: मेरा
1: नहीं।
0: प्रसिद्ध
1: एक
0: गाना जाज भाई है।
1: जी, पर आपने हमें समय दिया, अपना अनमोल समय दिया, बहुत अच्छा लगा। आपकी इस हिम्मत को हम सलाम करते हैं और आपकी सलाह को हमारे सभी श्रोता याद रखेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। शुक्रिया,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, याद रखना चाहिए कि पानी हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है, या यूं कह दें पानी हमारी जिंदगी है, पर लापरवाही से यही पानी हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। तो अगर ऐसी जगहों पर जाएं तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं खूबसूरत गीत के जरिए।

तो श्रोताओं, फोन आउट के माध्यम से ये बातचीत सुनी आपने। भरत चौधरी जो कि गोताखोर हैं, और इस फोन आउट का संयोजन और प्रस्तुति रही राजेश लामरोड़ की।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
8: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
7: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
8: सच?
7: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
8: समझ गया।

0: अब इस कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और दिवस विशेष की बात करते हैं। आज 2 जुलाई है और यही वो दिन है जब 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार संघ यानी AIPS की नींव रखी गई थी।
1: और ये है खेल पत्रकारिता दिवस। और उस दिन से ही ये दिन जो है उन लोगों के नाम समर्पित है जो मैदान पर तो नहीं खेलते पर खेल को घर घर पहुंचाते हैं। और जरा सोचिए, रेडियो पर अगर मैच की कमेंट्री नहीं होती, अखबार में अगर रिपोर्ट नहीं छपती कि भारत विश्व विजेता बन गया, तो क्या हम वो खुशी के पल जी पाते? नहीं ना। तो खेल पत्रकार हमारे वो आंख और कान है जो स्टेडियम की धड़कन को करोड़ों दिलों तक पहुंचाते हैं।
0: बिल्कुल श्रोताओं, चाहे बारिश में भीगते हुए मैच कवर करना हो या खिलाड़ी की हार के बाद उसके आंसू समझकर शब्दों में पेरना हो, वो सब करते हैं।

0: ये काम जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है।
1: आज खेल पत्रकारिता जो है वो सिर्फ स्कोर बताना नहीं है, ये खिलाड़ी के संघर्ष की कहानी को कहना है, डोपिंग पर सवाल करना है, फेडरेशन की जवाबदेही को समझना है, और ये है नीरज चोपड़ा के गांव तक पहुंचने की कहानी, ये है पीटी उषा के उस दर्द को लिखने की कहानी जो मेडल को चूकने पर होता है, यानी खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी कहता है एक खेल पत्रकार।
0: बिल्कुल। और जो डिजिटल ज़माना है तो डिजिटल ज़माने में तो और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है ये काम। एक ट्वीट, एक रील, 2 मिनट का विश्लेषण, पर सच्चाई, निष्पक्षता और गरिमा बनाए रखना, यही है असली पत्रकारिता।
1: तो हम सलाम करते हैं उन सभी खेल पत्रकारों को जिनके कलम से निकले शब्दों ने हमें रुलाया भी, हंसाया भी और गर्व से भी भरा। और ये जो सैकड़ों युवा रिपोर्टर हैं जो धूप, बारिश और हर परिस्थिति में ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हैं, वो खेलों को सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हैं और खुद महसूस नहीं करवाते, जबकि हमें भी महसूस करवाते हैं। तो खेल पत्रकारिता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: और श्रोताओं, आज 2 जुलाई है और इतिहास के पन्नों में आज का दिन जो है वो बेहद अहम दस्तावेज के लिए दर्ज है
1: और वो है शिमला समझौता दिवस, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और आज ही के दिन 1972 की वो रात जहां हिमाचल की वादियों में बसे शिमला के बॉन्स कोर्ट में दो मुल्कों ने एक लड़ाई के बाद अमन का रास्ता चुना था, और इसमें इसके एक तरफ थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
0: और दूसरी तरफ थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो,
1: और इनके बीच में 1971 के युद्ध का दर्ज जो है 93,000 युद्ध बंदियों का सवाल था और लाखों लोगों की उम्मीदें थी। 3 दिन की लंबी बातचीत के बाद कई बार डेडलॉक, कई बार उठकर चले जाने की नौबत, और आखिरकार 2 जुलाई की आधी रात के बाद 12:40 पर इस समझौते पर दस्तखत हुए। और इस समझौते में 3 बातें खास रही।
0: बिल्कुल, इसमें पहली बात तो ये रही कि भारत और पाकिस्तान अपने सभी मतभेद, खासकर कश्मीर मुद्दा, सिर्फ आपसी बातचीत से सुलझाएंगे और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता इसमें नहीं होगी।
1: और इसमें एक और बात थी, वो था नियंत्रण रेखा का सम्मान। 17 दिसंबर 1971 के युद्ध विराम के बाद बनी लाइन को अब लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC माना जाएगा, और दोनों देश इसका उल्लंघन एक तरफा नहीं करेंगे।
0: और एक बात ये भी रही कि युद्धबंदियों की वापसी की बात हो, व्यापार हो, संचार हो, लोगों का आना जाना जो है फिर से शुरू करने पर भी सहमति बनी।
1: तो ये जो समझौता है ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था दोस्तों, ये भरोसे की वो नींव थी जिस पर दोनों देशों ने भविष्य की इमारत खड़ी करने का वादा किया था, और युद्ध को विराम दिया और बातचीत की शुरुआत की आज ही के दिन।
0: बिल्कुल, आज 2 जुलाई शिमला समझौता श्रोताओं हमें याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल लड़ाई के बाद भी मेज पर बैठकर हल निकाला जा सकता है, क्योंकि जंग में जीत किसी की भी हो, नुकसान हमेशा इंसानियत का ही होता है।

0: थी।
1: और श्रोताओं, अब करते हैं काम की बात। और आपके काम की बात ये है कि अगर आप आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कोई भी पैसे नहीं देने होंगे, क्योंकि अभी तक तो इसके लिए 75 रुपये का शुल्क लगता है। लेकिन 1 जुलाई यानी कल से 2026 से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा।
2: और 6 महीने तक ये होगा, यानी 31 दिसंबर 2026 तक ये लागू रहेगा। और 31 दिसंबर 2026 तक आधार मोबाइल ऐप के ज़रिए ईमेल अपडेट बिल्कुल फ्री है। अगर आप आधार में ईमेल आईडी लिंक या अपडेट कराना चाहते हैं तो ये आपके लिए काम की बात है। पढ़ते हैं खास बात की ओर। तो 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस होता है और ये पॉप संस्कृति में सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त उत्सव है। 1947 की रोसवेल घटना की ये याद दिलाता है और आसमान में अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं यूएफओ के प्रति जागरूकता बढ़ाने, खोज को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल आज ही के दिन ये दिन मनाया जाता है।
1: श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं फीफा विश्व कप की। बिल्कुल, इंग्लैंड ने कांगो को जो है वो 2-1 से हरा कर खुद को बचाया है। कांगो ने जो है मैच के 7वें मिनट में ही बढ़त बना दी, लेकिन इंग्लैंड के कैप्टन हैरी केन ने 75वें और 86वें मिनट में गोल करके इंग्लैंड को शानदार वापसी दिलाई और राउंड ऑफ 16 में इसको पहुंचा दिया। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि राउंड ऑफ 32 यानी राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले जो हैं वो जारी हैं, तो इसी में बेल्जियम ने सेनेगल को भी रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हरा दिया है। खेल खत्म होने से ठीक पहले सेनेगल आगे थी, लेकिन रोमेलो लुकाकू और यूरी टाइम लेमेंस ने गोल दागकर गेम को चेंज कर दिया।

0: और अब बढ़ते हैं
1: श्रोताओं, अब बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ जो कि है एआई ड्रिवन वेस्ट मैनेजमेंट।
0: तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर कूड़ेदान खुद ही बता दे कि मैं भर गया हूँ और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी सबसे छोटा रास्ता खुद ही चुन ले, प्लास्टिक कागज धातु की मशीनें इंसानों से ज्यादा सटीक तरीके से कचरों को अलग कर दे तो कैसा होगा? ये कोई भविष्य नहीं है, ये आज की हकीकत है और इसके पीछे है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई क्या करता है? ये ऐसी तकनीक जो डेटा से सीख कर निर्णय ले लेता है कि वेस्ट मैनेजमेंट में एआई कैमरों, सेंसर, मशीन लर्निंग की मदद से कूड़े की पहचान करके उसे अलग अलग श्रेणियों में बांटता है और पूरे सिस्टम को अधिक तेज और प्रभावी बनाता है, और इससे कई सारे फायदे भी हैं।
1: पहले फायदे की बात करें तो वो है स्मार्ट कचरा संग्रहण यानी, और दूसरी की बात करें तो है बेहतर साइकिलिंग। और श्रोताओं, भविष्य की योजना, एआई ये भी अनुमान लगा सकता है कि मेलों या छुट्टियों के दौरान किस इलाके में कितना अतिरिक्त कचरा निकल सकता है, इसकी भी पहले से तैयारी की जा सकती
0: और
1: है।
0: भारत से इसके जुड़ाव की बात करें तो
1: भारत हर साल करोड़ों टन ठोस कचरा पैदा करता है, ऐसे में एआई आधारित तकनीकें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। देश में कई स्टार्टअप और नगर निकाय एआई आधारित कचरा छंटाई, स्मार्ट बीन और कलेक्शन रूट ऑप्टिमाइजेशन पर काम कर रहे हैं। जैसे कि बेंगलुरु की भी एक कंपनी है जो डिजिटल तकनीक और डाटा को अधिक व्यवस्थित बनाने में इसकी मदद कर रही है।
0: और कुछ शहरों में स्मार्ट सेंसर वाले डस्टबिन भी हैं और आधारित कचरा संग्रहण प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है। तो ये अकेला एक समाधान नहीं है, इसमें हमें भी याद रखना होगा कि हमें हमारी को क्या जिम्मेदारी है। गीले सूखे कचरे को अलग नहीं करेंगे तो सबसे आधुनिक एआई भी पूरी समस्या को हल नहीं कर पाएगा। तो भविष्य का शहर केवल स्मार्ट नहीं होना चाहिए, स्वच्छ भी होना चाहिए।

0: श्रोताओं, आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक यूसुफ मेहर अली जी को, जिन्होंने मजदूर और किसान संगठन को मजबूत कराने में बेहद ही अहम योगदान दिया था।
1: इसी कड़ी में याद कर रहे हैं असित भट्टाचार्य जी को, जिन्हें जो महान क्रांतिकारियों में से एक हैं और इन ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे और 2 जुलाई यानी आज ही के दिन 1934 में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी।
0: जन्मदिन के अवसर पर हम याद करें श्रोताओं हिंदी के उन कवियों में से एक जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी थी, यानी कि हम बात कर रहे हैं आलोक धनवा जी को, जिन्होंने बेहद ही बहुचर्चित कविताएं लिखी थी।
1: जी, यही हम याद करते हैं जयंती विशेष पर प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को। 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल में आपका जन्म हुआ और हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने बंगाली उड़िया फिल्मों में भी कई सारे गाने गाए, कई सारे नात कलाम गजल भजन भी इन्होंने गाए और 1984 में वो

0: मुंबई आए और पहली हिंदी फिल्म थी इनकी
1: अंबर,
0: अंबर।
1: बिल्कुल। और मोहम्मद अजीज श्रोताओं प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी के गानों के बहुत ही बड़े फैन थे,
0: और
1: और
0: इनके
1: हिंदी
0: गीतों
1: फिल्मों
0: में
1: में, हाँ, और इनके गीतों में भी इनकी थोड़ी सी झलक
0: झलक
1: मिलती है।
0: दिखती है।
1: और हिंदी फिल्मों में उन्हें सबसे बड़े ब्रेक की बात करें तो वो मिला जब संगीतकार अनु मलिक ने अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म मर्द में उन्हें गाना दिया था।
0: इन्होंने अलग अलग भाषाओं में तकरीबन 20,000 से ज्यादा गाने गाए और कई सारे गाने इनके बड़े फेमस हुए, जिसमें से माई नेम इज लखन, तुझे रब ने बनाया जो गाने हैं वो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि
1: हिंदी फिल्मों को कई सारे बेहतरीन और सुपरहिट गाने देने वाले गायक मोहम्मद अजीज का निधन जो है श्रोताओं, वो 27 नवंबर 2018 को हो गया था।
0: लेकिन गीतों के माध्यम से ये आपके और हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे।

0: सुंदर संदेश को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अंधेरा एक है तो लाखों सितारे भी हैं। श्रोताओं, आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ आज के नमस्कार कार्यक्रम को देते हैं विराम। तो कविता पवार
1: और सूफिया खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। फिल्मी अंताक्षरी, ये कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए, हरा भरा पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणो जी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
4: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
5: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
6: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
5: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
7: FM सन सिटी पर लीजिए हाजिर है कार्यक्रम फिल्मी अंताक्षरी।

102.1 MHz पर यह है एफएम सेंसिटिव। मैं हूं आपके रेडियो फ्रेंड कविता नेमी के संग और प्रोग्राम है फिल्मी अंताक्षरी। ये वो महफिल है जहां आपके सुर सजते हैं और हम आपको सुनते हैं, आप हमें सुनते हैं।

ठाकुर जनरल सिंह फिल्म का ये गाना बिल्कुल हमारे प्रोग्राम को सार्थक बनाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके बगैर कुछ नहीं। तो आपको करना क्या है, हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना है, डायल करना है 2553300 2554300 और हमारा एसटीडी कोड है 0291।

0: हेलो,
1: नमस्ते जी, कविता
0: नमस्ते जी।
1: जी, तेज
0: जी
1: सिंह खींची बोल रहा हूँ सर, हाउसिंग बोर्ड से, चंपा।
0: जी तेज सिंह जी, एक कहावत सुनी है ना आपने
1: जी,
0: कि बोहनी अच्छी हो तो दिन पूरा बढ़िया जावे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आगाज अच्छा तो इंतहा भी अच्छी। तो पहला ही फोन इतना सुरीला, क्या बात
1: अच्छा,
0: है। चलिए शुरू कीजिए।

0: दीवाना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए, आज चल का है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ना। बस एक है ना, नजराना को नजराना बोल दिया होता ना तो और भी आनंद आ जाता है ना। चलिए, बहुत ही सुरीला गाते हैं आप तेज जी, और इसीलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, सेकंड राउंड की तरफ चलते हैं।
0: जी

0: क्या बात है,
1: जी फूल
0: फूल ठीक है।
1: जी। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब।

0: है मगर
1: अपनी जुल्फों में मुझको
0: मुझको
1: सजा
0: जगा
1: लीजिए।
0: दीजिए,
1: बहुत सुंदर।
0: अपने जुल्फों में मुझको जगा
1: एक मुझे
0: दीजिए,
1: ये फूल न दे तुझको दिल लगी की कसम,
0: मुझे ये फूल ना दे। गजल
1: तुझको दिल। हाँ, ये इन तरह के गीतों की उम्मीद आपसे की जा सकती है ना। बहुत ही सुंदर रहा सेकंड राउंड भी, और अब हम बढ़ते हैं तीसरे राउंड की तरफ।

0: वाह
1: मिले न गोल तो कांटों से दोस्ती कर ली, फूल
0: बहुत सुंदर।
1: आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं।
0: हाँ, एक है ना,

ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, और ये तालियां इस बात के गवाह है। तो तेज सिंह जी, बड़ा अच्छा लगा आपका आना, गुनगुनाना, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम,
0: नाम बताएं प्लीज।
1: मेरा नाम कैलाश गिरी है मैडम।
0: ओहो स्वागत कैलाश जी, कैसे हैं?
1: ठीक हो बस।
0: अच्छा, बड़े समय बाद आपने फोन किया ना।
1: हाँ राधा गो मैडम।
0: जी प्लीज।
1: ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे,

0: क्या बात है, बड़ा खूबसूरत गाना है ये भी अपने जमाने में, है ना। आगे बढ़े,
1: हाँ बोलिए बोलिए।
0: चलिए सेकंड राउंड का ये गाना सुनवाते हैं आपको।

0: क्या शब्द
1: हाँ
0: चुना
1: मैडम,
0: आपने?
1: मोहब्बत।
0: मोहब्बत, ठीक है।
1: मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मोहब्बत रंग लाएगी
0: क्या बात,
1: आहिस्ता आहिस्ता
0: जना
1: आहिस्ता
0: आहिस्ता
1: आहिस्ता।
0: आहिस्ता। ये दो गाने हुए, तीसरा
1: अब मेरे मैं
0: बचपन की कोई। बचपन
1: बचपन की मोहब्बती को दिल से ना जुदा करना, जब याद नहीं आए
0: मिलने की
1: मिलने
0: दुआ
1: की
0: करना, ये
1: दुआ
0: तीन हो गए, अब
1: करना।
0: चौथा
1: चौथा मैडम,
0: जिंदा रहती है, मर नहीं सकती।
1: हाँ मेरे महबूब
0: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।
1: जिंदाबाद जिंदाबाद,
0: ऐ
1: ऐ
0: मोहब्बत
1: मोहब्बत
0: जिंदा,
1: जिंदाबाद,
0: ये जो
1: ऐ
0: मोहब्बत
1: मोहब्बत
0: है
1: जिंदाबाद,
0: ये उनका है काम।
1: महबूब का जो लेते हुए ना
0: जी
1: जित जाए
0: चलिए,
1: मर जाए।
0: पांच गाने हो गए हैं ना, भूले से मोहब्बत करते
1: जी
0: कर बैठे, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती, कई सारे गाने। चलिए आपने पांच गाने हमको याद दिला दिए, ये बड़ी ही खूबसूरत बात रही, इसलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे राउंड की तरफ।
1: जी

0: गीत समझ आए?
1: ये मतलब कौन सा समझ नहीं आई थी।
0: तुमको भी कैसे नींद आएगी,
1: खोया खोया आसमान।

0: कोई बात नहीं।
1: पर गीत आपने पहचान लिया, ये बहुत खुशी की बात है और बहुत सुंदर प्रयास रहा, आपने फोन किया, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। हेलो
2: हेलो कविता जी नमस्कार, मैं गांव चौकड़ी जिला जोधपुर तहसील बोल रहा हूँ
1: जी। धारू राम जी नमस्कार, स्वागत अभिनंदन, कैसे हैं आप? कैसे हैं धारू राम जी?
2: मैं एकदम ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं आपकी दुआ से। तो क्या गाना है आज?
2: हाँ मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूँ।
1: जरूर सुनाइए।
2: बड़ी मुश्किल ये दूरी है, ओ बड़ी मुश्किल ये दूरी, तुमसे प्यार हुआ है, तुमसे प्यार हुआ है, आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, तुमसे प्यार हुआ है।
1: चलिए धारू राम जी, वैसे ये गाना मुझे तो याद नहीं है, पर आपने गाया है और बहुत सुंदर प्रयास किया है, इसीलिए हम आगे बढ़े सेकंड राउंड की तरफ। चलिए फिर हम आपको सुनवाते हैं गीत का अंश, एक शब्द चुनना है।

0: बड़ा अच्छा लगा, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। और आइंदा जब आप फ़ोन करेंगे तो खूब तैयारी के साथ करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। हेलो, रेडियो सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए जो कोई भी फ़ोन पे है। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: हेलो जी,
0: हाँ नमस्कार जी,
1: मैं ललिता बोल रही हूँ।
0: ललिता जी।
1: हेलो।
0: हाँ जी ललिता जी, बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं आप?
1: हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: अच्छा, हमेशा अच्छे रहें।
1: हाँ मैं
0: क्या गाइएगा?
1: शुरू करूँ?
0: आप ही को तो गाना है।
1: हाँ एक सेकेंड।

0: देखिए कितना जरूरी पार्ट है दिल है? और कहाँ उसको, चलिए कोई नाजुक कहता है, कोई आवारा कहता है, कोई पगला कहता है।
1: बिल्कुल
0: चलिए, गाना बड़ा खूबसूरत है और आपने गाया बड़ा मीठा। इसीलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड राउंड का ये गाना आपकी नजर करते हैं।

0: क्या शब्द चुन पाए आप?
1: इसमें तो दिल था ही नहीं,
0: कुछ था ही नहीं?
1: नहीं इसमें तो दिल सब था ही नहीं।
0: दिल नहीं था आपको, दिल चुनना था,
1: हाँ
0: यू?
1: मुझे दिल दिल भी चुनना था,
0: ओ, फिर क्या करें? जब
1: दिल
0: से
1: चुना।
0: तू आया मेरे द्वारे, मेरे घुल गए सांझ सकारे। आगे सुनाए इस गाने को, ताकि
1: हाँ
0: आप कोई और शब्द सुन पाए, चुन पाएंगे, है ना? ठीक है।

0: देखिए, रंग है, जब है, सांझ
1: नहीं ये तो
0: है।
1: सुना,
0: ठीक है,
1: ये जो तेरे पागलों की थम थम है, आशिकों की दिल की धड़कन है, ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, तो खूबसूरत कोई अपना अंतपन होता, ये समा
0: क्या बात है।
1: समा है ये प्यार था, किसी के इंतजार था, बेलो चुरा ले कहीं मौसम बहार था,
0: तीन।
1: ये

0: किसी का हो गया। क्या खूबसूरत गाने, ये से तो कई सारे गाने हैं ना,
1: हाँ बहुत सारे
0: ये
1: हैं।
0: तेरे

0: प्यारी, क्या खूबसूरत, क्या बात है. तो मजा आता है ना इस तरह से गाने में, एक के बाद एक गाना याद
1: बचपन
0: आता
1: याद
0: था,
1: दिला
0: है
1: देता है।
0: ना. हाँ चलिए,
1: मतलब
0: थर्ड
1: काम
0: राउंड
1: करते
0: की तरफ.
1: करते मेरी डांस हम यही चेंज करते रहते थे।
0: चलिए अच्छा, तो तीसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं आगे.

0: ये बात अब तो मैं कह सकती हूँ आऊ अब हम ऐसे नहीं बुलाया करेंगे, आपको बुलाया करेंगे ललिता।
1: मैंने जब पहले कॉल किया था तो आप नहीं
0: सुने। चलिए बहुत अच्छा लगा ललिता जी आपका गाना गुनगुनाना, और बस इसी तरह म्यूजिक से दोस्ती बनाए रखेगा और हमसे प्रेम। शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
4: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
5: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
6: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
5: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: हेलो,
1: सविता जी प्रणाम। बस
0: खुश रहिए, आनंद कीजिए, खूब तरक्की कीजिए। नमस्कार, स्वागत।
1: चक्रराम भूमिया निवेदन कर रहा हूँ बाड़मेर से।
0: जी जी जी

0: ठाकुर पुनिया, बहुत स्वागत।
1: आप
0: कैसे
1: ठीक है
0: हैं?
1: ना? आप ठीक है ना?
0: हाँ, आपकी दुआ है और सभी श्रोताओं का प्रेम है। बिल्कुल ठीक हूँ।
1: दुआएं देती है रहे आज तक मुजाबला पाको, मेरी कदमों की गुलजारी बियाबान के चमन तक है।
0: क्या बात है बड़ा ही
1: गुस्से को
0: खूबसूरत।
1: श्रोताओं के लिए आप समझाए।
0: जी, हाँ आप ही समझाइए ना, ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: दुआएं देती है राह मुझ अबला पा को, अबला पा होता है जख्मी पांव वाला।
0: बिल्कुल।
1: मेरी कदमों की गुलजारी बियाबानी पत्थर पत्थर या कांटे, ये समा नहीं फूलों तक है।
0: क्या बात है। चलिए,
1: जिसे रहे
0: अब इस चमन में
1: अपने
0: कौन सा फूल खिलने वाला है?
1: कपिल सफाई का ये शेर है।
0: कतिल शिफाई का। जी, अब गाने
1: वो
0: में।
1: गीत लेके आया हूँ मैं कविता जी, जो
0: जी
1: जफर भाई की कंसोलिंग के बाद मुझे एफएम पे नहीं सुनाई दिया, ये उलाना भी है।
0: अच्छा, वैसे तो हम हर एक की, आपके नहीं, सबका उलाहना जो है ना, एकदम झोली फैला के सर आंखों पर लेते हैं, है ना? क्योंकि आप हमें सिखाते हैं, दिशा देते हैं, और कुछ हम भूल जाते हैं तो याद भी दिलाते हैं।
1: ये तो सभी के तालमेल से ही बनता है
0: जी
1: दोस्त।
0: बिल्कुल। तो वो कौन सा गाना है जो हम भूल गए हैं और आपको याद है?
1: जी आप साथ में भैयेगा, क्योंकि
0: पक्का,
1: आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, मैं जानता हूँ।
0: चलिए कोशिश करते हैं।
1: अमेरिका से तुमसे मोहब्बत में होती, अमेरिका से तुमसे मोहब्बत होती।
0: इस
1: ये
0: बात को
1: थोड़ा
0: सुनकर
1: कठिन है
0: गौतम जी
1: थोड़ा।
0: बड़े नाराज होंगे आपसे, क्योंकि उनके प्रोग्राम में ये गाना अक्सर बजता है, अक्सर।
1: मैं अंताक्षरी की बात कर रहा हूँ, जो शान है एफएम की।
0: और हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ गाने उनकी पसंदीदा लिस्ट में होते हैं और वो अमूमन बजाते हैं, तो फिर हम उन गानों को
1: तो मैंने वहीं से सुन
0: उनके
1: के
0: लिए
1: ही तो आपको उलाना
0: छोड़ा
1: दिया।
0: तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा, उलाना शाबाशी, ये तो सब चलते रहना चाहिए, है ना? इसमें क्या है?
1: मुगल याजम मूवी के गीत
0: जी
1: काफी
0: जी
1: बजते हैं इन
0: नहीं
1: दिनों।
0: नहीं हम बजाते हैं, और स्पेशली कुछ गाने जो हैं वो हम उस अपने अगले प्रोग्राम के लिए रखते हैं, ठीक है? चलिए,
1: जी
0: अब हम सेकंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं ये गाना आपको अच्छा लगेगा।

0: कीजिएगा, सब
1: जी
0: सब आदेश कीजिएगा, किस किस पे
1: आदेश नहीं,
0: हमारा
1: शब्द
0: पूछना
1: आपको अपना चुनना होता है।
0: अच्छा जी, फिर
1: इसमें
0: शब्द
1: मोहब्बत भी
0: सुनता हूँ
1: आया
0: एक
1: है,
0: बार
1: सवेरा
0: जी,
1: रात
0: वही
1: भी।
0: शब्द सुनता हूँ।
1: ठीक है, शुरू करें।
0: जीवन या रात,
1: ठीक है, रात से शुरू कर सकते हैं, सवेरा भी है, रात भी है, मोहब्बत भी है, जीवन भी है।
0: मोहब्बत ही ठीक है। चलो
1: तीसरा चावल अक्सर पक ही जाता है।
0: चलो कविता जी,
1: जी,
0: ये तमाम शेर गीत मोहब्बत और जुदाई के से तो बने हैं सारे के सारे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, शायरी में तो मोहब्बत निहायत आवश्यक शब्द है। चलिए शुरू कीजिए पहला गाना।

0: प्यार कितना
1: ये मोहब्बत नहीं है। हम तुमसे तो ठीक शुरू किया था, मोहब्बत करके सनम हंसते ही रहे रोते ही रहे, ये गाना था। फिर जिंदाबाद पर भी एक गाना है,
0: देखो गीत मोहब्बत की झूठी कहानी पे रही
1: बिल्कुल
0: मुझे गीत
1: है,
0: मतलब आ नहीं रहा है राग।
1: मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। ये हमने गा दिया आपके लिए, चलो
0: मेरी
1: दो गाने हुए, फिर और याद दिलाओ।
0: मोहब्बत जवा रहेगी सदा रहेगी
1: सदा रहेगी, वेरी
0: रहेगी।
1: गुड, ये तीन भी हो गए। अब एक और दम लगा के हईशा।
0: मुझे मुगल यादव फिल्म के तमाम गीत सुने जिससे मोहब्बत नहीं आ रही है। दो लाइनों में मोहब्बत का आ रही है,
1: हाँ,
0: खुदानी के बाद हो तुम्हारा धड़कते दिल का
1: आप
0: सलाम
1: मुगले
0: करोगे
1: आजम से
0: मोहब्बत
1: बाहर
0: आ
1: निकलो तो
0: जाती
1: मोहब्बत याद आएगी।
0: है। अच्छा
1: मुगले आजम से बाहर निकलो।
0: नहीं,
1: हाँ
0: इसलिए मैंने सोचा इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए मैं मुगले आजम फिल्म को टारगेट करूंगा।
1: चलिए एक गाना हम याद दिला देते, ठीक है।
0: ठीक है
1: ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, है ना?
0: एक मुकजरा मोहब्बत वाला किया मैं
1: देखो आया ना याद,
0: ऐसा
1: मुगले
0: डाला।
1: आजम से निकलना पड़ता है तब याद आता है।
0: कविता जी
1: हाँ
0: एक
1: जी,
0: और बात मैं निवेदन करना चाहूंगा
1: जरूर
0: और
1: कहिए,
0: सबों से
1: जरूर
0: निवेदन
1: कहिए। हाँ
0: करूंगा
1: जी,
0: कि प्लीज हो सके तो अंताक्षरी की कंसोल एंकर सोनिया जी को संभालिएगा प्लीज, बहुत
1: अच्छा
0: ज्यादा मिस करते हैं
1: है ना,
0: जी।
1: ठीक है।
0: बहादुरी
1: तो
0: की परछाई दिखती है मैं
1: ओके,
0: वहां
1: अगली
0: उनसे
1: बार सामने
0: सुनकर
1: कोई भी हो, है ना, हम आपको रूबरू उन्हीं से करवाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरे राउंड पर आप आजमाना चाहेंगे खुद को।
0: मैं तीसरे राउंड तक पहुंच गया हूँ शेर के साथ।
1: तो अभी
0: नहीं
1: विदा लेते
0: नहीं
1: हैं, ठीक है।
0: ट्रैक मेरे से साबे नहीं आएगा
1: अच्छा, ठीक है,
0: मैं जानता हूँ।
1: ओके ओके, कोई बात नहीं। आपने जितना साथ दिया उतना ही बहुत सुंदर है, तो फोन आपने किया, शुक्रिया फोन करने के लिए।
0: बहुत बहुत आभार।
1: हेलो,
0: हेलो
1: हाँ जी नमस्कार
0: कविता जी नमस्कार, शंकरलाल गोयल निवेदन करता हूँ जयपुर से।
1: जी। शंकरलाल जी फरमाइए, कैसे हैं?
0: बस अभी इस जो शो की मुझे लगता है जो टीआरपी है ऐसी बढ़ रही है कि 10 बजे से लगाकर 11 बजे तक फोन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 10:55 पे फोन करके सोचते हैं कि चलो नंबर जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर टाटा भाई होता है।
1: ये तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं।
0: नहीं हमने सोचा कि बाकी भी लोग थोड़े से वापस आते रहे हैं, दो
1: नहीं,
0: दिन तक का
1: इसके लिए
0: बात
1: आप ही जिम्मेदार हैं, कारण कि ये प्रेम ही इतना है, हम क्या करें, है
0: है। हाँ
1: ना। तो अब जब फोन लग गया है तो
0: तो एक अभी मैं अभी पिछले संडे मैं कहीं गया था, हमारे किसी मित्र के पिताजी की ये शादी की 50 वर्षगांठ थी
1: जी।
0: और उन्होंने एक एक किसी संस्थान में उन्होंने वो मनाया। तो मुझे वहां पर एक गाना याद आ रहा है, तो हो सकता है कि ये संदेश के रूप में किसी के लिए हो
1: पक्का हो सकता है, शुरू
0: जी।
1: करें।
0: जी सुनो। सबसे बड़ी पूजा है मातृ पिता की सेवा,
1: वाह,
0: किस्मत वालों को वही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत।

0: दुख दुख है क्या पल कर मौका।
1: बहुत
0: गा के
1: सुंदर
0: गाऊं तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा।
1: सुंदर, बहुत ही सुंदर संदेश है इस गाने में। और हम रेडियो का एक्चुअल में उद्देश्य भी यही है, बातें सबको सब पता होती है, लेकिन समय समय पर उसे याद दिलाकर ताजा
0: बिल्कुल
1: तरीन
0: बिल्कुल
1: करना है ना, ये रेडियो का उद्देश्य है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए और इस गाने को सुनिए और थोड़ा माहौल बदलिए।

0: जी क्या शब्द चुना?
1: इसमें मेरी जो है ना सबसे आगे एक थोड़ा ये हमारे ईयरफोन का वॉल्यूम कब लग रहा है, थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ा दीजिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है।
0: अच्छा
1: अब सही आ रही है जी, बिल्कुल जी।
0: जी
1: एक गाना है, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिना मैं क्या कुछ
0: कुछ
1: भी
0: भी
1: नहीं। एक और है, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना।
0: ठीक है।
1: एक गाना है, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी
0: अच्छा,
1: जी।
0: ये ऐसा है गाना।
1: एक
0: देखो,
1: था उसमें एक
0: इस तरह मत
1: उसमें तो
0: बहलाओ
1: रहेगा ही।
0: शंकर जी। पर
1: अरे एक तो
0: तेरी
1: शंकर
0: मेरी
1: आपके
0: में भी
1: ऊपर
0: एक एक है इसी तरह का गाना और है, तेरी मेरी प्रेम कहानी। तेरी मेरी प्रेम
1: प्रेम
0: कहानी
1: कहानी
0: किताबों
1: किताबों में किताबों में किताबों में ना मिलेगी,
0: किताबों में
1: किताबों
0: भी
1: में
0: ना
1: भी ना
0: मिलेगी।
1: मिलेगी।
0: और
1: मेरी की जगह मेरा भी हो सकता
0: ना
1: ना
0: ना, तेरी, अभी आपने तेरा चुना, तेरी चुना है।
1: मेरी मेरी मेरी पे
0: तेरा तेरा तेरी आपने चुना है ना।
1: नहीं, मेरी मेरी
0: अच्छा,
1: तेरी मेरी प्रेम कहानी मेरी दुनिया है, ये
0: ठीक है।
1: जो
0: हाँ
1: मेरे
0: हाँ हाँ
1: मेरी चुना है मैंने।
0: ठीक है। तो तमन्नाओं की मेरी

0: जिंदगी और मुझे प्यार दो।
1: और एक तो अंताक्षरी का बड़ा जाना माना गाना है, जो तो अंताक्षरी की पहचान है,
0: अरे वाह,
1: मेरी जिंदगी में आते
0: आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती।
1: हो गए
0: क्योंकि बाकी भी लोग लाइन पे।
1: जी, अब थर्ड राउंड की तरफ बढ़ते हैं
0: जी

0: आगे तो शब्द याद ही नहीं होंगे, है ना?
1: काश ये नेम सा कोई कुमार सानू का लगा दे।
0: काश ऐसा होता ना, ये काश बड़ा दुख देता है। शंकर लाल जी, है ना, काश तो जिंदगी में जुड़ना ही नहीं चाहिए। मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि कभी भी जिंदगी में काश नहीं जुड़े, तो रिग्रेट नहीं होता। हम तो ये दुआ करते हैं कि जिंदगी की सारी जरूरतें, सारे सपने पूरे हो जाए सबके, ताकि काश शब्द उनके जीवन में रहे ही ना। तो अगली बार जब आप फोन कीजिएगा ना, तो हम नेमी जी को बिल्कुल याद दिलाएंगे इस बात के लिए, है ना? अभी भी है, अभी भी है मौका, अभी भी मौका है।

0: हम। क्या बात है,
1: है ना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस टीम को जो इतनी मुस्तैद रहती है हमारे लिसनर्स के लिए,
1: है ना।
0: ईश्वर से प्रार्थना
1: बताइए
0: यूं ही सदाबहार रहे, मस्त रहे और जोधपुर का नाम पूरे भारत में रोशन करते रहें।
1: थैंक यू सो मच इन दुआओं के लिए। और है ना, फिर भी क्या होता है ना शंकर जी, सबको खुश रखना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हेलो,
2: नमस्कार कविता जी।
1: नमस्कार जी,
2: अरविंद बोला।
1: हाँ जी अरविंद जी, कैसे हैं? बड़े अरसे बाद आपकी आवाज सुनाई पड़ी।
2: अरे बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ऐसा क्यों, सब ठीक है ना?
2: आपने याद, नहीं वो आपने याद रखा।
1: अरे तो याद तो रहेंगे ना, क्यों नहीं रहेंगे? आप हमें याद नहीं रखते?
2: अरे बिल्कुल रखते,
1: तो फिर हमारा भी तो दायित्व है, है ना?
2: बिल्कुल,
1: अपनों को तो याद रखा ही जाता है।
2: क्या बात,
1: तो सब ठीक है ना?
2: सब एकदम।
1: ऐसे ही छुट्टी ले ली थी, है ना?
2: छुट्टी तो नहीं, सबको जैसे अब बहुत इंतजार है, वो क्या शिद्दत लगती है।
1: चलिए चलिए चलिए, कोई नहीं, हम समझ सकते।
2: बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलता है।
1: थैंक यू। अब गाना शुरू करें प्लीज।
2: बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए, जाके कहा मेरा पत लिखा कोई बतलाए।
1: मैं रोऊं या हंसूं,
2: करूं मैं क्या करूं।
1: क्या बात है, इसकी रिदम बड़ी अच्छी है गाने की ना। चलिए हाँ, सेकंड राउंड की तरफ बढ़े,
2: कोशिश करते हैं।
1: तो ये गाना सुनिए, एक शब्द चुनिए।

0: हाँ जी अरविंद जी
1: चार गाने एक साथ बोलना पड़ेगा।
0: फिलहाल जल्दी से एक शब्द चुन लीजिए, समय थोड़ा फिसलता जा रहा है।
1: अखियां
0: ठीक है,
1: नैनो में आ जाती है, सॉरी भूल गए वो तो मैं।
0: दो, चोरी, कोई भी एक गाना शुरू कीजिए ना प्लीज, चार शब्द, चारों में से कोई भी एक शब्द उठा लीजिए, बाकी तो हम हैं ना साथ।
1: दिमाग ही नहीं वो चल ही नहीं रहे, सारे फ्यूज हो गए। हाँ
0: अखियां, अखियां आपने चुना ना,
1: तो उसमें वो अखियों में वो
0: अखियों के
1: नैनो
0: झरोखों से गाइए।
1: मैंने देखा जो पावरे
0: अखियां भूल गई है सोना,
1: दिल पे हुआ है जादू टोना,
0: आंखों आंखों में,
1: बात होने दो
0: फिर
1: तो अपनी बाहों में सोने दो, अरे अरे शादी हो
0: ये
1: जाए।
0: आंखें देख कर हम सारी
1: दुनिया भूल जाती है
0: बताओ कितना याद
1: अखियां
0: दिलाते हैं। ट्रैक बजाते हैं जल्दी से, है ना? ट्रैक बजाते हैं जल्दी से, अगर पहचान पाए तो। कौन सा गाना ये? बात तो बहुत सुंदर। अरविंद जी, आज की हसी मुलाकात के लिए अब यहीं पर हमें इसे विराम देना पड़ेगा, और बहुत सुंदर लगा आपका आना गुनगुनाना, शुक्रिया फोन करने के लिए। फिल्मी अंताक्षरी को देते हैं यहीं पर विराम, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी अंताक्षरी एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। आइए सुनिए कार्यक्रम टैम ने नमस्कार।
1: आपरी वाणी आकाशवाणी हाजिर है आपरो पसंदीदा प्रोग्राम टैम ने नमस्कार।

0: कबू भाई तो वे फिल्म देखने गया भाई जी तो
1: हा?
0: फिल्म देखने फिल्म
1: कैरी फिल्म देखने गया कैरी है जी को हमें जेठ महीने फिल्म देखे होगी फिल्म बन दी सारी आप ही
0: काकू बस नवी लागी है को
1: लागोड़ी है नवी
0: देखन गया
1: किन हाथ की पहल के है जी को कटी की प्रीन उन्हों पहले भड़क देखे आजकल मने की घिरे को नहीं आ
0: देखो गाड़ी आई रुकी आया आवे आवे
1: आएगा अगर तो हेलो कर भाई हेलो करे
0: भाई जी ओ काकू बुलाया था ने
2: ए आई हूँ
1: अरे भाई कहो है सारे कहो हाँ नेमो कहीं के क्या फिल्म देखने की
2: नेमो कहीं के
1: क्या फिल्म देखने की

0: ओ तो भाई नेमो तू कहीं कहीं चाव कहीं
1: पर क्यों वो मारे फोन में देख क्यों ते टेलर न
0: आ जाको
1: तो फिल्म देखन गया ते टिकट कराई ऑनलाइन बुकिंग कराई थी
0: दिमाग चल को कहूं गो हैं
2: तो कौन
0: फिल्म देखने हमें अट कई फिल्म चले काकू
2: और हाथ बोले
0: अरे कूड़ो है दुनिया भर रो
2: है क्या काम कूड़ो
0: फिल्म देखने की
2: तो कौन
0: अरे वाह नेमा वाह
2: कोई हाथ हो गए तो
0: ना 500 रुपया खर्च कराया बड़े क्या एक फिल्म देखने की वाले थाने इन हर वट बेवाड़ियो तो है कि हाथ बोले
1: मैं क्यों कहीं तरह बच्चे हूँ
2: हाँ हाथ क्यों बोलियो हाथ क्यों बोलिया झूठ बोल लो
0: 500 रुपया था चीज लाई मुँ
2: कूट बोल लो
0: तो ये तू कह दियो
2: विश्वास नहीं रियो है
0: काकुर कोई चीज बस जो जी तो हूँ लान दे हूँ हटी बैठू रहे हूँ काकू पाड़े एन एन थे जाओ पर हूँ काकू निंगे नहीं पटन दू के
2: कमजोरी आएगी हमें बादल हम ही देख दे तो भाई ये मार तो मैं कह हमें हाय ऊपर कह नहीं कम होगा
0: तो हम है ओला लाडू लाई
2: है बादलिया बारी जो है मैं माते मदार है
0: तो ठीक क्यों नहीं गणा ही पाती मैं तो थोड़ी बात
2: मैं पर मैं हाँ
0: बोले आना बिचार रहा
2: अरे हाँ ना हूँ ढूँको ऐ कह नहीं कह भाई मार तो कहीं कौन ही हूँ तो भाई देख ऐसी उठी कमरी में बैठ रहूँ अटी उटी हो जा पर बात आ है भाई आज पंख पंखेरू है जीव जिन्नावर है रिंद जोई रात जिन्नावर है मारो की करो ही मारे हम मैं को पड़े नहीं भाई हूँ बर कही लिया पर ऐड़ा दिन को देख यार
0: है नी
2: आता है
0: पण उत पारन परारन उन पहलान या मैंने मैं तो रेंज साइड
2: है रेंज आ रही है भाई हो गई
0: पण के कह देता ने वे
2: गीतड़ो तो ठीक ही होना यो के भाई अल्लाह ईश्वर पानी दो दूजो तो मको कर ले भाई बात करा भाई से और कम
0: भाई से हम बात हूं
2: कर बात कराई तो अब कहो
0: ने मैं तू 500 लोट अट मेल तन जाई छे ओके
1: भाई जी तू तो रा क्यों देते हम काकू
0: ना कोई नहीं मात 500 रुपया मेल जाई
2: छे अरे वाह भाई थारा 500 ले लो राम
3: राम राम काकू राम राम
2: हां जीव तारो जीव तारो भाई
3: गिरदीकोट घंटाघर
2: कैलाश भाई है जो गिरदीकोट फोन करियो एओ कैलाश भाई एक तो वे छाणो और एक वे छाणो
3: छाणो छाणो तो जा गारो फोटो या करे कुरण उने के छाणो ये कोई क्यों
2: छाणो छाणो
3: छाणो तो उने के और कोई टाणो क्यों कहीं के
2: ना टाणो को कहे एक तो वे छाणो एक वे छाणो
3: छाणो छाणो तो उने किया करे उकड़ो
0: पानी की कर पीबो बिना छाणिया
3: वो तो छाण ने पियो
0: तो पच तो वो छाणो ही जोयो छाण नो
3: वो छाण छाण के थोड़े थोड़े बोलवा में
2: हां बोलवा में वो मधुबई बोले क्या कैलाश बोलू कूड क्यों बोलो थे थई आज को नमे आले दई कबू आले दई पड़ोसी है हूं तो थार बोली ओळख लियो
3: हां तो ओळख लियो थे तो ये वो कह गयो कोई तो
2: अनुभवी
0: व्यक्ति काट सके
2: खड़मू
0: तेल
2: गीर पीपो एक दिन कोई लेन जाओ था जको ठोकर लागी घी ढुड़गो हम बे उठ बैठ बैठ बाहर कई के मैं यू करो वो करो वापस बे आप मन कह नी मना प्राण गिया परा हूँ कहू करियो उठू बो जको बजरी में ढुड़ियो छड़कनी रेत नहीं बो घी ठसगो हूँ चारू मेरू कहू करियो क्या छकड़े में घान घर लिए हो ला परन हूँ है जको कड़ाओ में साठ परन मैं पानी घाल हैं नीचे बड़ी तो दियो जको भाई हैं बहुत ऊपर आई को
0: जने तो अनुभव की बातों हैं हर एक बस में थोड़ी है बातों
2: हाँ तो खड़मू तेल काट नो कू मुतबड़ वे मधु भाई खड़मू तेल कार नो कहूं मतलब वाह ए गया और पड़ूतरार

0: हाँसी बात है रणजी, ओ हाँसी बात है।
1: और इस बसरी बात
0: हाँ बसरी है ना, अर्जी
1: अर्जी फूट रही है,
0: फूट रही भाई,
1: कहू फूट रही
0: है, मैं माते मदार है भाई,
1: हाथ मात्रा में गणो मुश्किल है।
0: हाँ हाँसी बात है, कह के भाई राग रागनी जाने से कंठा है बात है ना, देखा भाई कह मैं वो यूं है कि जीव जिन्ना राजीव है अन कोई माँ कह नहीं कोई एड़ो कोई वह ने में जेड़ो अन बीजनु डर तो है तो बो कौ करे के भाई रिया बले कह मैं नहीं हो सी
1: ना वो बेंजन को डरे न काकू
0: तो धंधे उन डरे
1: मैं वेजन थे बाहर जाऊं को दो नहीं
0: हाँ पहले पौड़ी रण जी थे सदका दूजे पौड़ी है के रास पुरानी बाजरी मिंडक चाल जवार इकड़ दुकड़ मोटिया ने कीड़ी नाल गवार है तो हाँ वल्की है तो खेती पाती बाबत है भाई
1: हाँ
0: के भाई रास पुरानी बाजरी ठीक है नहीं मिंडक चाल जवार
1: हाँ
0: अरे कह के इकड़ दुकड़ मोटिया ने कीड़ी नाल गवार
1: क्योंकि जरूरत तेज रहे
0: हाँ कह भाई आ देखो खेती करता है यानी
1: हाँ,
0: कह रास होती यानी हल दूजा है
1: हाँ,
0: बे तो पुराना जिको है बीज नो करनो है बाजरी रो
1: हाँ,
0: बो उन्हें साबु करनो पड़े कह नहीं जवार ने मेंढ को कूदे जीती सेठी बाहुनी पड़े
1: हाँ,
0: अन मोटिया इकड़ दुकड़ नाको
1: थोड़ा
0: कीड़ी ना गवार एकदम लेनो लेन है जिको
1: नौकरी पड़े
0: ठीक है नहीं
1: बावनी पड़े
0: हाँ तो आ बात है ठीक है रण जी बड़े रहते हैं भाई
1: ना बड़े ना तो ज्ञान की बात
0: हम
1: करें।
0: तीजे पौड़ी में थे गाड़ी आको हाँ आको है ओ ठीक ठीक एडी डली लेनी नहीं
1: आप पर ऐड काम नहीं
0: हाँ वाकई कौन दिनी बात है तो कौनी कौन करियो तेरी जरी दिनी बात है राम राम ओ टावर कपड़े कौनी मसरो भाई रोन एक भाई को नाम है एक भड़कों के कोई भाई मिल जा
1: हाँ
0: देखो
1: पांच
0: क्या
1: रुपए
0: कर
1: को
0: देगा
1: थाने आपने
0: हाँ राम राम
1: यो को काकू हेलो
0: हेलो हेलो तो
1: हाँ बोलो कन मीठा मीठा
0: क्या है हेलो हेलो
1: मीठा बोलो थोड़ा
0: हेलो तो
1: यानी और तू तू बाजे नहीं कहना
0: मन था कौन भाई है बात बाबी बात करे कोई हम मानो जी तुम्हारे थे तू हाल जी हाल राम राम
1: थे तो थे पगे हाल था
0: पगे हाल तो पगे मुंह में
1: गोटा वाली हाल था।
0: मत हाल राम राम
2: हेलो राम राम काका सर राम राम
0: राम राम राम राम देखे एक
2: राजेश बोलो करौली से राजेश
0: ओ करौली में बोलिया भाई देखे थे
1: क्योड़ा काकू
0: करौली मार दे कीड़ी है बा हगे ठोड़े
1: राम राम हुकुम राम राम
0: एजाज भाई है डलेवर एजाज भाई राज गियो कल्लोरी कल्लोरी में गियो मैं कल्लोरी
1: हाँ करो लियो
0: हाँ कल्लोरी गियो लो
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो पौड़ी से
2: कई बार मैंने अंतरक्षरी में भी फोन किया
1: हाँ
0: हमें हमें पौड़ी से चढ़ो कहीं
1: आपकी बार फिर से करना उम्मीद करते हैं जरूर बातों की
2: हाँ पहाड़ी सदना
1: सड़ना
0: ये सड़ना है भाई भाई
1: हाँ
0: एक क्या भाई एक तो वह है डांडो एक वह डांडो

0: क्या दोबारा से बोलना चाहता था?
1: डांडो डांडो
0: डांडो तो ये ढोल ये भैंस वगैरह होते हैं,
2: ठीक है। हाँ
1: डांडो नहीं किया मैं,
2: ठीक है
1: हाँ की कौन डांडो।
2: और अब डांडो
0: डांडो
2: ना, ढांडो नहीं, ढांडो तो आपने कह दिया, अब डांडो
0: डांडा होता है ना जो।
2: बिल्कुल सही।
1: कल्लोरी बोलिया नी
2: करोली।
1: ओ ठीक ठीक, दूसरी पहले पौड़ी से निकल,
2: दूसरी
1: पौड़ी है
2: कहावत है ना।
1: क्या उसमें क्या, मर जाऊं मांगू नहीं आपण कारण काज, परमार्थ करे काज मने मांगता आवे नहीं लाज।
2: इरो मतलब यूं है कि खुदरे कारण तो मैं कदे की नहीं मांगू, पर अगर दूजा रे उपकार वास्ते मांगनो पड़े तो मने शर्म भी नहीं आवे।
0: चलो ठीक है मैम,
2: ठीक है।
1: तुझे पौड़ी है कलोरी सदिया, कलोरी आ सदिया नहीं। हमें तुझे पौड़ी है कोई आड़ी आवे?
2: आपने कोई आड़ी याद है पहेली?
0: नहीं मैम, मेरे को याद नहीं है।
1: वाह बात है,
2: धन्यवाद फोन करन खातर।
1: वाह भाइयो वाह, राम राम।
2: हेलो क्या हो जन, राम राम करे।
1: राम राम हर को बोल कर
2: एक एक मीट टॉक बोलो कन। हेलो यूं बोलो तो।
0: हेलो
1: हाँ हेलो नरसिंह भाई आया नी। एक तो वह घूंटियो नी, एक वह चूंटियो
2: चूंटियो दवा रो घूंटियो, पानी रो घूंटियो, दूध रो घूंटियो, चा रो घूंटियो।
1: हाँ
2: दो उंगलियां पीछे जो चामड़ो जेले और चूंटियो, ठीक है।
1: अलादीन जी घणी बरता पहला
2: बात
1: तो रखा रहा हूँ जानू है बचे पहले पौड़ी सटका दूजे पौड़ी है
0: कोशिश करो काकू
1: यूं सोना कहे सुनार से उत्तम मारी जात, एक काले मुंडे की घूंची तुले
2: तुले हमारे साथ।
1: ओ चिरमी
0: चिरमी
1: हाँ, पर देखो कर्म री बात है,
2: कर्म है
1: सिर्फ चिरमी है जो होने रहते तुले। हाँ कोई होनो कहे हम जानी तीजे पौड़ी में तो आडी आको
0: हरिथरा नाम हजार कैसे लिखू कंकू पतरी, हरिथरा नाम हजार कैसे लिखू कंकू पतरी, कोई केवे कर मारो कोई केवे मीरारो कोई केवे नंद जीरो नाल कैसे लिखू कंकू
1: पतरी। वाह वाह वाह, विचार कर दो
2: सौर्या थरा
1: नौ हजार कुंकू पत्रियां भाई गति कोई सो को काम हो जी तो कुंकू पत्री दीजी, और तो कहूँ राम राम
0: काकू राम राम
1: राम राम राम राम। कौन बोलो है? अरे हाँ राम राम, कौन बोलो?
0: अरे प्रताप जी बोलो, प्रताप नगर
1: प्रताप जी प्रताप नगर और थे बस रहे हो प्रताप नगर नहीं एक तो वह प्रताप जी बांकड़ा एक तो वह बांकड़ा ने एक वह खाकला
0: बांकड़ा तो उन्हें कैसे बनाने
2: गया आखो दान उबाले चको बांकड़ा
1: बांकड़ा
0: खाकलो
1: ठीक
2: ठीक
1: हाँ चारो पूछो पहले बावड़ी चढ़ गया दूसरी पौड़ी है।
0: देखो हमें आप लोग कम
1: ब्याज में इवड़ा भीतर दब बड़े धुआं प्रगट होई, इवड़ा भीतर दब बड़े धुआं प्रगट होई, बेल बिछाया पांदड़ा दिन दिन पीला होई।
0: बेल बिछाया पांदड़ा
2: दिन दिन पीला
1: पीला होई।
2: अब बात कहनी है।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
4: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
3: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
4: सच?
3: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
4: समझ गया।
2: अबार आप सुन रिया हो कार्यक्रम टेमने नमस्कार।
5: वाह भाई, ये गीत तो जोर होने जो मर्दा सोनी क्या नहीं कि मालक भगवान कुदरत है जो इनकी का एलो होनी भाई क्या क्या वो क्या देर है पर
6: देर
5: बात है कौन भाई टुन टुना टावे कोई टेलीफोन अभी कौन ही की करे और दान जी आया नहीं, मिश्र भाई आयो नहीं, और दूजा है के खपत करे पण के ही है।
7: हेलो।
5: हाँ, राम राम।
7: राम राम काकू ने कविता भाई साने
5: ओ आज नाथ जी आया।
7: नाथ जी आया साहब, की करो साहब? ठीक
5: हो? ओ आओ नाथ जी, बात है हुना हो की करो?
7: ठीक हो साहब? ठीक है, खंडा ठाको हो, टाइम पास करो हो?
5: ना ना, बढ़िया बढ़िया
6: बढ़िया बढ़िया बढ़िया है। तावड़े में वैसे है तो बहुत हो, अब को काम है
7: करी उड़ी भाई साहब
6: है
7: माचेरी
6: तो छिया खैर करनी पड़े, इतनी तो छिया करनी पड़ी, पण तोय दोरो काम है भगवान थाने
7: दोरो है भाई
6: स्वस्थ रहे।
5: दोरो कारो पसीनो घणी वे और बीमारी की शरीर में रह नहीं।
6: हां नेड़ी
5: नहीं हूं तो आप घणी हज कम टाइम आ गए बैठो भाई। हां
7: साहब, खंडा तपियोड़ा ना हाथ में की कर लो?
5: अरे खंडा तपियोड़ा, पायापुर तपियोड़ा, नासक तपियोड़ा, सबणा तपियोड़ा, मारे हैंग है जो जलायोड़ा गारो ठाडो है थोड़ो
6: बेजो बेजो तो है
5: बाकी है के कौन
6: मैं जरूर पड़ी।
5: अरे आज में मैं तो मारे हाथ में है तो मार हूं एकदम झटको दूं जो है लो
6: तेरी चढ़ी लगा तू को।
7: अब याद करो थोड़ा आकाश बणी उन गीता उन पर भगवान
6: हो
5: रही हां ना जी। एक तो वे कांदो और एक वे मंदो।
7: कंदो तो आप साहब रोटी जीमो तो कंदो है
6: ते तो लगो ही जीम था वो जरूरी है जी मनो कौन
7: कौन तो जीमो साहब
5: हां लूर लपर को नहीं लागे
6: नहीं लागे
7: ए लेख मंदो देखो मंदो है ठाकुर कोई गोनो बकरी है तो के यो हां मंदो
6: हां ठाकुर वे जिनी मंदो केन बीमार वे जिनी मंदो।
5: वाह भाई वाह, पहले पौड़ी से हमें
7: हमें तो साहब देखो हमें आवेला कहीं का
5: कि नींद न जाने साथ रो। ठीक है, नींद न नहीं भूख न
6: भूख न जाने
5: भूख न भाव तो पीत न जाने जात, नींद न जाने साथ रो जा सुता मी रात।
7: साहब सही बात है, नींद तो कते भी नींद आ सके अकड़ी फौरी कोई जगह नहीं देखे नींद आवे दे तो मातो आतो कर दे
6: बिल्कुल पगरिया माते मातो मेलो तो नींद
5: आ कोई परी तो जा तो कोई
6: बो जद वे

0: ना जी सुखी वेजने सुखरी नींद वेनी तो हर ठोड़ आ जा
1: अन कोई प्री तो जा किनो तो उन कोई जात पात नहीं है
2: गई
0: जेठ के संग 11 देवर खप गया गई जेठ के संग
2: साहब
1: बात
0: होंग रही
1: है बेड़ी कर लियो हमके गनी
0: कट हमके होंग रही कम हो
1: वही तो ही
0: है ओ जबर जी
2: हैं हमके वही कौन
0: को नहीं हमके कट्टे ही नहीं हुई है
1: हमके मारे ताज मोहम्मद जी लाया बच्चू खान जी लाया राजन जी लाया राहुल जी लाया
0: तो
1: हाँ राम राम
3: राम राम राम राम
0: राम राम राम राम
1: राजेश भाई बोलो विष्णु भाई हित गया भाई विष्णु भाई कोई हमचार को नहीं
0: हमचार
1: तो राज भाई एक तो वे डोला दियो डोला दियो ने एक वे रुला दियो
3: काका डोला दियो तो अपने हाथ में लोटो या कोई सब्जी वे हाथ में कोई ढलको लगे डोला दे तो डोला दियो रुला दियो मतलब पैया मांगता वो नहीं देता मत थे मैंने रुलाया रोके
1: दूजे पौड़ी क्या पानी का बुलबुला क्या बालू की भीत क्या ओचे का आसरार क्या दुर्जन की
0: प्रीत
1: बोलनो
0: सालनो एन फोरो वे तो पड़ वे निकल जानो
1: तुझे पौड़ी सड़िया तीजे पौड़ी आडी प्री आको
3: तर लगे तो पीजे भूख लगे तो खाजे ठाठ लगे तो बाढ़ आइटम
1: है सब काम आ जाए राम राम
3: राम राम काका
1: राम राम
3: कैसे लगूं
1: हाँ जी तारों जी इन तारों
0: राम राम राम राम
1: कई दिन हम आए हो भाई हम क्या
3: ये तो बाय मिलने हम बड़ों को ना दो पांच पांच तीन तीन मिनट मिनट जारी तो बंद ही रखो इसी स्वाप कर दिखाओ
0: ना भाई
3: गहरा बना मास जिसने दिया से जुड़ा है ये फूल तेरा आसिया आंधी एक दिन ठुकराएगी देखते ही देखते काकू ये देख हक में मिल जाएगी हमें बाहर आओ
0: जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी
1: ओ कटी ले कटी जोड़ देना अपन कह मैं हूँ।

0: जान करूं बात
1: ना ना
2: कदा कयो हुजूर करूं
0: बात करे मन में अपने आप ने कांटा किती है हो हमजे के
2: बात बताई जड़ में फोन कई
0: एक जो है कुंडो और एक वे बुंडो
2: आप गुरु
1: और मारो बुंडो कौन कई बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा
0: मुझसे बुंडा कोई
2: कोई और कुंडो तगारी को
0: तगारी तगारी मैं जो और कहूँ
2: आपो तगारी को दे के लोग तगारी
1: कुंडो के
0: हाँ कुंडो के कुंडो कुंडो
1: एंड के जना बनको के का
0: हाँ बनको के
2: मैं वो लोग भी हुई हाँ लेरिंग आया अपने सोचन का मार घरे आया तो मन के कुंडो लेना ठाकर तो घोड़ी ने नीरा
0: देश काल है हमें दूजे पौड़ी है के सोना बया न नीपजे मोती लागे न डाल रूप उदारा नी मिले न फूलिया
1: फिरो जमाल
2: ऐसे जो नी मेरे बा लगे बुड़ी हो नी मांगी मिले नी
1: सोना
2: बुजड़ी है बड़ी मिले
1: क्या
0: बात है तुम कुदरत रा खेल कुदरत रा निजाम है भाई
1: अनमोल है अहम चीजों अनमोल है
0: वाह तो तुझे पौड़ी चढ़ गया तुझे पौड़ी है
2: तुझे पौड़ी आ दी आको
0: हाँ आको
2: देखा तो ना मैं कि है के हम बस बात नहीं बिने जितने बाप ही ली हुए क्यों कबू
1: बिल्कुल
2: तो रगन दल के सरी पाव बदन सिर मोर कहो ककू रहे कटे कपट मित्र एक ठोर
0: कपट तो किन
1: कोई मित्र सही बात
0: अरे सुन अरे इश्क मुश्क सुश्क है सुबह नहीं सुबह
2: बिजी है नहीं बिजी है
0: हाँ बिजी है थार घर कर दो थार घर ही बना दो
2: तो रगन दिल केसर भी पाव पदम सिर मोर कपट मित्र एक ठोर कहो काकू रहे कटे
0: अरे हैंग खोपड़े में और कट रहे
2: बताऊं बा
0: बा बा क्या आड़ी आके ने लल्ले लायो कंट कटू
2: नहीं कौन तो लो पस समझ में आई के बात बिजी है कपट मित्र एक सवर कपट ही सारो मित्र सड़ो एक थोर
0: नहीं रे आ तो ही पच गए हो
2: तो दूध ये सक मुझ सक गया बड़े रही भी कहती बाप
0: छे माँ ज्ञानी मेर क्या निखाव के कौन मेर गोना गोना चराव जड़ ही दिया ठीक है वाह भाई ओ वाह तो ये मार मगज मत भाई आई है कि भाई कोई सौ की रचना है तो ठीक है मीठो बाजो नहीं
1: हाँ
0: वाह हो रहा हूँ भाई

0: भाई वो गीत तो जोर है पर इंदर एक बात है मिस्र मनी एक दिन बींदनी लेन खेत में गियो फूड अपाड करियो कांटो बाड करी एंड पचाओ तो वो बींदनी बिल मवे कै कै द्रिम जिम बरसता साउंड होगा नेटे मेहंदी पंगर जाई है जगह का पर खेती जोर हुई एंड मैं थोड़ो मोड़ो बलियो एंड ये गबा गबी एक दिन करी जी का हूँ है जी का भातोली काटी जी थे कट गियो ठाए मजरी
1: जाने मद्रास
0: उठ जानो पड़ियो एंड आ रहा धीरे से
1: जन के बातों में नहीं बिल माना
0: हाँ एंड दूसरी बात आए आ धीरे से में आई हुई हाँ धीरे से में ओ भाई ये नहीं ओ ये कम को है नहीं है गोल को पर हूं तो कहीं भाई देखे मन लावे लाज तो हूं तो कोई बात की नहीं कू
1: मिन कम नहीं कम
0: क्यों को नहीं भाई देखे और हड़को लागे नहीं लागे
1: तो क्या नाला रही लागे थोड़ा
0: हां मारो नहीं हां तो राम राम
2: हेलो
0: हां कौन बोलो

0: हेलो।
1: हाँ बोलो कनी, उतावल क्यों करो?
0: बोलो सर।
2: कौन बोलो सर, नाम फरमाओ।
0: मैं शेरू कुमार।
2: शेरू?
0: हाँ।
1: शेरू की ठोड़ू?
0: हाँ।
2: कौन की ठोड़ू करे शेरू जी?
0: शेरू पादरी से।
2: पादरी
1: है?
2: बालोतरा
1: कर जो।
2: सही।
1: एक वे शेरू भाई
2: हाँ
1: जाड़ो जाड़ और एक वे डालो डाल। सोरा बता दे कोई कह नहीं के कोई बुजुर्ग आदमी खन बैठा हो तो ठा पड़ जाओ के कौन पहले फोन लगे भाई ठीक है। राम राम।
3: नमस्कार साहब।
1: ओहो देखे भाई मारे मित्र आया।
2: जिमो लाडू।
1: लाडू कहीं भाई देखे आज ईद होगी।
3: धन्यवाद साहब। धन्यवाद भाई सनन सब ने।
1: मैं दूजो कदे गायो ताज मोहम्मद जी को अरदास की।
3: देखो सर रेडियान बतावे बेबू जाही।
1: यूं वाह साहब तुम पौड़ी सडनो
3: ना साहब मैं तो मनो था रमा समा करने लगा।
2: तो ताज मोहम्मद जी बैठा की ठोड़ो हमें
1: आप धरी
3: इस्लाम नगर
1: धनी बैठा और मीर जाग
2: ना
1: कोई बोलना घेरा मजा
2: कोई ढूंकड़ा है तो बैठा है कोई हाल में बैठा है।
1: अरे एवड मोटो है लड़ा सरावे
2: तो हमें एवड लेन क्योड़ा है
1: ना उठी बैठा नीमड़े तो बैठा
2: यहाँ
1: वाकई कौन दिली बात है। हमियन भाई पहला गोना ब्यावता जे मैं उठ खावता कई है जो आनंदात बजवा खैर बढ़िया पज भाई ये है मामला गड़बड़ होगा। राम राम। मिश्र भाई टेलीफोन लागे कौन लगे भी कौन इनका लागे कौन।
2: हेलो
4: हेलो।
2: हाँ राम राम।
4: राम राम
1: साहब। ओ सुमित्रा
2: भाई आया
1: कई दिन हो
2: है ने देखो थे काकू ने। आवाज को नहीं आ रही
1: बोल। तो गाज घर।
2: हेलो
4: हेलो।
1: हाँ हुन गया कौन ही।
4: हेलो।
1: हाँ वाह मुझे कौन गड़बड़ है टेलीफोन में
2: हुन ही चकुन बोने।
1: हाँ गिरदी कोट में टावर हाल पकड़ियो कौन भाई। राम राम।
2: सुमित्रा जी धन्यवाद पर
1: हाँ राम राम। हाँ
2: वे तो थे हुन लेता तुम्हारी आवाज।
1: अरे कोई खोटमाल है
2: भाई। कोई खोटमाल भी की
1: आंधी मेरा दिन है जिको कह नहीं कई और बांध कई सब ऐसी हो ही बात है। राम राम। है कौन गड़बड़ होगी तो होगी मैं पक्का बात है गड़ी तो मकाई करा मन में वह नहीं तो बस बात न्यारी है भाई और तो कहूँ है कौन
2: कहूँ बात मन में
1: तो वह जिको
2: कौन मन री बात कह उठा
1: कह रहा है मन
2: मैं कोई भगवान तो हूँ कौन
1: ओ कहूँ मीठू बाजो नहीं भाई ये लगो लग बाजे होना दे मार तो मगज के अड़ी काम करे
2: या तो थार मन में कटी आई तो बात नहीं
1: वह है जिको मार हूँ उसे ठा पड़ गई।

0: वाह भाई, ये तो ये गणित तावड़ो पड़े यहाँ एडकार की इतना
1: ओए तो क्यों तावड़न बड़न ना बड़े यहाँ
0: ये भाई ये मंदिर आड़ा गीत दाखो आवे
1: नहीं आवे
0: हाँ एक मपती या गीत
1: अरे मपत मालिक हूँ
0: मालिक तो मैं
1: मोहब्बत मालिक को करनी बात है का को
0: हाँ हंसी बात है भाई मालिक
1: एक तो आडोर जो की मालक को बन जाके तो पचे ने अट संसार में चैन नहीं कौन
0: हंसी बात है
1: कि और संसार झूठो लागे लागे
0: क्या भाई क्या इतनी रसना रसना रह कटे हो खपतकार हूँ पर मैं 4-5 महीने फंस कर बस हूँ हो दिया जाऊ कठी जान गुफे
1: में तो है का हो दे मिल तो जा
0: मिल जाए क्यों को मिले
1: राम राम मुंडे सुनियो तो के
0: राम राम
1: हो दे राम ही मिल जा हेलो
2: हां राम राम सर
1: हां पाचो फोन आयो
0: आयो भाई हमें सुमित्र भाई हो आज तो हमें अते ही वेला कोनी टाइम हाउ कम है
2: कोई बात नहीं
0: ठीक है राम राम राम राम राम राम राम राम वाकई कौन हाँ कौन बोलो
3: अगुन कविता भाई ने राम राम
1: राम राम
0: राम राम राम कौन बोलो
3: कविता भाई ने अलियान पुरु बोलो अर्जुन राम
1: अर्जुन
0: अर्जुन भाई आज हम बात रही कौन
1: इनके टाइम बहुत कम रही है अर्जुन जी
0: ठीक जिनी बात
1: हमके जरूर फोन कर जो है
0: राम राम हम वाक करें भाई हम कौन है
1: करती हूँ
0: आ हो कौन मीटू

मिश्र भाई माता आई गो मिश्र भाई कह गो हूँ अटू थारू मिल गया पस है नहीं तो मने कह दान भावे नी नींद आवे नी है जिको कह के बस मारो कोई टेलीफोन लागे कह मैं तो भाई कह के बस मारो कह सिद्ध है जिको फिर चार लगी ऊपर खैर की कौन भाई देखे थोड़ा दिल रखो।

0: क्या क्या क्या भाई कुदरत है,
1: मेघना
0: ही बारी नहीं बाता होई और भाई क्या नहीं क्या आशा मोटो अमरदन है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मेघना ही होई थोड़ा क्या नहीं भाई आप री वैजरी माला फेरो और भाई हमने क्या क्या
1: माला फेरो मूल्यांकन करो मेघ क्यों नहीं आवे है
0: कि जड़गण क्या नहीं सुनी धरती करे पुकार पौधे लगाओ करो श्रृंगार ठीक है भाई वाह भाई वाह नियाल कर दिया और हम भाई सेनों लेवा ही राम राम,
1: राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टैम ने नमस्कार। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। दिन के 12 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना

0: 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का गाना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब सुनते हैं फिल्म उमर कैद का ये गाना, लता मंगेशकर मुकेश का गाया हुआ, गुलशन बावरा का गीत, सोनी ओमी का संगीत।

0: फिल्म सावन का ये गाना सुन रहे थे जिसे लिखा था असद भोपाली ने, धुन बनाई थी हंसराज बहल ने, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है खयाम ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का ये गाना, वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सौदागर का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फिल्म फांसी का ये गाना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

योगेश की शब्द रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म मिली का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का गीत, किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

जावेद अख्तर के बोल हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत, फिल्म मशाल का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। ये थी आज की यादों के महफिल की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन।

आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार. सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं. खिलते नगमों की कलियां चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, 100 सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम. ये कहता है दिल थाम लोगर, रंग साथ अभी खिल जाएंगे, वन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे. रजनी गंधा संग खिलता मन, बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है. तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है. तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें ज़रूर बताइएगा. हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं. बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोताओं ने भी

0: मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम है जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है और हमें उदासी दूर होती नजर आई और हम हो गए शामिल सुरीला सफर में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि आपकी इबारत में हमें फूल और कलियां नजर आईं, तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की। 3 दिन से एक हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में 3 दिन से 3-3 फूल खिल रहे हैं। आज 3रा दिन है और कल 4थे दिन के लिए भी उसमें 3 कलियां हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है, क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियां देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने, और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं, तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितनी गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवन में वो सब अनुभूतियां देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो, अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है मोहब्बत में, मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं, तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नज़र डालते चलें जो कि आपकी पसंद हैं। एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं।
1: झूमता मौसम।

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चलें तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा, इसलिए कुछ गीतों को हमने छांट कर लिया है, चुनकर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, लेकिन एक सवाल और है। आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियां छिपी हुई हैं, आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है। उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के, तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं. बताया है कि फिल्म ओपेरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी. और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियाँ थीं, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से. और बताया है कि कभी कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं. हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर लिखें. अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है. वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरती का और तमाम उन चीज़ों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं. लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज़ और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा. यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले. तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें. लेकिन उससे पहले ये संदेश है. एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है. ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते. उनका आना जितना सुखद होता है उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है. कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है. क्या बात है. एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है. जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं. पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है. हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे

मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का यह सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहां सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी।

पैदल यात्री हमेशा लाल बत्ती जलने पर ही जेब्रा क्रॉसिंग पार करें। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ज पर। दिन के 1:15 हुए हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: वंदन अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो नारी वाटिका में। आज की नारी वाटिका का सफर आप तय करेंगे अपनी दो हम सफर सखियों के साथ। मैं हूँ पूर्णिमा और मेरे साथ है
1: मैं हूँ खुशबू। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: सखियो कहते हैं ना कि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बड़ी चीजों की नहीं बल्कि सही जानकारी और सही सोच की जरूरत होती है। हम अपने जीवन में रोजाना कई छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही छोटी बातें हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और सफलता पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है।
1: और यही नहीं खुशबू, ज्ञान वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी रोशनी प्रदान करता है। जब हम सही जानकारी मिलती है तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जीवन में अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल बन पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा। और देखिए, स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच और समय का सही उपयोग सफलता की सबसे मजबूत नींव होती है। यदि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए समय निकालें, साथ में प्रकृति से जुड़े रहें, जीवन में सुकून के पल तलाशें और अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाए, तो जीवन की आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही आसान हो जाती है।
1: हाँ, और हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। तो आइए, इस प्रोग्राम में आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि कुछ नया सीखें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। ज्ञान, प्रेरणा, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: तो सखियों, आज जो है हम चर्चा करेंगे बहुत सारे विषयों पर जो बहुत इंटरेस्टिंग है. लेकिन पूर्णिमा, पहले मुझे एक बात बताइए, आज आप इतना थकी थकी सी क्यों लग रही?
1: अरे 1 जुलाई से स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को सुबह उठाना, वो इतना मुश्किल से उठते हैं ना, क्या बोलो। रात को लेट सोते हैं, फोन या टीवी देखते हैं, और लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं और सुबह परेशान करते हैं। इसलिए इसलिए थोड़ा सा देख सकते हो कि यार थकान सी तुम फेस पे है।
0: देखिए, वो तो है कि जब बच्चे घर में होते हैं ना, और ये जो समय आता है 1 जुलाई के बाद में, स्कूल्स का लोड, किचन का लोड डबल हो जाता
1: वो
0: है.
1: छुट्टियों में इतने आराम से वो रहते हैं ना कि वो सुबह का जो उनका शेड्यूल है वो पूरा खराब हो चुका होता है। वो जब देर रात तक वो टीवी और फोन देख के सोते हैं तो उनका पूरा जो डेवलपमेंट है वो ही बिगड़ता चला जाता
0: गड़बड़ा
1: है,
0: जाता है
1: गड़बड़ा
0: जी.
1: जाता
0: तो
1: है।
0: उसी का असर है कि आज आपके चेहरे पे दिख रहा है. देखिए सखियों, आज के दौर में बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जितना उनकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है. और कहीं ना कहीं जब ये सब डिजिटल गैजेट्स होते हैं तो सोशल डेवलपमेंट पीछे छूट जाता है.
1: और ये जो सोशल डेवलपमेंट है वो सोशल स्किल्स जो है वो बच्चे को दोस्त बनाने या फिर कुछ छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने या फिर किसी की मदद कैसे करनी है या किस टाइम पर आपको लगता है कि उसकी मदद करनी चाहिए, इन सारे जो स्किल्स है उसको डेवलप करता है।
0: देखिए पूर्णिमा, हमें भी याद होगा ना, हम भी हमारे जब
1: हाँ
0: बचपन में होते थे तो शायद मोबाइल्स वगैरह ये हम नहीं जानते थे क्या होते. हम लोग ना खेलते थे बाहर सड़कों पर, ऐसे ही घूमते थे. और अक्सर कभी ऐसा होता था ना कि कभी किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती थी या कुछ कहा सुनी हो जाती थी, तो वो 10-15 मिनट

0: में ही सुलझ जाती
1: और
0: थी।
1: वो जो लड़ाई झगड़ा है वो कभी आपके घर तक नहीं जाता था, वो अपन आपस में ही सुलझा लेते थे। पर आजकल के झगड़े तो पहले घर आते हैं फिर बच्चे बाद में सुलझाते हैं।
0: हाँ, और उसमें क्या होता है कि जो भी पेरेंट होते हैं वो ये कहते हैं नहीं बेटा आप तो घर पे ही रहो, घर पे ही आप खेलो, आपको ये दे देते हैं, आपको ये खिलौना दे देते हैं, आपको ये वीडियो गेम प्लेयर दे देते हैं, है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चा जो कनेक्ट होता है सब फ्रेंड्स से, सोशल जो भी डेवलपमेंट उसका होना चाहिए वो नहीं हो पाता है।
1: हाँ, और सोशल डेवलपमेंट उतना ही जरूरी है जितना आज हम स्कूल बच्चों को भेज के जब एजुकेट करते हैं तो सोशल डेवलपमेंट का भी जो नॉलेज है वो बच्चों को आज के जो दौर में खुद को स्टैंड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: और ऐसे भी काफी बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत शाय नेचर के होते हैं, शर्मीले होते हैं, तो कुछ को काफी सारी सिचुएशन से भी डर लगता है कि भाई मैं इन सब के साथ में घुल मिल पाऊंगा या नहीं। देखिए स्कूल भी जब बच्चे जाते हैं ना, हम लोग एडमिशन के लिए लेकर जाते हैं बच्चों को, तो उनको काफी डर रहता है कि नहीं मैं वहां एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं, या फिर मेरे दोस्त मुझे कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक मैटर हो जाता है कि बच्चे को इस टाइम पे मेंटली किस तरीके से हम हैंडल करें।
1: और बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट्स है ना उनको भी मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स भी रो रहे होते हैं आज के टाइम में कि यार हम बच्चों को कैसे भेज दें, वो वहां रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी खुद का डेवलप करके उनको इतना स्ट्रांग करना है कि वो आज
0: जी
1: की सोशल लाइफ में खुद को स्टैंड कर पाए।
0: यानी कि पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे में सोशल स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सखियो इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप तक पहुंचाती हैं ये नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक।

0: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर गुमान राम बिश्नोई, पीडियाट्रिशियन जालौर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, स्कूल फिर से खुल गए हैं और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, ऐसे में बच्चे अचानक बार बार बीमार क्यों पड़ने लगते हैं?
1: लंबे समय तक भीगे कपड़ों में रहना संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। साथ ही छुट्टियों के बाद बच्चे फिर से कक्षा में एक साथ आते हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं, साझा चीजों को छूते हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं। ऐसे में वायरल संक्रमण एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक आसानी से फैल सकता है। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें, बारिश में भीगने पर तुरंत कपड़े बदलवाए और गीले जूते मुझे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल न भेजें। यदि बच्चे में सर्दी खांसी या बुखार के लक्षण है तो उसे आराम करने दें। इसके अलावा खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचें।
0: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी नारी वाटिका में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चों को हमें सोशल जो डेवलपमेंट है उसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए और उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा सोशली डेवलप्ड नहीं होगा वो खुद का विकास तक नहीं कर पाएगा।
3: और देखिए सखियो, सोशल स्किल वे बुनियादी क्षमताएं होती है जो बच्चों को दूसरों से जोड़ने, संवाद करने या फिर सामाजिक माहौल में सफल होने में मदद करती है ना। और ऐसे में ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर बातचीत करना या टीम में काम करना जैसे गुण भी शामिल होते हैं। अच्छा पूर्णिमा, ये जो स्किल्स होते हैं ना, ये न केवल स्कूल और दोस्ती के लिए जरूरी होते हैं, बल्कि इन फ्यूचर में आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं, आपकी जॉब कर रहे हैं या फिर आपके जो रिलेशंस होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस।
2: क्योंकि ऑफिस में अगर आप किसी से बातचीत नहीं करोगे तो आप वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर सकते
3: वो
2: तो बच्चों को बचपन से ही अगर हम डेवलप करेंगे तो जब वो स्किल्स डेवलप होगी तो बड़े होकर उनकी जो सक्सेस है उसके अंदर वो बहुत ज्यादा उसमें योगदान देगी।
3: और देखिये, आज का तो जमाना ही मल्टी टैलेंटेड का है। हम पेरेंट्स अब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ये भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट वो पीछे छोड़ देते हैं।
2: कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे हम किसी शादी में जा रहे हैं या फंक्शन में जा रहे हैं और अपने बच्चे को हम घर पे छोड़ के जाते हैं कि यार इतनी गर्मी में वो वहाँ क्या करेगा, हम लोगों के बीच में वो वहाँ क्या करेगा, पर हम ये नहीं समझते कि इससे उसका सोशल डेवलपमेंट है वो रुक रहा है।
3: और देखिए, जो फैमिलीज होती है ना, वो फैमिलीज की जो गैदरिंग होती है, मिलना जुलना होता है, वो किसी फंक्शंस में ही होता है। और ऐसे में अगर आप अपने बच्चों को लेकर ही नहीं जाओगे तो आज से 10 साल बाद उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये कौन है, या फिर ये मेरे अंकल आंटी है, ये मेरे मौसा मौसी है। तो बच्चा कहीं ना उनको पहचान भी नहीं पाता है वो। कई सालों बाद में, अच्छा आप मेरी ये रिलेटिव है, आप मेरे ये रिलेटिव है, तो ये चीजें जब हम बच्चों को शुरू से ही नहीं सिखाते तो वो सीख ही नहीं पाते।
2: इसलिए हमेशा हमें अपने बच्चों को हमें अपने साथ रखना चाहिए, कहीं पे भी हमें लेके जाना चाहिए, जिससे वो 10 लोगों से मिले, बातें करे और वो कुछ ना कुछ उनसे सीखे। और यही नहीं, कई बार होता है कि हम बच्चों को बाहर खेलने भी नहीं भेजते हैं कि ना धूप बहुत है या वो बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं या ऐसा है, या बच्चों को अपन रिस्ट्रिक्ट करके घर में रखते हैं कि हम तुझे गेम्स दे देंगे खेलने के लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें बच्चों को जितना दूसरे बच्चों के साथ जितना खेलेंगे उतना ही उनका सोशल डेवलपमेंट होगा।
3: अच्छा एक बात

0: भी है कि बच्चों के जो सोशल स्किल्स होते हैं वो उनके विकास के विभिन्न चरणों में भी बदलते हैं ना. क्योंकि अगर बच्चा छोटा होता है, 5 साल तक होता है, तो उसकी अपनी सोशल नीड्स अलग होती है, 5 से 12 साल तक अलग होती है. और उसके बाद में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी जो फीलिंग्स है उसके अकॉर्डिंग अपनी सोशल लाइफ उनकी रहती है. तो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे वैसे भी रिलेशनशिप जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जटिल होते हैं. तो पेरेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी होता है कि हर उम्र की बच्ची को अलग अलग सामाजिक चुनौती का सामना करना पड़ता है.
1: और इसीलिए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए माता पिता को ध्यान देना चाहिए. उनकी सोशल डेवलपमेंट करेंगे तो बच्चे का फ्यूचर जो है वो सिक्योर और सेफ रहेगा.

0: खुशबू, अभी हम बात कर रहे थे बच्चों के सोशल डेवलपमेंट की, तो सोशल डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा जरिया है उनको घुमाने ले जाना।
1: हाँ देखिए, इसमें ना सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे नेचर के साथ भी जुड़ते हैं, तो उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है।
0: और जब मानसून हो और साउथ इंडिया अगर घूमना हो तो साउथ इंडिया सबसे अच्छी जगह है मानसून में घूमने जाने की।
1: क्या बात कही। और देखिए, ये जो हमारा जो सूर्य नगरी है ना, यहाँ पे अगर हम रहते हैं तो हमें तो चाहिए कि भाई हम कहीं अच्छी अच्छी पहाड़ वाली ठंडी जगह के अंदर जाएं, और ऐसे में साउथ इंडिया से बेटर ऑप्शन शायद कोई नहीं।
0: हाँ, क्योंकि साउथ इंडिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, और वहाँ पे जो बारिश के टाइम जो झरने हैं, जो नदियाँ हैं
1: जी
0: वो, और जो समुद्र है वो बहुत ही सुंदर लगता है।
1: और देखिए, जब सुंदरता मन में बसी रहती है ना और आंखों में बस जाती है, तो शायद उससे बेटर चीज कोई हो ही नहीं सकती। और देखिए, इस व्यू के साथ ना हम हमारा पूरा साल निकाल सकते हैं।
0: हाँ, अगर आप साउथ की सबसे अच्छी, अगर बात करो सबसे अच्छी हिल स्टेशन की, तो कुर्ग हिल स्टेशन बहुत ही फेमस है, जो कि कर्नाटक
1: क्या
0: में है।
1: बात है।
0: कर्नाटक के ये जो कुर्ग है वो बहुत ही एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ पे घने पहाड़ और धुंध से घिरी हुई चारों तरफ उसके धुंध और बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। मानसून के समय में इस जगह पे प्राकृतिक जो सुंदरता है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कुर्ग एक प्राकृतिक प्रेमियों का स्वर्ग भी कहा जाता है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर जगह बताई है आपने। और
0: हाँ,
1: एक और जो नेक्स्ट जगह है पूर्णिमा, वो है हम्पी। बहुत कम लोगों को ये पता है, कर्नाटका में ही है। और यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस जगह को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में रखा है,
0: हाँ
1: तो इसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे शानदार खंडर है, अद्भुत आकर्षण का केंद्र जिन्हें माना जाता है। और यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो 15वीं और 16वीं शताब्दी के इतिहास को जानने के लिए आते हैं, स्पेशली जिनको रुचि रहती है ना कि हम पुराना
0: हिस्टोरिकल
1: आर्किटेक्ट।
0: मॉन्यूमेंट है, तो
1: हाँ
0: उनको जिसको इस मॉन्यूमेंट पे इंटरेस्ट होता है,
1: जी
0: हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, उनको बहुत अच्छी लगती है
1: हाँ, तो
0: जगह।
1: एक मॉनसून के अंदर जो ये प्लेस है ना, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देता है।
0: हम और भी ऐसी जगह की बातें करेंगे, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपकी अपनी नारी वाटिका में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मॉनसून के सीजन में हमें साउथ इंडिया में कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए
6: जी।
5: और उनमें से एक है महाबलीपुरम। ये देश का एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल है और ये पहले एक बंदरगाह हुआ करता था, जिसकी वजह से इसकी अपनी एक ऐतिहासिक पहचान भी है। और इसको 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया। अगर आप इस जगह पे जाएंगे तो आपको कई सारे मंदिर और दार्शनिक स्थलों का दीदार होगा और इस जगह पे आपको वास्तुकला का बहुत ही सुंदर और अद्भुत नमूना देखने को मिलेगा।
6: क्या बात है। और इसी कड़ी में नेक्स्ट जो टूरिज्म स्पॉट है वो है कोची। जी हाँ सखियो, कोची जो है वो भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है और एक ये ऐसा एकमात्र ऐसा प्लेस है जहाँ पर अगर आप आते हैं ना तो यहाँ से को रिलेटेड जितने भी अदर आपकी जो टूरिज्म स्पॉट है आप उनको आसानी से अप्रोच में ला सकते हैं ना। जैसे अगर आप कोची आ गए,
5: सेंटर प्लेस
6: है ना, तो वहां से आपको एक बहुत बड़ी द्वीपों की श्रृंखला आप देख सकते हैं। और इसी वजह से पूर्णिमा यहाँ पे बहुत सारे सैलानी हैं जो हर साल आते हैं और काफी संख्या में आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो सोलो ट्रैवलर है ना, जिन्हें अकेले घूमने का बहुत शौक है है ना, जो भरोसे नहीं रहते कि भाई हमारे साथ कोई चलने के लिए हो राजी तो हम जाए, तो वैसा नहीं है। सोलो ट्रैवलर्स भी है जो खूब सारे यहाँ पर आते हैं, या फिर आप चाहें तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं।
5: और इसी के साथ साथ अगर एक और स्पॉट की हम बात करें तो वो है बैंगलोर, जो कि है कर्नाटका में। बैंगलोर हम लोगों को कई वजह से जाना जाता है और इस जगह पर आकर आप घूमने के साथ साथ अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए भी आ सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सुंदर सिटी है और यहाँ पे मानसून के समय में यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर से बारिश होती रहती है और मौसम बहुत ही सुहावना होता है। इसमें अगर हम बाहर घूमते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। यहाँ पे खूब सारे पार्क्स हैं, बहुत अच्छे महल हैं और बहुत अच्छे से उनको उन्होंने डेवलप करके रख रखा है। प्राचीन और आधुनिक संस्कृति को यहाँ पे संजो के रख रखा है। तो ऐसे ही अगर मानसून में आपको कहीं पे भी घूमने जाने का मन है तो आप साउथ इंडिया एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं।

0: पूर्णिमा देखिए, घूम के जाने जाकर वापस आने के बाद में ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं हमारी स्किन केयर, है ना,
1: सेल्फ केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, सब कुछ करना पड़ता है,
0: सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं ना, जो अब अगर हम देखें कि यहाँ का जो क्लाइमेट है और हम बाहर घूमने जा रहे हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो ऐसे में जो हमारी स्किन होती है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है.
1: और हमें ऐसे ही कुछ भी अपनी स्किन पे नहीं लगा सकते हैं. कई बार जैसे हमें लगता है कि एलोवेरा, जो कि प्राकृतिक, उसके अंदर औषधि माना जाता है, उसके अंदर अगर हम कहें कि हम हमारी स्किन पे, हमारे बाल पे, या हमारे जो पाचन संबंधित जो तंत्र है, उस समस्याएं भी हैं, उसके लिए भी हम एलोवेरा यूज करते हैं, वो बहुत फायदेमंद होता है.
0: देखिए, वो तो हम लोगों को काफी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि अगर आपको स्किन रैशेज हो रहे हैं ना, आप कहीं बाहर जाकर आए, कोई एलर्जी हो गई है, तो आप फटाफट से एलोवेरा जेल लगा लो तो सब सही हो जाएगा.
1: कई बार हम ऐसा होता है कि धूप से आते हैं और हमारी आंखें जल रही होती है, तो बोलते हैं कि यार एलोवेरा जेल लगा के आप फेस वॉश कर लो, आंखें वॉश कर लो, आपको बहुत आराम मिलेगा. और ऐसा होता भी है कि हमें ऐसा करने से हमें आराम भी मिलता है, पर कई बार क्या होता है कि एलोवेरा जेल भी कई बार हमें नुकसान पहुंचा देता है.
0: देखिए, हर चीज के अगर अपने फायदे हैं तो नुकसान भी है, और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि एलोवेरा जेल अगर आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही होती है तो इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं.
1: हाँ, मुहासे होने लग जाते हैं, या फिर जलन होने लग जाती है, या फिर

0: अरे जो पोर्स हैं उसके अंदर हमको पेन होने लगता है, जो चेहरे पे जो पोर्स है उसको भी हमें दिक्कत होती है, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखती हैं एलोवेरा जेल लगाने के बाद। अगर आपको एक बार करने से या दो बार यूज़ करने से अगर आपको ये चीज़ फील होती है तो हमें इसको देखना चाहिए कि हमें एलोवेरा जेल से नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है।
1: देखिए, वो तो यही चीज है पूर्णिमा की, अगर आपको कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल, उसका एक पैच टेस्ट जो है वो हमेशा करें हम हमारी स्किन पर, पहले एक छोटी जगह पर लगाकर देखिए कि उससे कोई एलर्जी है या फिर नहीं है, और इसके बाद ही आप अपने फेस पर उसे अप्लाई करें, ताकि आपको किसी भी तरीके की नेगेटिव इफेक्ट का, साइड इफेक्ट का सामना
0: जी
1: नहीं करना पड़ेगा।

0: उसमें से सबसे अच्छी और सबसे प्यारी है हमारी आंखें।
1: और देखिए, घूमने की बातें करिए, स्किन केयर की बातें करिए, तो आंखें कैसे पीछे छूट सकती है। और
0: हाँ
1: आंखें जो होती है ना, वो हमारे शरीर का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है पूर्णिमा, की कई बार हम इस इम्पोर्टेंट हिस्से के साथ भी रिस्क ले लेते हैं।
0: अरे जब हमारी आंखों पे चश्मा लग जाता है तो हमें लगता है कि यार हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं और हमें ना कुछ और करना चाहिए, तो हम कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं। वो हमारे चश्मे का एक विकल्प की तरह हम उसको यूज करते हैं।
1: लेकिन इसको आप परमानेंट विकल्प तो नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि
0: हाँ
1: ये आपकी आंखों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और आजकल तो ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं शादी अटेंड करने जा रहे हैं या फिर हमारी खुद की शादी है, तो हमें लगता है नहीं, चश्मा नहीं होना चाहिए इसका, हम बेटर ऑप्शन ढूंढते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस।
0: खुशबू, पता है कि ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है ना, उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं,
1: हाँ,
0: जिससे हमारे चेहरे का एकदम लुक जो एकदम चेंज हो जाता
1: चेंज
0: है,
1: हो
0: डिफरेंट
1: जाता
0: हो
1: है।
0: जाता है।
1: बिल्कुल
0: तो हम
1: बिल्कुल।
0: कई बार शौक के लिए या कई बार हम डिफरेंट लुक के लिए भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर लेते हैं, और इसको जब यूज करते हैं तो उसको सोल्यूशन में, प्रॉपर उसको सोल्यूशन में रखना चाहिए,
1: जी
0: उसको सोल्यूशन में चेंज करते रहना चाहिए।
1: जी
0: और हम वो सब बिना करे अगर हम उसको यूज कर लेते हैं तो हमारी आंखों को इरिटेशन होने लगती है।
1: यानी आपके कहने का मतलब है कि हाइजीन बहुत जरूरी है ना, अगर आप
0: हाँ
1: कांटेक्ट लेंस का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा कांटेक्ट लेंस यूज करने का ऑप्शन लोगों को इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि एक तो ये हल्के होते हैं, है ना, पहनने में बहुत आसान होते हैं, आप खुद से ही लगा सकते हैं। और इसके अलावा जैसा आपने बोला, लुक में भी स्टाइलिश लगते हैं ना। अब आजकल तो मैं देखती हूँ पूर्णिमा, काफी सारे लोगों को कि वो डेली की लाइफ में भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं कि नहीं, आज हमें यहाँ घूमने जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो चलिए कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं। आज सोशल मीडिया पर कोई फोटो अपलोड करनी है, उसके लिए कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब करता है हमारी आंखों को। और एक टाइम के बाद में ऐसा होता है ना कि कॉन्टैक्ट लेंस हमारी जो रियल आईज का जो रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, उसको डैमेज कर देता है।
0: हाँ, और इसको यूज करते वक्त हमें बहुत सारी सावधानी भी बरतनी चाहिए। कभी कभी लेंस जो है वो हमारी आंखों से निकलता नहीं है और ऐसा लगता है कि वो कहीं गायब हो गया है या हमारे अंदर कहीं चला गया
1: फंस
0: है,
1: गया
0: पर वो
1: है,
0: अंदर कहीं जाता नहीं है, वो हमारी जो पलके हैं उसके अंदर ऊपर जो है वहां पे चिपक जाता
1: चिपक
0: है,
1: जाता है।
0: क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, हमारी आंख की पुतलियों की तरह ये रहता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो गया कहाँ है। इसलिए हमें हमेशा उसको देखना चाहिए कि वो कहाँ है, और हमें घबराना नहीं चाहिए। कई बार होता है ना कि हम घबराहट से ना इधर हाथ डाल रहे हैं आंखों में, उधर
1: हाँ,
0: हाथ
1: और
0: डाल रहे
1: रब
0: हैं,
1: कर देते हैं हम
0: रब
1: आईज
0: कर
1: का ना,
0: देते हैं।
1: मसल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कांटेक्ट लेंस होता है ना, वो अंदर की आई को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है सखियों, अगर आप भी कांटेक्ट लेंस का यूज करते हैं, अच्छा है इसे यूज करना, लेकिन इसके साथ में जो है थोड़ी सी सावधानियां रखना जरूरी होता है कि अगर लेंस कहीं अटका हुआ है तो आप उसमें लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डालें ताकि वो आसानी से धीरे धीरे खिसक जाएगा और फिसल के नरम होकर वो आंख से अपने आप बाहर आ जाएगा, या फिर आप साफ उंगली से जो है वो धीरे धीरे खींचे लेंस को हल्के से, ताकि वो आंख के किनारे पर भी आ जाए तो आप उसे निकाल सकते
0: और
1: हैं।
0: कई बार ऐसा होता है ना कि पहले ही आंख से गिर जाता है और हमें लगता है कि वो हमें पता नहीं चलता, और हमें लगता है कि वो हमारे आंख के अंदर ही है, और हम उससे कई बार हमें उससे जलन होने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है, या फिर कई बार हमें चुभन भी महसूस हो सकती है, और वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे अंदर ही कहीं फंसा हुआ है। तो इसमें अगर ऐसा अगर है तो हमारी आंख को पूरी तरह से हमें सामान्य रखना है, और हमें ऐसा महसूस देख सोचना है कि अगर हमारे लेंसेज नहीं होते और हमें वही धुंधलापन फील हो रहा
1: जी
0: है, तो
1: हाँ।
0: हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारे आंखों में लेंसेज नहीं है, वो गिर गए हैं।
1: और अगर इतनी सारी कोशिशों के बाद में भी आप इसे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको और ज्यादा परेशान नहीं होना है, खुद के एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। बेटर ऑप्शन है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे अपना ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अगर लंबे समय तक लेंस आपकी आंखों में फंसा रह सकता है, तो इससे क्या होता है ना कि आंखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं।
0: और ये हमारी कॉर्निया को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाने से पहले जितना हो सके आंखों को रेस्ट दें, रगड़े नहीं, और डॉक्टर की मदद से लेंस बिना नुकसान के निकाला जा सकता है।

0: हम बात कर रहे थे हमारी स्किन की केयर की, तो स्किन
1: जी
0: के साथ साथ हमें हमारे जो और भी कई सारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और

0: सके हम कई बार ये सोचते कि हम फ्यूचर में क्या होगा, हमारे साथ फ्यूचर कैसा रहेगा, हम क्या कर पाएंगे, हम क्या नहीं कर पाएंगे, और इस सोच में हम कई बार आज जो हमारा प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं हम खराब कर रहते हैं। हम पूरे टाइम इसी चिंता में रहते हैं, यार फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और इस चक्कर
1: जी
0: में हम आज जो जी रहे हैं वो हमारा खराब हो जाता है।
1: हाँ सखियो, देखिए भविष्य की फिक्र तो जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप अपने आज को ही भूल जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि आप, हम तो यही कहेंगे कि अपने आज को जिए और भविष्य की चिंता को कहीं ना कहीं छोड़ दें। और अपने आज को अगर आप अच्छे से जिएंगे तो शायद आपका भविष्य भी सुधर जाएगा।
0: और भविष्य तभी सुधरेगा जब हम अपने आप को समय दें, अपने खुद की चिंता करें और अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करें। कल तो कल आएगा ना, कल की चिंता हम आज क्यों करें?
1: जी बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा आपने। तो ऐसे में कल की चिंता हम कल पर छोड़

0: सखियों देखी तो परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं।
1: चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सबको सब कुछ बता दो।
0: खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, कि जियो और जीने दो।

0: तो सखियों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और आज की नारी वाटिका का सफर जो आपने तय किया था वो हमारी टेक्निकल टीम हम आपसे रूबरू करवा देते हैं। एचपीटी पे थे विक्रम सिंह भाटी और चंद्रराम पटेल।
1: जी हाँ सखियों, कंट्रोल रूम से हमारे साथ ही सुनील जयपाल, और कंसोल से आप तक इतने प्यारे प्यारे गाने पहुंचाए बलवीर ने,
0: और प्रोग्राम प्रोड्यूसर है मनीष सोलंकी, और हम दो रेडियो सखी आपके साथ, मैं हूँ पूर्णिमा और मेरे साथ,
1: और मैं थी खुशबू। तो लेते हैं अब आपसे विदा, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे

0: ही प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बाताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की।

0: बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की धुन।

0: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

असद भोपाली का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम अपना बना के देखो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चार दीवारी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है सलील चौधरी ने।

0: एक रास फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हनीमून फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत आपने सुना। सम्राट चंद्रगुप्त से हसरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ गीत। लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। यह है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दीपा आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बिल्कुल अच्छे। और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां हमारे सभी श्रोता अपना और अपनी सेहत का और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि बदलता मौसम है इस वक्त कुछ और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है।
0: और झमाझम बारिश हो रही है तो बारिश का हम सभी लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं आई है वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं
1: और उनके लिए भी ये शुभकामनाएं कि जल्दी से उनके शहर में भी ये जो ठंडक हम जो एहसास कर रहे हैं उन्हें भी ये एहसास हो।
0: और ये ठंडक का एहसास है ना दीपा, ये तो इस मंच पर आते से ही हमें होने लगता है। भले ही कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बारिश हो, यहाँ आने के बाद में जो सुखद अनुभूति मिलती है ना उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: ये बात तो बिल्कुल 16 आने सही कही तुमने।
0: और जब सुखद अनुभूति कब मिलती है? जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं, कह रहे मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे दिख रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं, पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
1: बिल्कुल। और एक फिल्म से चल जाती है उस दिन को, हम फिर से लगता है जैसे
0: जी रहे हैं
1: और वो वक्त उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बातें भी याद आ जाती हैं और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खुश होते हैं और आनंद का जो आपस में
0: क्षण
1: होता है वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है सोनाली।
0: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम तकदीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
1: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी शामिल

0: शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस बातों पर घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श चलते रहते हैं, जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियां हैं उनके घरों में। तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी बता दें, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
1: देखिए जो बदलता जमाना है ना, पुराने जमाने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे। पर अब बदलते जमाने के नजरिए जो बच्चे हैं ना थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही जरूरी है, क्योंकि उन्हें एक साथ जिंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे, क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है। मुझे कुछ कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना,
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है। कुछ कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पर लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है।
0: जी, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा, और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा, और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए आज की रात सोना बहुत जरूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
1: और आप क्या करना चाहिए,
0: गीत सुनना चाहिए,
1: तो सुनते हैं गीत।
2: सुर्खियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: तो दीपा, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार हैं। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहां हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
0: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो
1: रुचि
0: जाती।
1: उत्पन्न होती है।
0: जी, और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था, और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती, और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए, 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की कांथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जाकर के वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
0: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन कांथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था, उसी शिल्प ने उन्हें उनके उनके आजीवन सफर की नींव रख दिया। ने कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया, उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से

0: जी
1: सम्मानित कर दिया गया
0: बिल्कुल।
1: उन्हें। जी
0: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
1: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी किया, ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से, इससे बने जो भी

0: सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से, इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी. उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं. लेकिन वो कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए. मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था.
1: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से, उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते. पर उनका ये कहना था कि उनके पति ने, तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दें और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दें, आत्मनिर्भर होने दें.
0: बिल्कुल. अपने लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं. उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है. ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम है बहुत उल्लेखनीय निकले. इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है.
1: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है. तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो खुशियां तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है.
0: बिल्कुल. और ये जो आर्ट है काथा कढ़ाई, ये भी संरक्षित है आज भी, और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये इस प्रकार की कढ़ाई.
1: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे. पहले अभी क्या करें,
0: गीत सुनेंगे.
1: तो एक गाना सुनते हैं.
0: चलिए.
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फर

0: फिर से तो फरमाना।
1: कुछ ऐसा ही होता है ना जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा। हम कई बार ऐसे हंसी मजाक में बोलते हैं वैसे ही हो जाए और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
2: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया, अब ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई, तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूं, है ना।
1: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही नहीं।
2: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
1: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
2: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो फोटोज, ये अनगिनत यादें होती है ना,
1: और सारी
2: कुछ तस्वीरें तो ऐसी होती है जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है। तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं
2: जी,
1: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है। और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो जाता है और फिर वो बातें पता नहीं कहाँ तक चली जाती।
2: और उस वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा
2: कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखे ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे। यानी कितनी सुंदर यादें, है ना।
1: और एक संदेश और कहता है सोनाली, कि एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी

0: ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी जो एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
1: एक साथी कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने बेटे के पुराने एल्बम निकालकर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहां जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहां तक कि स्कूल में भी वहां भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। सुंदर बात,
0: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्यौहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
1: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
0: जी कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे?
1: अब गाना सुनेंगे।
0: चलिए

0: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया बिरा मंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया है अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है,
1: एहसास तो वही करा रहा है।
0: और वो जो है ना सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवा चल पड़ता है, बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाते हैं, और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जब दुनिया में नहीं उनकी यादें संजोए रहते हैं, शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है. कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं. तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है. उस समय में पीछे जाने जैसा है जहां पुरानी यादें चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं. ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है. एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताजा हो जाती हैं. ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं. मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ. पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था. कितना मासूमियत भरा सवाल
1: बिल्कुल,
0: है.
1: बिल्कुल. और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं तो मन प्रसन्न होता है. कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर और एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़ पड़ती है. तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है. और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है क्योंकि इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है. इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है.
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे. और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी. पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे. वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले,
0: सहयोग मिले
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ बटाएं.
1: हाँ,
0: ये पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: नहीं
0: ऐसा ही काम करते थे.
1: लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है. और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर है, तो किस तरह से अपने सब चीजों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ

0: में, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं। तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं, पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी। उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी। उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है। लड़की के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
1: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
0: बिल्कुल। वहीं एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है। जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे, तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
0: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत जरूरी है। और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
1: और आप क्या करेंगे?
0: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
1: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहां पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से यानी जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
0: जी अच्छा एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहां वो ससुराल में गई है तो वहां ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है घर में काम भी कर रही है सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है पर ऐसा होता कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपने जिंदगी के उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है और

0: कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद, यानी 40-45 के बाद में, अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला होती है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
1: बिल्कुल। और आज के ज़माने में जहाँ इतनी तेज़ भागती दौड़ती ज़िंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना
0: बहुत
1: अत्यंत
0: जरूरी है।
1: आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियाँ, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की
0: ले
1: ले
0: सकती है,
1: सकती है,
0: अपनी
1: पा
0: इच्छा पूरी
1: सकती
0: कर
1: है, अपनी
0: सकती,
1: इच्छा पूरी कर सकती है, न सिर्फ अपनी, वो परिवार की भी इच्छा पूरी
0: हाँ
1: कर
0: पूरी
1: लेती
0: कर
1: है।
0: सकती है,
1: और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता, उस
0: पूरे
1: परिवार
0: परिवार
1: को
0: को।
1: होता है।
0: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने
1: बिल्कुल
0: भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे हम, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
1: बिल्कुल,
0: और अब गाना सुन ले, एक
1: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
0: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है.
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा.
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में है भाई.
0: और पर नींद ऐसी

0: है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती. बहुत बार ऐसा होता,
1: होता तो है,
0: है ना. पर नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है. कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है.
1: उसके
0: तो
1: बारे में
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया. इस तरह से होता है बहुत बार.
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है. और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी.
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है. कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है. और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है.
1: ऐसा अक्सर हो ही जाता है
0: ना,
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे ही, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो. वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं. इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है.
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है. ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है. वही बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए.
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है. तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती.
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए. और धर्म पत्नी तुरंत कहती है, अजी छोड़ी, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता. दोनों इस बात पर हंस लेते हैं. ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते हैं.
1: बिल्कुल. और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें. जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को. कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं. वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है. और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय. रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए.
0: एक साथ ही लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो. कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है. और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी, तब है ना एक नहा ले सोने से पहले.
1: बिल्कुल.
0: नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो, तो नींद जल्दी से आ जाती है.
1: और आपने जो बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए. वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
0: आराम
1: सपोर्ट दे और आराम दे.
0: और अब गाना सुन ले.
1: चलिए

0: हमारी एक सखी ये कहती हैं कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए, तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ, उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही है कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयाँ, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के नियमित श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन का मतलब?
1: तो मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती?
1: जी सर, जी सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरे खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर बैंक पार्टनरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी,
1: आपकी आवाज सुनता हूँ आपका, तो बहुत पुराना सोचा हूँ मैं, तो 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हाँ मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलू फरमाइश
0: जी जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने का शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल,
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां, और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी जी जी जी, तो महबूब भाई इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: आज ही, आज ही है, हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: ये तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो,
0: खानदान सुन लगे। अच्छा जी
1: जी सर, नूतन सुनिश्चित फरमा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलम मंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ। साहेब जी
0: बोलिए, बंधु साहब कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगहों पर है
0: जी।
1: हम गुलम मंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके ऐसे वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
0: क्या बात है,
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे हैं कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा।
1: अरे साहब,
0: जो
1: वो
0: मौसम
1: तो
0: की
1: गाना
0: बात करें,
1: ऐसा है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ 1943 में एक फिल्म बनी थी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदन लाल सहगल साहब और
0: हाँ
1: खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी।
0: सहगल साहब,
1: अब तो बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म इतनी चली थी है और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और केएल सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर।
0: जी
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री
0: जरूर
1: इनके रोल
0: जरूर।
1: है। घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर,
0: मोरे
1: मोरे
0: सज्जन
1: सजन
0: आ
1: आ
0: जा।
1: जाना। क्या गीत है, जितने बार सुनो ऐसा लगता है आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नयन में दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहेब जी, और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और
0: जी
1: गीतकार दीनानाथ मधोक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत जी।
0: नमस्कार
1: जी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी जी जी जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी जी जी, और बताइए, विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विविध भारती से जुड़ाव है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21 साल हो गए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जब से होश संभाला है सर, विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा।
0: ओके।
1: उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी सैटेलाइट के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी जी, और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए आपने कॉल किया है। बताइए क्या सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मनचाहे गीत।
0: तो आपने खत भेजे कि नहीं मनचाहे गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए, आज के लिए कौन सा गीत आपने सेलेक्ट किया?
1: फिल्म का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए मेहताब उधर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरी बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितने भी मेरी बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम मेरी बात के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते अच्छा। हैं और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के।
0: हाँ।
1: और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा अच्छा, साल में एक बार आते हैं पेड़ों
1: तो
0: फूल?
1: साल में एक बार आते हैं और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की सेब जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुँच जाते हैं। कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपके बाग के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा अच्छा, तो हम जो अब सेब खा रहे हैं उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पहचान कैसे होती है, क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल की जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं।
0: जल्दी आ जाते हैं।
1: मैं कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक केंद्र भी है और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
0: अच्छा जी, बताइए आज के प्रोग्राम के लिए आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आई ना बता कैसे ये गाना सुनना है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: जी सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से।
0: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
1: सर सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: और सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
1: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउसवाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
0: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
1: जी सर, विविध भारती सुबह से चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
0: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
1: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, पत्रकार सब सुनती हूँ मैं, हालू फरमाइश भी सुनती हूँ।
0: जी चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से, इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: सर मुझे आज की तू का गाना सुनना है, मैं चाहूँ ना।
0: ये रहा आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
0: ओहो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन? आपका नाम बताइए।
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरदीप बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना, कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देता चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्कार, मैं पप्पू
0: नमस्कार
1: ठाकुर
0: जी,
1: कटिहार थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
0: बोलिए पप्पू जी कैसे हैं।
1: है जी, अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप लोग फोन करते हैं, तो आपके इलाके में मौसम कैसा है, बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद से आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गांव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी, पप्पू जी वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, एक साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहाँ
0: जी
1: पे मैं काम किया है,
0: जी जी
1: मैकेनिक
0: जी
1: का काम में करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले साल भर से आप घर में हैं, तो यहीं अपना
1: जी
0: कुछ नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी, हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक सपना था सर कि मैं कभी विविध भारती में मेरा कॉल लग जाए, हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका।
1: मैं बहुत खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं विविध भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने,
1: जी, न्यूज एनआईआर वाला।
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, और ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, वो गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
0: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं। तो सुनिए अपनी पसंद का गाना पत्थर के सनम फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं, मैं फहीम बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी
1: इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुने।
0: जी जी बाकी पूरे देश में तो गर्मी का मौसम खत्म होके अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत लेट हालांकि आई है, मगर श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है, यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो ना फुल मंथ जुलाई तक रहता है। 40 दिनों को हम कश्मीरी में बारात बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: बारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: गर्मियों के 40 दिन बहरात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान, ये 40 दिन जो है हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं।

0: गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो हम पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं बारात में चल रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेंगी।
1: अच्छा, तो ये बारात में क्या कुछ खास कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होते हैं?
0: बारात के समय में जी जी त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बारात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को सब छुट्टियाँ मिलती है, तो हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बारात के समय हमें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंड ही रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है। तो अभी हम गर्मियों को इंजॉय कर रहे हैं बारात के समय फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ।
1: आपकी नजर से वो गर्मियां हैं, मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
0: हाँ जी हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है, और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है। ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है, जिस दिन 30 होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
1: जी, मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने वाले कहाँ जाते हैं घूमने? आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
0: हमारे यहाँ पे स्पेशली कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं, सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं, गुलमर्ग भी जाते हैं।
1: नहीं, वो तो है आपके यहाँ, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
0: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बेंगलोर जाना, और दूसरा जो है हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं, और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग, और कोलकाता भी जाते हैं। देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है।
1: जी जी जी,
0: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं। गोवा भी जाते हैं यहाँ से काम के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
1: वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा जान करके। और आपने टेस्ट सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना? तो अगर फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
0: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं, लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं।
1: जी जी,
0: तो मुझे एक वीर जारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ, लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज में, ये बहुत ही प्यारा नगमा है। तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे, और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो अभी घूमने निकले हैं, वो कश्मीर के नजारे देखकर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं कहाँ।
1: क्या बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए, और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर जारा फिल्म से यही गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया है, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना?
1: बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी आपका कामकाज कैसे चल रहा है?
1: जी जी बिल्कुल सर कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लगाते लग गया फोन। और कहें कि सर आकाशवाणी मुंबई सर इतना अपार प्रेम हो चुका है सर, इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते जी। कहो सर
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी जी तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना? पुराने हैं
1: सर। और सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा
0: जी,
1: और शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत। इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको, और जान कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस गीत की फरमाइश लिख रखी है अपने डायरी में?
1: बिल्कुल सर डायरी में लिख रखी है, मूवी का नाम है विजयपथ और गाने की बोल रहेंगे, आइए आपका इंतजार है।
0: तो आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं।

0: था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा गर्वबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 0222867 0288 और दूसरा नंबर है 0224002462। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 0222867 0288 और दूसरा नंबर है 0224002462। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रीकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: स्वागत है आज का इस प्रोग्राम में, जहां प्रोग्राम युवाणी अब एंजॉय करेंगे। अब 5 से 6 बजे तक बहुत सारी बातें होने वाली है। गुरुवार का दिन है, मज़ा आने वाला है। और प्लेलिस्ट भी क्या कमाल की है। इस आवाज़ का नाम राहुल है और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ हैं।
1: मैं हूँ दोस्तों अदिति मौर्या। आज के शो में ना काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है राहुल, क्योंकि आज जो है कहानी स्पेशल प्रोग्राम
0: बिल्कुल
1: रहेगा,
0: कहानी
1: तो
0: स्पेशल रहेगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए हम अच्छी सी कहानी भी लाने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। जैसे वर्ड ऑफ द डे रहेगा हमारे सेगमेंट में, और हम एक खास शख्सियत से भी मिलाएंगे जिनकी इस कहानी जो है इंस्पायरिंग है काफी।
0: जी बिल्कुल, उस शख्सियत से भी जुड़ने का मौका मिलेगा। क्या कुछ बातें रही, क्या कुछ स्पेशल उनकी लाइफ का जो हिस्सा था, किस तरह से गुजरा। और उसके साथ ही साथ प्रोग्राम युवाणी है तो स्पोर्ट्स अपडेट भी बिल्कुल आपके सामने जाहिर होगी। फिलहाल के लिए आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे आज की शाम का ये पहला म्यूजिकल ट्रैक।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक आपने एंजॉय किया। प्रोग्राम युवाणी इस वक्त चल रहा है, वेलकम बैक आपका एक बार फिर से। और प्रोग्राम युवाणी चल रहा है तो स्पोर्ट्स की बातें कैसे पीछे रह सकती है
1: बिल्कुल।
0: अदिति।
1: और
0: बिल्कुल
1: स्पोर्ट्स के लिए तो सबसे पहले क्रिकेट आता है अपने दिमाग में, तो ईशान किशन बने जो आईसीसी T20
0: T20।
1: रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन
0: बिल्कुल
1: चुके
0: सही
1: हैं
0: कहा
1: ईशान
0: आपने, ईशान
1: किशन।
0: किशन जो है वो आईसीसी T20 क्रिकेट के जो है वो रैंकिंग नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं और पहली बार बने हैं ये। और इस कड़ी में इन्होंने अपने भारतीय साथी जो कि अभिषेक शर्मा जिनका नाम है ओपनिंग बल्लेबाज, उनको इन्होंने पीछे छोड़ा है। और T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए उनको ये बड़ा फायदा मिला है। और दोनों तो भारतीय बल्लेबाजों के बीच फिलहाल इनका जो पॉइंट का अंतर है वो ज़्यादा नहीं है, 7 रेटिंग पॉइंट का ही इनका जो है वो डिफरेंस रहा है। और ये फिलहाल आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज ईशान किशन बन चुके हैं। और एक बार इनकी लाइफ में बहुत सारे होता ना कि सबके लाइफ में फॉल डाउन आते हैं, तो इनकी लाइफ में भी आया था, लेकिन उसके बाद एक बार को तो भारत की जर्सी भी चली गई थी भैया, टीम स्क्वाड में इनका नाम कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद इनका जो कमबैक हुआ वो हम सभी को याद है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन हर बार हर मैच में बॉलिंग माफ कीजिएगा बैटिंग के थ्रू, फील्डिंग के थ्रू, स्पेशली कीपिंग के थ्रू जो हमें देखने को मिलता है वो बड़ा ही लाजवाब देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल। और राहुल, अगर क्रिकेट के साथ हम फुटबॉल को इंक्लूड नहीं करें तो ये गलत हो जाएगा।
0: बिल्कुल फीफा वर्ल्ड
1: तो
0: कप भी चल रहा है ना।
1: हाँ बिल्कुल। और तो फीफा विश्व कप में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया है और राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है
0: बिल्कुल
1: उन्होंने।
0: सही कहा आपने, फीफा के राउंड ऑफ 32 मैच में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जो है वो एंट्री मार ली। और मैच में सेनेगल ने जो है वो 85 यानी 85 मिनट तक 2-0 की बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन बेल्जियम ने आखिरी कुछ मिनटों में वापसी करते हुए जो है वो जीत दर्ज कर ली। और बेल्जियम की तरफ से पूरी टीलेमांस ने जो है वो 2 और रेमेलू लुकाकू ने 1 गोल किया, जिसकी बदौलत जो है वो बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और राउंड 16 में प्रवेश यानी एंट्री मार ली। फिलहाल के लिए प्रोग्राम युवाणी चल रहा है, आप और हम मिलकर बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने और अगला गाना आपकी नजर हीरा साहब।

0: श्रोताओं, अब आप सुनेंगे रीट 2025 भर्ती परीक्षा में पास आउट अभ्यर्थी धर्मेंद्र जानी से राहुल की फोन आउट बातचीत, जिनकी कहानी वाकई संघर्षशील रही है। आइए सुनते हैं।
1: पढ़ाई के लिए संपूर्ण साधन नहीं था, लेकिन खुद पर भरोसा पूरा है। जब अपने चचेरे भाई का रिजल्ट आया, तब ही ठान लिया था कि मुझे भी कुछ करना है। लेकिन संसाधन की कमी के चलते घर के नज़दीक खुद ने ही एक झोंपड़ी नुमा लाइब्रेरी बना ली, और वहीं से शुरू हुई धर्मेंद्र की असली कहानी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र आपका। मैं चाहूँगा सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए।
2: सर, मेरा नाम धर्मेंद्र है, मेरे पिताजी का नाम वाला राम है, गांव कालेवा, जिला बालोतरा से बिलोंग करता हूँ। जी सर, मेरी स्कूली शिक्षा की बात करें तो मैंने सरकारी स्कूल गाँव में की थी, कालेवा के अंदर 12वीं तक, और उसके बाद मैंने 2019 में 12वीं कर दी थी। फिर मैंने पढ़ाई एक दिन छोड़ दी थी, और 2019 से 20 तक सफर एक बार मैंने छोटा मोटा काम करने किया था, पर 2020 के बाद कोरोना आ गया, तो उसी टाइम मैं रिफाइनरी के अंदर लग गया था। 13-14 महीने मैंने रिफाइनरी के अंदर काम किया, उसके बाद अहमदाबाद चला गया था कपड़े की फैक्ट्री के अंदर, 6 महीने वहां पर काम किया था। उस टाइम रीट 2021 का रिजल्ट आया था, तो मेरे ताऊ जी के लड़के का सिलेक्शन हो गया था, तो उसी दिन मैंने मन में ठान लिया, उनको तो नहीं बताया, फिर मन में ठान लिया कि मेरे को भी अभी टीचर बनना है। अहमदाबाद के अंदर काम छोड़ के घर आ गया था, 2022 की बात है, वहां से मैंने 2022 से लेकर 17 जनवरी 2020 तक मेरा पूरा लगातार पढ़ाई जारी रखी थी और घर पर ही तैयारी की थी।
1: धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वो वजह थी, पढ़ाई आपको छोड़नी पड़ी, काम आपको ज्वाइन करना पड़ा बाहर जाकर, वो भी इसके पीछे क्या मुख्य वजह रही होगी?
2: सर, ये तो घर की समस्या थी कि मैं पहले पढ़ नहीं पाया था,
1: और उसके बाद बाहर गांव जाकर आपने जो है वो काम करना शुरू किया, घर पे पैसे भेजना शुरू किए ताकि घर का जीवन यापन वो है आसानी से चल सके। मैं जानना चाहूँगा उसके बाद का सफर, जब आपने वापस पढ़ाई ज्वाइन करी, क्या होता है ना कि एक चीज़ जब हमारे साथ छूट जाती है तो वापस उसको रीज्वाइन करना मतलब शुरुआत करने के बराबर सा होता है, बहुत मुश्किल होता है वो। तो वो मोमेंट आपने, उस मोमेंट को किस तरह से पार किया, किस तरह से आपकी जो पढ़ाई है वो वापस से शुरू हुई?
2: हाँ सर, जब मैंने वापस की थी तो पढ़ाई एकदम जीरो थी, क्योंकि 3 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़ने के बाद। फिर भी मैंने मन में पूरा विश्वास था कि मैं कर दूंगा, पूरे विश्वास के साथ उतरा था, और मैंने रात दिन मतलब लगभग दिन रात यही करा कि पढ़ना है, पढ़ जारी रखी, कभी भी पढ़े एक दिन भी मैंने इसमें कभी पढ़े के लिए दूरी नहीं बनी, हमेशा कंटिन्यू जारी रखने के बजाय मेरा हो गया सर, 7 महीनों के अंदर लगने लगा कि मैं कर दूंगा।
1: सबकी लाइफ की अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अपनी अपनी मुश्किलें होती है, आपकी मुख्य मुश्किलें जानना चाहूँगा कि क्या वो चीज़ें थी, क्या वो चैलेंजेस थे जो आपको पार पाना पड़ा उन चीज़ों से, वो चीज़ें आपको करनी ही पड़ी, उसके बिना तो सिलेक्शन होना मुश्किल था।
2: सिलेक्शन के लिए पहले तो मैंने वापस शुरू की थी, घर वालों ने कहा था पूरा सपोर्ट है, तुम तेरे पढ़ना चाहते पढ़ ले, तो मेरे ये था कि नौकरी बिना अब कुछ है नहीं, तो पूरा दिन रात माँ बाप के भी पूरे मोटिवेशन मिलता रहता था कि तू पढ़, माँ बाप घर की परिस्थितियाँ वो सब मेरे को पढ़ने के लिए मजबूर कर देती थी।
1: आपने जब तैयारी करी तो क्या कीवर्ड्स लेकर आप चलते थे अपने दिमाग में कि यार इस तरह से मुझे तैयारी करनी है, ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी और इस परीक्षा की मैं इस तरह से तैयारी करूंगा, क्या स्ट्रेटजी रही थी, क्या दिमाग में चल रहा था उस वक्त?
2: शुरुआत में पीएचटीसी की तैयारी की तो मेरे को इतना कोई गाइडेंस करने वाला कोई था नहीं कि ये बुक लिया वो पढ़ ले, पर एक

छान लिया था कि सिलेबस लिया था उस अकॉर्डिंग मैंने मेरे मन से किताबें लाके पढ़ लिया था। फिर दिमाग बता दिया कि 2-3 घंटा इनको पढ़ना, 2-3 घंटा इसको पढ़ना, वो मेरे एकदम सेटल बना दिया दिमाग के अंदर। उनको मैं 7 महीना फॉलो किया तो BSTC का सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद ही मैंने लगातार रीट की तैयारी जारी रखी थी। रीट की तैयारी करने आया था, मतलब BSTC से शेड्यूल अलग था, बुकें अलग थी। फिर उनको मैंने एनसीआर

0: बुकें अलग थी, फिर उनको मैंने एनसीईआरटी आरबीसी ऐसे पुस्तकों को फॉलो किया था जो मेरे फायदेमंद थी। मेरे को गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था कि ये बुक पढ़ ले इससे फायदा होगा, तो खुद ने ये टारगेट बना के।
1: कई बार क्या होता है ना कि धर्मेंद्र जी, हमारे पास संसाधन तो खूब सारे होते हैं लेकिन मन में वो दृढ़ संकल्प नहीं होता, इस चक्कर में क्या है वो चीज़ें हमें से पीछे छूटती चली जाती है। आपने इतने कम संसाधन में भी तैयारी पूरी करी और पूरी कर कर एक एग्जाम्पल सेट करके ये बताया कि भैया कम संसाधन में, कम सुविधाओं में रहकर भी आप जो है वो किसी नौकरी की भर्ती की तैयारी कर सकते हैं और उसमें पास हो सकते हैं। तो कम संसाधन में तैयारी करना भी मुमकिन है, इसे आपने जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। उस फैक्टर को लेकर चलते हुए अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए।
0: सर बात आती है कि कम संसाधन, जैसे मेरे कोई कोचिंग नहीं थी, ना कोई ऐसे ऐसी वाले रूम, लाइब्रेरी ऐसे कुछ नहीं थे। घर के पास 100-200 मीटर एक झोंपड़ी बनाई थी वहां पर। मेन सर बात यह कि मेरे मटेरियल कम सीमित थे, मैंने ज्यादा मटेरियल नहीं रखा था। जिस एक सब्जेक्ट की एक ही बुक रखी थी और उनको बार बार रिविजन करता था, वो मेरे लिए फायदेमंद रही। क्योंकि हम जैसे बाहर जाते तो आसपास के दोस्त की बुक के देते देखते तो उनकी बुक अलग है, अपन की बुक अलग है, तो उनको देख लगता कि उनके उनमें मैटर बढ़िया होगा, वो हमारे पढ़ने में बाधा आती। लेकिन मैंने मेरे किसी के नोट्स या किसी की बुक किसी को पूछा है क्या पढ़ना, मैंने खुद ने कम मटेरियल लेकर वो भी पढ़ा, बार बार रिविजन किया था, उनसे मेरे फायदेमंद हुआ था। बाकी मैं घर पे पढ़ता था, जैसे कोई पैसों के ऊपर प्रेशर नहीं आता भाई कि आज पैसे मांगना घर वालों से, और बाकी खाने का पीने का कोई इतना जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि घर पे खाना बना हुआ आता था, एकदम सुकून की जिंदगी जी रहे थे। बस ये कि मेरे को कोई गाइडेंस वाला नहीं था, फिर भी सर हो गया एकदम, मैंने खुद ने कंटिन्यू रखी थी।
1: अलग से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी लेकिन घर वालों का जो पूरा पूरा सपोर्ट था आपके साथ, बहुत बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल आप जी जी
0: सर। पिताजी काम पे आते थे रिपेंद्र को, उनको देख के मोटिवेशन मिलता था कि आज वो 60 साल की उम्र में मेरे लिए वो कम आ रहे हैं, वो उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन होता ही नहीं सर।
1: बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बातचीत में आगे बढ़ेंगे। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सब के जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनके सबकी अपनी अपनी वीकनेसेस होती है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ होती है। आपकी फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे? आपको क्या लगता था कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरे अच्छे हैं, इन पर मेरी अच्छी पकड़ है और ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको मुझे और काम करने की ज़रूरत है?
0: राजस्थान जीके था सर सबसे बेस्ट, 50 सवाल आते राजस्थान जीके, उनके मेरे 48 क्वेश्चन राइट हो गए थे। बाकी जीट मेंस में भी मेरे राजस्थान जीके बहुत नजदीक था।
1: आपकी लाइफ के सबसे अहम हिस्से के बारे में जानना चाहूंगा कि यार ये जो मेरा पल था मेरे जीवन का, ये जो हिस्सा था बड़ा ही क्रूशल रहा, या फिर इस हिस्से ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जिसके बदौलत आज मैंने तैयारी करी और आज इस स्टेज पर मैं पहुंचा हूं।
0: सर ऐसा तो कोई था ही नहीं, बट वो 2021 वाला रिजल्ट आया ना, वो हिस्सा था कि मेरे को दोबारा पढ़ाई के अंदर लाने का मौका मिला। कि वो रिजल्ट में मेरे ताऊ जी के लड़के का सिलेक्शन हो गया ना, तो उनको मैंने ठान लिया कि मेरे हो जाएगा, वो हिस्सा मेरे को पढ़ाई में वापस दोबारा जोड़ दिया।
1: मतलब एक मोमेंट था जो उस मोमेंट ने आपको वापस उस और खींच दिया कि भैया इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, सिलेक्शन तो मेरा भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे बातचीत में। जानना चाहूँगा जैसे कि आपने बताया कोई कोचिंग आपने ज्वाइन नहीं करी लेकिन टेस्ट सीरीज जो है वो आपने लगातार दिया और उसकी बदौलत आपको अपने जो एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिला। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे?
0: टेस्ट सीरीज सर जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे पता चल रहा है कि हमारा पढ़ाई में स्तर कहाँ पर है, खुद का आंकलन हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचते हैं, बाकी किस सब्जेक्ट में अपन मजबूत हैं, किस सब्जेक्ट के अंदर अपन पढ़ाई में कमजोर है, तो उन सब्जेक्ट को मजबूत कर सके भाई। अपन एक सब्जेक्ट मेरा राजस्थान जीके था, मैंने टेस्ट नहीं दिया होता तो राजस्थान जीके पढ़ता, बाकी वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था। लेकिन मैं टेस्ट देने जाता तो पता चल जाता भाई ये सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे, तो उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना था। मैंने एक साल लगातार टेस्ट दिए थे, बाकी टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है भाई, अपन टाइम डेढ़ सौ क्वेश्चन को हम 2.5 घंटे के अंदर कर सकते हैं, नहीं कर सकते टाइम पता चल जाता है। बाकी एग्जाम हॉल के अंदर अपन को पेपर यहाँ अटेंड करें वैसे करना, नहीं तो आप ई वाला ऑप्शन होता सर, आप कोई विद्यार्थी टेस्ट देते नहीं सीधे एग्जाम हॉल के अंदर चले जाते हैं और ई वाला ऑप्शन भूल जाते हैं, नहीं तो आप रोजाना टेस्ट देते ना संडे तो पता चल जाता है कि ई वाला ऑप्शन भरना है, वो फायदेमंद होता सर। आगे वाले यहाँ पर गलतियाँ होती है वो आगे एग्जाम हॉल के अंदर नहीं होती।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस आप पहले से ही करके जाएंगे तो जब आप ओरिजिनल में, जब वास्तविक में आप उस परीक्षा में बैठेंगे तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा बेशक ज़रूर मिलेगा। आप बातचीत में आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया पहले प्राइवेट जॉब भी आपने करी है, घर से

0: रहकर काम भी किया है, तो उसने भी आपको बहुत कुछ सिखाया होगा कि यार प्राइवेट काम करना कितना मुश्किल है, सरकारी नौकरी की अहमियत कितनी ज्यादा है।
1: हाँ सर, यही मोमेंट रहता है कि प्राइवेट जॉब हम कितने दिन कर सकते हैं, लोगों की सुननी पड़ती है और वहाँ पर तो सर बारह बारह तेरह तेरह घंटा काम करना ही पड़ता है।
0: वहाँ अपने हिसाब से नहीं चल सकते आप, वहाँ जो आपका बॉस होता है उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, और ऐसा लगता है कि यार इतने पैसे मिल रहे हैं, मैं काम बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन मेरे पैसा जो मेरी तनख्वाह जो है वो इससे तो बहुत ज़्यादा कम हो, ऐसा फील भी हो जाता है कई बार। चलिए जी धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी बातें शेयर करी। एक लास्ट में, जितने भी लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली जो लोग रीट जैसी परीक्षा, शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास संसाधन की कमी है लेकिन वो मेहनती हैं, उनके लिए क्या कुछ खास बातें बताना चाहेंगे कि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो बेशक हो ही जाएगा।
1: उनके लिए यही संदेश है कि आप जैसे अब की बार असफलता मिली, उनको कहता हूँ कि आज से लग जाओ, रीट भर्ती 2027 या 28 में आ जाएगी। आप अपना मेटेरियल सीमित रखें, आरबीसी या एनसीईआरटी को फॉलो करें, बाकी ज्यादा बुक लेट नहीं लानी है, एक सब्जेक्ट की एक बुक लाओ, उनको फॉलो करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, बाकी मोबाइल से दूरी बनाओ, फालतू दोस्तों से दोस्तों को मतलब अपने साथ न रखे, एकांत में रहकर पढ़ाई करो, फायदे रहेगा।
0: क्या बात है धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सही और सटीक जानकारी हमारे श्रोताओं को प्रदान करी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: दोस्तों, अभी आपने सुनी रीट 2025 भर्ती परीक्षा में पास आउट अभ्यर्थी धर्मेंद्र जानी से राहुल की फोन आउट बातचीत, जिसकी प्रस्तुति थी राजेश लामरोड द्वारा।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: भी फील करवा देंगे और सपने भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन वो एक दिन आता कब है? आज की कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जो हर दिन कल पर भरोसा करता था और एक रात उसका कल उससे मिलने आ गया। कहानी का नाम है कल का आरव।
8: आरव जोधपुर की एक पुरानी कॉलोनी में रहता था। इंजीनियरिंग कंप्लीट हुए 2 साल हो गए थे। UPSC की बुक्स उसके रूम में जरूर रखी थी, लेकिन उन पर जमी धूल साफ करने का भी वक्त उसके पास नहीं था। सुबह अलार्म 6 बजे का लगता और आंखें खुलती भाई साहब की 10 बजे। दिन भर रील्स, वीडियोस, बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियोस भी देखा करता था और रात का वो गिल्ट। ये जिंदगी उसकी, उसको रूटीन बन चुका था कि भैया उसे रील्स देखनी है, उसे वीडियोस देखनी है, दैट्स इट। हर बार उसका एक ही डायलॉग होता था कि कल से पक्का शुरू करूंगा।
7: उसकी दादी माँ अक्सर मुस्कुरा कर कहती थी, बेटे कल कभी आता नहीं है, बस आज ही कल बन जाता है। लेकिन आरव हमेशा हंसकर टाल देता। वो कहता, दादी आप नहीं समझोगी, कंपटीशन बहुत टफ है। शायद वो कंपटीशन से काम और अपनी आदतों से ज्यादा हार रहा था।
8: एक दिन उसकी बचपन की दोस्त मीरा उससे मिलने आई। मीरा ने एक NGO शुरू किया था जहां वो जरूरतमंद बच्चों को डिजिटल स्किल्स और इंग्लिश सिखाती थी। उसने आरव से कहा, वीकेंड पर चल ना, बच्चों को थोड़ा कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़ा देना। आरव ने मोबाइल से नज़रें उठाए बिना ही जवाब दे दिया, अरे यार अपने पास टाइम नहीं है, अपनी प्रिपरेशन भी तो करनी है मुझे। मीरा हल्की सी मुस्कराई और बोली, प्रिपरेशन? ये कैसी प्रिपरेशन? ये बात आरव को अंदर तक चुभ गई, क्योंकि सच अक्सर थोड़ा दर्द तो देता ही है ना।
7: उसी रात दादी माँ ने आरव को अपने पास बिठाया और अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जब मैं जवान थी ना, तब सोचती थी कि सिलाई सीखूंगी, लेकिन हर बाल कर पर छोड़ दिया। और फिर एक दिन उम्र निकल गई। इंसान की सबसे बड़ी गलती गलत फैसला लेना नहीं, बल्कि कोई फैसला ही ना लेना है। लेकिन आरव के कानों में ईयरफोन्स थे और कानों में इंस्टाग्राम्स की रील्स। उसने आधी बात सुनी और आधी हवा में उड़ा दी।
8: अगली सुबह आरव कोचिंग के लिए निकला। रास्ते में एक पुराना रेलवे स्टेशन पड़ा और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो प्लेटफॉर्म के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। वहीं एक बुजुर्ग आदमी बेंच पर बैठे थे, सफ़ेद कुर्ता, हाथ में एक पुरानी डायरी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उन्होंने आरव से पूछा, बेटे कहाँ जा रहे हो? आरव ने कहा, अपना फ्यूचर बनाने। बुजुर्ग हंस पड़े और बोले, अच्छा कब से बना रहे हो? आरव ने मुस्करा कर कहा, बस 2 साल से।
7: बुजुर्ग ने डायरी बंद कर दी और धीरे से कहा, क्या तुम अपना फ्यूचर देखना चाहोगे? आरव ने मजाक में कहा, लगता है आप मोटिवेशनल स्पीकर हो। बुजुर्ग बोले, नहीं मैं बस एक मुसाफिर हूँ जो लोगों को उनका कल दिखा देता है। इतना कहकर उन्होंने अपनी डायरी आरव के हाथ में दे दी।
8: डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, आरव शर्मा, उम्र 35 साल। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अगला पन्ना खोला और जो लिखा था उससे उसकी सांसें मानो रुक सी गई।
7: दोस्तों आखिर डायरी में ऐसा क्या था जिसने आरव की पूरी दुनिया हिला दी? क्या वाकई वो अपना फ्यूचर देख रहा था या फिर ये सिर्फ एक अजीब सा इत्तफाक था? इसका जवाब मिलेगा एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, आप सुन रहे हैं युववाणी।

0: वेलकम बैक जो आपका एक बार फिर से प्रोग्राम युवाणी को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इन आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं
1: दोस्तों, मैं हूं अदिति।
0: प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और युवाणी में आप सुन रहे हैं कहानी कल का आरव। और आरव के हाथ लग चुकी थी एक ऐसी डायरी जिसमें शायद उसका आने वाला कल लिखा हुआ था।
1: डायरी के पहले शब्द थे, उम्र 35 साल, सपने अधूरे, बहाने हजार। आरव का गला सूख गया। उसने आगे पढ़ा, मैं आरव हूँ और अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम वही गलतियां कर रहे हो जो मैंने की थी।
0: डायरी में लिखा था, मैं हर काम कल पर छोड़ता रहा। पेरेंट्स बूढ़े हो गए और दोस्त अपनी मंजिल तक पहुंच गए और मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखते देखते खुद एक मोटिवेशन की ज़रूरत बन गया। ये पढ़ते ही आरव की आंखें बाहर आई और उसे एहसास हुआ कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता।
1: और फिर डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, एक दिन मुझे समझ आया कि सपने पूरे ना होने का दुख उतना बड़ा नहीं होता जितना उन्हें शुरू ही ना करने का पछतावा होता है। उस पर आरव को महसूस हुआ कि शायद जिंदगी उसे एक आखिरी मौका दे रही है।
0: उसने डायरी बंद की और तुरंत उस बुजुर्ग को ढूंढने लगा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। सिर्फ एक खाली बेंच, हल्की बारिश और हवा में गूंजती हुई एक आवाज़। कल का बदलना है, कल को बदलना है तो आज से शुरू करो।
1: उस दिन आरव सीधा मीरा के एनजीओ पहुंच गया। पहली बार उसने किसी और के सपनों में अपना थोड़ा सा वक्त लगाया। बच्चों को पढ़ाते हुए उससे महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं बल्कि हर रोज एक छोटा कदम बढ़ाने का नाम है।
0: दोस्तों, हम सबके अंदर एक आरव कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। हम भी कई बार ये सोचते हैं कि कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, कल से फिटनेस, कल से नए गोल्स, लेकिन सच तो यही है कि कल कभी आता ही नहीं है। आज ही वो दिन है जहाँ से हर नई कहानी शुरू होती है।
1: तो आज का सवाल आप सबके लिए दोस्तों, ऐसा कौन सा काम है जो आप काफी टाइम से टाल रहे हैं? शायद उसे शुरू करने का सही वक्त अभी ही है, इसी पल है, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो आज पर भरोसा करते हैं, सिर्फ कल पर नहीं।
0: जय, बिल्कुल सही कहा आपने, जो आज पर भरोसा करते हैं कल पर नहीं। अगर आज आपने कोई चीज़ ठानी है, करना है, तो उसे आज से ही शुरू कर दीजिए। किसी भी चीज़ की अगर तैयारी आज से आपको शुरू करनी है तो हाँ, बिल्कुल आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल का इंतज़ार आपको उस डूबते हुए गर्त में लेकर जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। फिलहाल के लिए प्रोग्राम युवाणी चल रहा है, आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे। और ये थी आज की गुरु और स्पेशल की कहानी।

0: वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपका प्रोग्राम युवाणी को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज़ के साथ। राहुल इस आवाज़ का नाम है, और इस राहुल से ना जल्दबाजी में जब भी कोई काम करता है तो इससे बहुत सारी गलतियां बहुत आसानी से हो जाती है। कोई भी काम, अगर मैं किसी काम को बहुत जल्दी में कर रहा हूँ, निकलता निकलता कर रहा हूँ, तो मुझे उस काम में कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है और पता भी नहीं चलता है। और ऐसे लोगों के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए एक स्पेशल वर्ड बना हुआ है, उसके बारे में बताओ भाई, क्या है वो वर्ड?
1: राहुल, ऐसी जो तुम्हारी जो हरकतें हैं इसको हम बोलेंगे स्लैप डैश तरीका। तो ये जो है इसका मतलब होता है कि कोई भी काम जल्दी जल्दी बिना ध्यान या प्रॉपर प्लानिंग के कर देना, यानी केयरलेस मैनर में करना। जैसे कि एग्जांपल हम देखें, जैसे लास्ट मोमेंट पर हम असाइनमेंट सबमिट कर रहे होते हैं तो हम एक फॉर्मेलिटी के लिए जल्दी जल्दी से कुछ भी लिख दिया और बस दे दिया, तो वो चीज़ स्लैप डैश मैनर है और उसमें काफ़ी गलतियाँ होने के चांसेस भी होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट थोड़ा स्लैप डैश तरीके से बना दिया है, इसलिए उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं। तो आप इसको डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्लैप डैश अप्रोच से काम हो तो जाता है, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है।
0: ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है जल्दबाजी में। मैं कई बार बाइक पर निकलता हूँ तो हेलमेट लेना भूल जाता हूँ साथ में, और ऐसे में ट्रैफिक वाले भैया रोक लेते हैं और बोलते हैं आ जाओ भैया आ जाओ। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं गाड़ी में ट्रेवल कर रहा होता हूँ तो सीट बेल्ट लगाना भूल जाता हूँ जल्दबाजी में, और ऐसे में घर वाले अगर पास होते वो देख लेते तो वो टोक देते। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में किया हुआ काम में आपकी गलतियां जो है वो उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
1: ऑफिस में भी अगर कुछ गलती से हम इधर उधर कर देते काम, तो काफी उसका जो है रिजल्ट रिपरकशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो
0: और
1: ऐसा
0: इस
1: काम नहीं करना
0: सिचुएशन के लिए
1: चाहिए।
0: एक स्पेशल वर्ड बना हुआ, उसे क्या कहते हैं?
1: स्लैप।

0: डैश, इसकी स्पेलिंग है SLAPDASH।
1: तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके आसपास के लोगों के साथ ऐसी कोई चीज होती है तो उसके लिए भी आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने। मजेदार से गानों में अगला गाना पेश है साहब।

0: मोहन भाई काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

0: क्या बात है, बेहतरीन से मजेकल ट्रैक आपने एंजॉय किया। वेलकम बैक कीजिए एक बार आपका फिर से प्रोग्राम यूवानियों को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप। देखो भैया, गाड़ी में बैठे हो तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, और अगर आप बाइक पर जब कभी भी सवार हों तो हेलमेट का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। प्रोग्राम यूवानी चल रहा है तो भैया, सरकारी नौकरी की जानकारी, भर्तियों की जानकारी कैसे पीछे रह सकती है ना? भर्ती आ चुकी है किसकी?
1: RSSB की यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की, इसमें ग्रेजुएट लेवल CET परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। इस एग्जाम के जरिए कई ग्रेजुएट लेवल सरकारी भर्तियों में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसकी एप्लीकेशन जो है उसकी स्टार्ट डेट होगी 4 जुलाई की, और लास्ट डेट जो होगी एप्लीकेशन की वो है 2 अगस्त 2026।
0: जी बिल्कुल। और इस भर्ती में आप अप्लाई करते हैं तो किन किन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे? अगर इस भर्ती में पास हो जाते हैं तो वो पोस्ट है प्लाटून कमांडर की, पटवारी की, असिस्टेंट अकाउंटेंट की, तहसील राजस्व अकाउंटेंट की, सुपरवाइजर वुमन एम्पावरमेंट की, उसके बाद डेप्यूटी जेलर पर आप परीक्षा दे सकते हैं इस एग्ज़ाम की, साथ ही साथ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड की दे सकते हैं, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो की परीक्षा आप दे पाएंगे, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट मेल और फीमेल ग्रेड सेकंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ये परीक्षा आप दे पाएंगे। अगर इस भर्ती के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो इनके एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है SSOID.RajasthanServicesRules.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है वो इस भर्ती के लिए फॉर्म अपना अप्लाई कर पाएंगे।

0: वेलकम बैक जी, आपका एक बार फिर से प्रोग्राम युवाणी को एंजॉय कर रहे हैं आप। आज की शाम गुरुवार का दिन है और शाम अब धीरे धीरे ढलने को है। बहुत सारी बातें हम आपसे कर चुके हैं। आज मेरे साथ है,
1: मैं हूँ अदिति।
0: बहुत सारी बातें हो रखी है और एक खास खबर आपको बताई देते हैं, जो कि एक निजी एयरलाइंस है, उन्होंने एक अच्छा ऑप्शन निकाला है। जो लोग फ्लाइट में जो सफर करते हैं उनके लिए बड़ी काम की खबर होने वाली है। उन्हें लगता है कि यार ये फ्लाइट का जो फेयर है, जो किराया है, बहुत ज्यादा है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक निजी एयरलाइंस है, उन्होंने ऐसा काम किया है कि अब उन्हें एक लाइट फेयर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें उनको हवाई सफर करने में थोड़ी और उस किराए में जो है वो सहूलियत मिलेगी। और ये नए विकल्प के तहत जो है

वो आप सस्ते टिकट जो आम तौर पर टिकट मिलते हैं, एक नया ऑप्शन जिसमें आपको देखने को मिलेगा लाइट फेयर, जिसे आप सस्ते टिकट खरीद पाएंगे, पर उसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? विमान में यात्री केवल 7 किलोग्राम का जो है वो कैबिन लगेज ले जा सकेंगे, और उसमें सीट जो है वो भी एयरलाइंस जो है वो खुद तय करेगा। 15 जुलाई से यात्री करने वालों को ये सुविधा मिलेगी, और इसकी बुकिंग जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो रही है। तो भैया हो गई है वो बुकिंग, तो शुरू हो चुकी है। अगर आप भी इस सफ़र का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लाइट फेयर नाम करके का आपको ऑप्शन दिखेगा, उससे आप अगर टिकट बुकिंग करेंगे तो आपको थोड़ी सी पैसों में, उस किराए में राहत ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन कंडीशंस आपके सामने हैं, 7 किलोग्राम का लगेज आप उतना ही ले जा पाएंगे, और सीट जो है वो एयरलाइंस जो आपकी वो खुद चूज़ करेगा। तो देख लीजिए, सफ़र अगर करना है तो थोड़ा सा लाइट फेयर देकर कर सकते हैं। फिलहाल प्रोग्राम यूं ही चल रहा है, गाने मजेदार से ऑन है।

0: तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये खूबसूरत शाम यहीं खत्म करते हैं। आज मैं थी आपके साथ अदिति मौर्य, और मेरे साथ थे
1: इस आवाज का नाम राहुल। प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की, कंसोल पे हमारे साथ कल्याण। हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और एंजॉय कीजिए गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार का रिले कुछ ही पलों में किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने ये स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में

0: आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

हेलो हाय गुड इवनिंग, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट राधिका राठी और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। तो करते हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

दोस्तों, दिन भर के भाग दौड़ के बाद अब वक्त है कुछ पल अपने लिए निकालने का। सूरज ढल चुका है और आसमान पर शाम के रंग बिखर रहे हैं। सुबह हमें उम्मीद देती है और रात आराम, लेकिन शाम शाम हमें खुद से मिलवाती है। यही वो समय है जब दिन भर का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। हम अपने कमरे में होते हैं, बालकनी में होते हैं, छत पर होते हैं या फिर कहीं सफ़र में, लेकिन कहीं ना कहीं अपने भीतर भी होते हैं। शाम सिर्फ सूरज के ढलने का नाम नहीं, यह मन के दरवाजे खुलने का समय भी है।

दोस्तों, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि सब कुछ ठीक होता है, फिर भी मन नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता। किताब सामने होती है या मोबाइल भी हाथ में होता है, लोग आसपास होते हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन होता है। शायद हम बहुत कुछ सोचते हैं, शायद हम खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, और कभी-कभी हम बस थक जाते हैं। भीड़ में भी इंसान अकेला हो सकता है, मोबाइल में सैकड़ों नंबर हो सकते हैं, लेकिन बात करने का मन किसी से ना हो, ऐसे में खामोशी भी दोस्त बन सकती है। कभी-कभी खुद के साथ बिताए गए कुछ पल हमें सबसे ज़्यादा समझाते हैं।

दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर में, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त राधिका राठी। दोस्तों, आजकल हर जगह यही सुनाई देता है, कुछ करो, आगे बढ़ो, सफल बनो, पीछे मत रहो। लेकिन कभी कभी रुकना भी ज़रूरी होता है, हर समय दौड़ना ज़रूरी नहीं। हर सफ़र की अपनी रफ्तार होती है, हर फूल का अपना मौसम होता है। अगर आज का दिन अच्छा नहीं था तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी ऐसा ही होगा। शाम के बाद रात आती है और रात के बाद फिर एक नई सुबह, इसलिए उम्मीद को कभी मत छोड़िए।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए, हरा भरा पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, प्राणो जी का बाग, खोखरिया बिराम मंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: दूसरे संतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। दिल बहुत अजीब होता है, यह छोटी छोटी बातों

पर खुश हो जाता है और छोटी सी बात पर उदास भी। लेकिन दिल की खूबसूरती यही है कि यह टूट कर भी फिर से प्यार करना सीख जाता है। कई बार प्यार मुकम्मल नहीं होता, कुछ बातें अधूरी रह जाती है, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन अधूरा प्यार भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। कुछ लोग ज़िंदगी में साथ देने नहीं बल्कि ज़िंदगी समझाने आते हैं। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसकी बात बिना कहे सुन ले। प्यार हमेशा किसी रिश्ते का नाम नहीं होता, कभी वह दोस्ती में मिलता है, कभी परिवार में, और कभी किसी खास इंसान में। प्यार वह एहसास है जिसमें इंसान खुद को अकेला महसूस नहीं करता।

शाम होते ही कुछ यादें भी दस्तक देती है, पुरानी बातें, पुराने लोग, कुछ अधूरी कहानियाँ। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ चलती रहती है। कुछ रिश्ते किताबों की तरह होते हैं, बंद हो जाते हैं, लेकिन हम उन्हें भूलते नहीं। नाराज़ मत होइए, कभी अपनी पसंद का गाना सुनिए। अगर आज आपका मन नहीं लग रहा है तो इसके लिए खुद पे नाराज़ नहीं होना है। चाय बनाइए, टहल लीजिए या बस आसमान को देखिए, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता और हर मन हमेशा मजबूत भी नहीं होता।

दिल थका हो तो थोड़ा आराम कर लिया करो, जिंदगी है इसे थोड़ा आसान कर लिया करो। हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता, कभी कभी खुद को भी माफ कर लिया करो।

शाम ढली तो एहसासों का कारवा निकला, कुछ दर्द निकले कुछ अरमान निकले, जो बातें दिन भर दिल में छुपी रही वो रात होने से पहले ज़ुबान पर निकली। दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती, कुछ दिन अच्छे होते हैं कुछ मुश्किल, कुछ शामें खुशियों से भरी होती है और कुछ सोच में डूबी हुई। लेकिन याद रखें, हर शाम अपने साथ एक संदेश लेकर लाती है कि चाहे दिन कैसा भी रहा हो, कल फिर एक नई शुरुआत होगी। इसी उम्मीद, इसी मुस्कान और इसी प्यार के साथ अब इजाज़त दीजिए अपनी रेडियो दोस्त राधिका राठी को। अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए और दिल की आवाज़ सुनते रहिए।

0: श्रोता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से रिले कार्यक्रम।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में सुनिए जय माला।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत सचिन देव बर्मन का था, फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने। और अब लता मंगेशकर की आवाज गूंज रही है

0: मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी की बोल थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। शाम की 7:15 जय माला।
1: क्या कहा?
0: यूनुस खान के संग।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: असून येथे कार्यक्रम जयमाला.
1: आप हैं विविध भारती के संग.

0: इनसे मिले कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिल्मकार हैं, रेडियो से जुड़े हैं और दूरदर्शन के न्यूज चैनल से बतौर एडीपी अपनी सेवाएं

0: लेकर रिटायर्ड हुए हैं। आप हैं सुभाष जैन साहब, तो हम उनसे बातचीत करेंगे आज इन सभी विषयों पर। सुभाष जैन जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: तो चूंकि बात आपके दूरदर्शन से जुड़ी है और साथ ही आपके कला से भी जुड़ी बातें हैं, आप एक कलाकार हैं, आप थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और आप फिल्मकार भी हैं, आपने थिएटर पर हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि किस तरह का थिएटर आपने किया और साथ ही जो हिंदी के बड़े बड़े लेखकों के नाटक मंचित किए गए या मंचित आज भी किए जाते हैं, तो हिंदी साहित्य और समाज को बेहतर रूप से समझने में शौकिया रंगमंच की क्या भूमिका रही आपकी नजर में?
1: देखिए, ऐसा था कि हम तो कॉलेज में थे, तो बेसिकली क्या हुआ कि जब एक हमारा यूथ फेस्टिवल होता था कॉलेज में, तो उसमें कुछ लोगों को बुलाते थे भाई, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो ड्रामे में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाइए। तो हम तो थिएटर से दूर दूर से कोई मतलब नहीं था, तो मैं चला गया साथ में। तो मैंने कोई एक लड़का कोई कर रहा था किसी का रोल, वो कर नहीं पा रहा था, तो जो हमारे डायरेक्टर आए थे सिलेक्शन के लिए, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे,
0: एनएसजी से।
1: तो उन्होंने देखकर कहा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो फिर भी नहीं कर पा रहा था। तो मैंने पीछे से जैसे जो मैंने कहा, भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे क्यों नहीं करते हो, कितनी बार कह चुके हैं सर
0: जी।
1: तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोला आप आके क्यों नहीं कर देते। तो मैंने पहले तो मना किया, फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं दिखा देता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो मैंने उसको बताने के लिए वो किया, और शॉर्टकट ये है कि जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया
0: जी।
1: उन्होंने कहा कि आप करेंगे ये रोल
0: जी जी।
1: ऐसे ड्रामे का इंटरेस्ट हुआ, फिर ये हुआ कि यूथ फेस्टिवल में मैं ड्रामा डायरेक्ट भी करवाता था डिफरेंट कॉलेजेस में। और उन दिनों तो हमारे बादल सरकार के, विजय तेंदुलकर के जो नाटक थे वही हम करवाते थे। और एक मैंने प्ले करवाया था, मुझे याद है, बासी खबर। तो काफी उसको अप्रिशिएशन मिला, अवार्ड भी मिला। तो इस तरह से ड्रामे में रहे, और फिर हम दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एनएसजी के नाटक देखते भी थे, और इस तरह से नेशनल स्कूल ड्रामा के जो स्टूडेंट्स थे वो हमारे दोस्त बन गए, तो उनसे भी सीखने को मिला। तो इस तरह से नाटक से हम जुड़े रहे स्टेज के, और स्टेज के नाटक के बाद हमें लगा कुछ कि फिल्म लाइन की तरफ भी देखा जाए क्या है
0: जी।
1: और इस तरह से मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद दोस्तों के साथ इधर उधर बात करते रहते थे, क्योंकि हमारा कोई एक्सपोजर नहीं था फिल्म में।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन एक जुनून था, एक पागलपन था कि हम कुछ क्यों ना करें। तो उसकी वजह से फिर मैंने मुंबई के चक्कर भी लगाए, यहां मिला, इधर मिला, उधर मिला। फिर ऐसे शॉर्टकट बता रहा हूं आपको कि हमें एक फाइनेंसर मिला, और फाइनेंसर ने कहा कि आप बनाइए। तो मैंने शुरू कर दी फिल्म, और गाने जब मेरी फिल्म के मैंने रिकॉर्ड किए, यहीं पहले बॉम्बे लैब होती थी दादर में, वहां मैंने रिकॉर्ड किए गाने। तो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर तो वहीं से थे, कृष्ण कैलाश, लेकिन अरेंजर जो है उत्तम सिंह थे।
0: अच्छा, संगीतकार उत्तम सिंह।
1: संगीतकार उत्तम सिंह, जिन्होंने
0: महान संगीतकार। कितना काम किया। पिछले दिनों ही वो विविध भारती के स्टूडियो में आए थे अपना इंटरव्यू देने।
1: अरे वाह,
0: तब उनकी बातें सुनकर तो हम हैरान रह गए।
1: नहीं, बहुत ही अच्छे और इतने बढ़िया नेचर के हैं वो। तो वो हमारे अरेंजर थे
0: जी।
1: तो हमने फिर अपनी तरफ से तो यही कोशिश थी कि अच्छे से अच्छा जो है काम करें। और उसमें क्या किया कि हमें एक अंदर से इच्छा जागी मेरी कि आशा भोसले जी, यानी आशा दीदी, और आशा ताई भी उनको बहुत प्यार से लोग कहते थे, और आज भी हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन मैं दिल से उनका शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मेरी फिल्म में हाँ की।
0: अच्छा।
1: हाँ, और उन्होंने मेरी फिल्म में एक गाना गाया
0: जी,
1: और ये आज तक मेरी फिल्म में पहला और आखिरी गाना था उनका
0: जी, जी।
1: जो उन्होंने गाया।
0: तो ये कौन सी फिल्म थी इसका?
1: ये फिल्म का नाम था छन्नो,
0: हरियाणवी
1: फिल्म थी छन्नो। और इसमें जो सिंगर थे, आशा भोसले जी थी, सुरेश वाडेकर जी, अनुराधा पौडवाल और दिलराज कौर।
0: अरे वाह।
1: और इस फिल्म की जो मेन लीड हीरोइन थी वो

0: साधना सिंह थी जी,
1: अच्छा,
0: जिन्होंने नदिया के पार
1: जी,
0: में रोल
1: जी जी वो भी अभी कुछ ही दिन पहले आगे गई विविध भारती के स्टूडियो में
0: जी,
1: साधना जी, और उनसे हमने हमारे ही किसी साथी ने लंबी बातचीत की है
0: जी जी। तो बड़ा मतलब एक अच्छा रहा वो भी एक जर्नी जो है, और फिल्म का म्यूजिक बहुत हिट था और फिल्म जब रिलीज हुई तो मुझे अपना बचपन याद आता था जब हम वो सिंगल स्क्रीन थिएटर में विंडो में हाथ डालकर टिकट लेते थे और कई बार हाथ छिल जाते
1: जी,
0: थे
1: जी, जी।
0: तो वो सब चीजें जब मैंने अपनी फिल्म के लिए देखी, लोगों का जो जुनून था।
1: अच्छा अच्छा
0: जी। और मैं आपको रोहतक लिबर्टी सिनेमा की बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल, वहां पर सीट थी मेरे ख्याल में 900 या 1000 के करीब थी, लेकिन वो लोग जो है थिएटर वाले कुछ अपना हिसाब किताब क्या जुगाड़ करते थे तो वो 300-400 एक्स्ट्रा सीटें लगा देते थे।
1: हाँ।
0: और वो जो जब आप अपनी फिल्म की वो लोगों की सीटियां और तालियां सुनते हैं, सारा आपका जो आपने मेहनत की है
1: वो सफल हो जाती। तो आपने भी क्या अपनी फिल्मों में कोई फूहड़पन या ऐसा कोई मसाला डालने की कोशिश की?
0: नहीं, मैंने अपनी फिल्म में, और मेरा कोई सेंसर कट नहीं था फिल्म के अंदर, क्योंकि सेंसर सर्टिफिकेट हमें पहले मुंबई से मिलता था, पहले उसको बॉम्बे बोलते थे, और मैंने ऐसी कोई नहीं कही है, क्योंकि उस तरह का मेरा अपना नेचर नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस देश में साफ सुथरी चीज बहुत लोग देखना चाहते हैं और अगर चंद लोग फूड चीज देखना चाहते हैं तो मैं उनमें शामिल नहीं होना चाहता
1: जी। तो सुभाष जी, अभी एक शॉर्ट फिल्म का टीजर आया है आपकी एक फिल्म का, उसका क्या विषय है और क्या नाम है, इसके बारे में हमारे श्रोता जानना भी चाहेंगे।
0: श्रोताओं, मैं एक फिल्म बहुत पहले मैंने बनाई थी, शॉर्ट फिल्म सावधान।
1: सावधान
0: जी। और उस फिल्म को पहले, बहुत लंबी स्टोरी है कि ये हम उसको सीरियल बनाना चाह रहे थे क्योंकि हमारा वो सीरियल अप्रूव हो गया था, और जो भी है उसके बाद फिर अभी कुछ वर्षों के बाद लगा कि नहीं उसको शॉर्ट फिल्म बना के उसको रिलीज किया जाए। तो सावधान फिल्म जो है मेरी बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट पे है, वाइल्ड एनिमल्स मिंगल विद ह्यूमन लाइव्स, यानी कि जो जंगली जानवर हैं वो आदमियों के साथ किस तरह का उनका रिलेशंस है, किस तरह का उनको रिलेशंस रहा था, और आज भी हम जंगल में जंगली जानवरों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। और एक चीज नई शुरू हो रही है, आप देख रहे होंगे कि लोग बाग जीप में बैठ के जाते हैं और बड़े खुश होकर फोटो डालते हैं, देखिए टाइगर हमारे आगे से जा रहा है। तो आपके घर के बाहर
1: बिल्कुल
0: अगर शहरों में टाइगर घूमे तो आपको कैसा लगे, ये मेरी सोच
1: थी। बहुत बड़ी बात। तो उन्हें कैसा लगता होगा जब हम उनके क्षेत्र में जीपे लेकर घूमते हैं बेधड़क, तो ठीक उसी प्रकार उनको भी लगता होगा जैसे हमें लगेगा कि हमारे घर के आगे से टाइगर या चीता निकल गया है
0: जी। और एक चीज मैं इस सावधान के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये सावधान में जो म्यूजिक दिया था रविन्द्र जैन साहब ने दिया था।
1: अच्छा
0: जी।
1: दादा ने
0: और इसके जो सिंगर थे मोहम्मद अजीज साहब थे, और इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो प्रीतम दा ने दिया था।
1: वाह।
0: और प्रीतम दा ने मुझे एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है, और उस वक्त भी मैं कहता था कि प्रीतम दा एक दिन बहुत महान संगीतकार बनेंगे और वो बने
1: जी।
0: उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं चेक उनको देने लगा छोटा सा तो उन्होंने, मैंने कहा कि प्रीतम दा इसका नाम क्या लिखूं, आपका स्पेलिंग क्या नाम की, तो उन्होंने कहा था सुभाष जी आप कुछ भी नाम लिख दीजिए, ये मेरी जिंदगी का पहला चेक।
1: क्या बात है।
0: और मैं आज प्रीतम दा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूजिक दिया और आज तो वो हिंदुस्तान के जिसको कहते हैं बहुत बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं। तो इस तरह से ये रहा और जल्दी इसको रिलीज करेंगे
1: जी,
0: और मेरे दर्शकों को और श्रोताओं को
1: ये देखने को मिलेगी।
0: हम
1: बिल्कुल उम्मीद करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ये फिल्म दर्शक देखे और उसको प्रोत्साहित करे। एक फिल्मकार होने के नाते आगे आपकी क्या योजना है, आप कम से कम शब्दों में हमें बताएं।
0: जी मैम, मैं एक फीचर फिल्म बनाना चाह रहा हूँ और पिछले कुछ दिनों से मैं एक अच्छे सब्जेक्ट की तलाश में हूँ।
1: जी
0: जी और मैं कुछ लोगों से मिल भी रहा हूँ और सब चीजें हो रही हैं। जिस दिन मुझे कोई अच्छा सब्जेक्ट मिल गया, क्योंकि रीजन क्या है कि आज

0: के टाइम में बहुत फिल्में बन रही हैं और उसमें से बहुत सी अच्छी फिल्में बन रही हैं, लेकिन जो विषय मेरे दिल को भा गया मैं उस पर फिल्म बनाऊंगा और लोगों के सामने आएंगी। अब लोग तो खुद ही देख के बताएंगे कि कैसी बनी कैसी नहीं, लेकिन मैं फीचर फिल्म बनाने की एक इच्छा है।
1: बहुत सुंदर, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी ये फिल्म जल्द से जल्द शुरू हो और हमें देखने को मिले।
0: थैंक यू।
1: तो सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए दिया है। विविध भारती परिवार की ओर से आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं।
0: थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं विविध भारती और अपने विविध भारती के श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम।
1: शुक्रिया।

0: आप सुन रहे थे मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता। संपादन सहयोग रीमा जोशी का। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: इनसे मिलिए,

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं प्रहसन सिलसिला बहानों का। लेखक हैं सुरेंद्र कौशिक, निर्देशक सुशील बैनर्जी।
1: हे भगवान, 7:30 बज गए, सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। लड़के ने आंखें सुजाली रोते रोते, रोए नहीं तो क्या करेगा भागा, कैसे स्कूल जा पाएगा कल वो बेचारा बिना जूते। और ये श्रीमान सिकंदर खुसट विलंबित जी उर्फ हमारे लेज लतीफ पति देव अभी तक नहीं लौटे।
2: सिकंदर भाई, सिकंदर भाई।
3: कौन कौन है? अरे भट भैया आप।
2: नमस्ते कांता भाभी, सिकंदर भाई घर में ही होंगे ना? क्या हाल है अब नरेश बेटे का? अरे कैसी गिरी इमाम दस्ते की इतनी भारी मूसली पांव पर?
1: इमाम दस्ते की मूसली? हाय हाय, चुप चुप बोलो भट भैया, नरेश तो अभी अभी ट्यूशन पढ़ने गया है। अच्छा भला
2: ट्यूशन पढ़ने? तो नरेश बेटे को कोई चोट या फ्रैक्चर नहीं हुआ?
1: नहीं तो।
2: और सिकंदर भाई कहाँ है?
1: वो तो मैं आप ही से पूछने वाली थी, अभी तक नहीं लौटी है दफ्तर से।
2: दफ्तर से? मगर दफ्तर से तो वो 3 बजे ही निकल गए थे।

0: तीन बजे
1: छुट्टी लेकर नरेश बेटे के पांव पर इमाम दस्ते की,
0: फिर वही इमाम दस्ते की मूसी। अरे भैया हमारे यहाँ तो इमाम दस्ता ही नहीं है, वो मरी मिक्सी है।
1: मिक्सी इमाम दस्ता वो...
0: पर भट्ट भैया बात क्या है, कुछ बताओ तो भट्ट भैया।
1: अब क्या कहूँ भाभी, आज मिस्टर सिकंदर जब फिर देर से पहुंचे तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। एक हाथ में लंच बॉक्स और दूसरे में चप्पल।
0: चप्पल?
1: जी हाँ, और वो भी टूटी हुई। बुरी तरह हांफते हुए घबराए घबराए कमरे में दाखिल हुए।
2: शुक्र है सुपरिंटेंडेंट साहब नहीं है सीट पर, शायद आए भी ना हो अभी तक। फिर अरे फिर तो झट से 9:55 की हाजिरी लगा दूं। आए हैं मर गए, मेरे नाम के आगे तो इतना बड़ा लाल चौराहा यानी कि क्रॉस लगा है।
3: भी सर। तो आज भी आप पूरे एक घंटे लेट आए हैं मिस्टर सिकंदर खुद तक विलंबित।
2: सर वो
3: देखा मिस्टर भट्ट,
1: विलंबित जो ठहरे सुपरिंटेंडेंट साहब।
3: तो श्रीमान विलंबित जी,
2: जी
3: अब आज के दिन आपके विलंब का क्या कारण है?
2: जी सुपरिंटेंडेंट साहब वो बात ये है,
3: बोलो बोलो, मगर ध्यान रहे पिछले किसी बहाने को इतनी जल्दी रिपीट मत कर जाना।
2: जी जी मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सुपरिंटेंडेंट साहब।
3: अरे मगर क्यों, अभी तक तुमने ऐसा कोई बहाना रिपीट तो किया नहीं।
2: जी वो मैं समझा नहीं सर।
3: मैं तुम्हें वो सिलसिला याद दिला देता हूँ जिस पर तुम रोजाना बाकायदगी के साथ अमल करते आ रहे।
2: कैसा सिलसिला?
3: अरे भाई बहानों का सिलसिला विलंबित जी, कल आप लेट इसलिए आए थे कि आपके पड़ोस में एक बुढ़िया की मौत हो गई।
2: जी हाँ जी हाँ।
3: और उसे कंधा देने वाले चौथे व्यक्ति सिर्फ आप ही थे।
2: जी हाँ।
3: क्योंकि बाकी आसपास के लोग सब तब तक अपने दफ्तर जा चुके।
2: जी हाँ जी हाँ, ये तो मेरा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य था सर।
3: परसों आप इसलिए लेट थे कि आपने कुछ ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया, अपने ससुर जी की पहली बरसी।
2: मिस्टर भट्ट माइंड योर ओन बिजनेस।
1: मगर सिकंदर भाई, अपने ससुर की पहली बरसी और तुमने खुद मनाई, तुम्हारे तो शायद दो दो साले हैं।
2: मगर हाँ वो दोनों साले वो कनाडा गए हुए हैं, वहाँ शराब खाने के लिए कौन सा पंडित आएगा।
3: ओ आई सी।
2: जी सुपरिंटेंडेंट साहब, ऐसे में क्या मुझे वो धार्मिक कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहिए था?
1: जी हाँ सुपरिंटेंडेंट साहब, आखिर ससुर भी तो पिता समान ही होता है, जैसे पिता का श्राद्ध वैसे ही ससुर का, पत्नी का पिता अपना पिता।
2: आप चुप रहिए मिस्टर भट्ट, देख लिया सुपरिंटेंडेंट साहब किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग मेरी धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य परायणता का। क्या इनके यहाँ आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कभी कोई नहीं मरा या कभी कोई नहीं मरेगा कब?
3: छी छी छी, इतने ओछे और घटिया शब्दों पर उतर आए तुम मिस्टर सिकंदर, एक तो आप लेट आए।
2: तो इन लोगों को क्यों दर्द होता है सर, क्रॉस लगाए मेरे नाम के आगे, डांटने का हर सर आपको है, सेक्शन इंचार्ज को है, ये क्यों टकराते हैं मेरे लेट आने पर? दे शुड सी देयर ओन वर्क, अपना काम देखें।
1: हमें अपने काम के अलावा आपका काम भी देखना पड़ता है मिस्टर सिकंदर, जब आप सीट पर नहीं होते।
2: ऐसी कौन सी आफत आ रही है?
3: टॉक सेंस मिस्टर सिकंदर, ऐसे अर्जेंट मामलों के भी लटके रहने या लेट हो जाने के कारण ये नहीं है कि हम लोग वक्त जरूरत अपने काम पर नहीं होते।
2: सर
3: घंटों अपनी सीटों से गायब रहते हैं या फिर आपकी तरह हमेशा लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। काम के प्रति तुम्हारे मन में कोई कर्तव्य भावना नहीं है?
2: नहीं।
3: चलिए चीफ के पास।
2: नहीं सुपरिंटेंडेंट साहब, कर्तव्य की भावना नहीं होती तो क्या इतनी भयंकर स्थिति में मैं ऑफिस आता?
3: क्यों आज क्या हुआ बोलो।
2: वो सर मेरे छोटे लड़के के पैर में फ्रैक्चर हो गया सर।
3: What? अरे ये कैसे हो गया सिकंदर?
2: सीधा अस्पताल से भागता चला आ रहा हूँ मिस्टर भट्ट, रास्ते में चप्पल भी टूट गई।
3: और तुम्हारा लड़का क्या प्लास्टर चढ़ा?
2: हाँ सर, प्लास्टर चढ़ने के बाद उसे उसकी माँ टैक्सी में डालकर घर ले गई और मैं इधर ऑफिस को भागा। मुझे पता था सर के अर्जेंट पेपर डील करने।
3: ओह आई एम सॉरी मिस्टर सिकंदर।
2: ऑलराइट सर।
1: मगर भाई फ्रैक्चर हुआ कैसे?
2: वो इमाम दस्ते की मूसली गिरा दी मेरी लड़की ने उसके पैर पर।
3: ओह माय गॉड, अब कैसा है तुम्हारा लड़का?
2: क्या मालूम कैसा है सर, मैंने तो रोते रोते छोड़कर उसे दफ्तर की ओर लपका था, अब तो घर शाम को पहुंच कर ही देखूंगा।
1: अरे अरे बेचारा मासूम बच्चा। अरे भाई तुम चाहो तो साहब से कहकर बेशक जल्दी घर चले जाना सिकंदर। क्यों सुपरिंटेंडेंट साहब?
3: हाँ, कोई बात नहीं, मगर मिस्टर सिकंदर की सीट पर कई अर्जेंट पेपर है।
1: वो मैं देख लूंगा सर, आप इसे जल्दी जाने दीजिए, हाजिरी तो इसने लगाई दी है सर।
3: अच्छा मिस्टर सिकंदर, अभी तो चीफ का राउंड होने वाला है, एक दो घंटे बाद चले जाना।
2: थैंक यू सर, मैं 3 बजे चला जाऊंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
0: हाय राम, 3 बजे के चले अब तक घर नहीं पहुंची, और भैया 7 बजे दुकानें बंद होती है, नरेश कल से स्कूल के सफेद जूतों के लिए रो रहा है।
1: आप कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया हूँ। और हद होती है बहानेबाजी की भी। मैं तो बच्चे की खैर खबर लेने आया था और
0: उन्हें खुद अपने घर की खबर नहीं।

0: तो सिकंदर भाई वाकई पक्के बहानेबाज बन चुके हैं।
1: पक्के से पक्के कहो भट भैया,
2: कई बार तो हमारा भी दिल दहल जाता है उनकी झूठी बातों को सच समझकर। उधर दफ्तर वाले हम औरतों को ही दोषी मानते होंगे अपने पतियों के लेट कराने के लिए।
3: अरे भैया तुम उनके साथ ही हो, किसी तरह खत्म कराओ ना उनकी बहानेबाजी की आदत, हम तो भट भैया बहुत परेशान हो चुके हैं।
0: और उधर दफ्तर के लोग भी भाभी जी, उनका रोज रोज का लेट आना, नित नए बहानों का सिलसिला, वो भी ऐसा तगड़ा कि बस क्या कहें।
1: मगर झूठ तो झूठ ही होता है भट भैया।
0: अगर उस झूठ को झूठ साबित करने के लिए क्या दफ्तर के अफसर रोज रोज घरों में जाकर जांच पड़ताल करें, बीवी बच्चों से सच्चाई उगलवाएं, घर वालों का भी कोई फर्ज होता है।
1: नहीं नहीं भैया, यहाँ घरों में तो हमें ही उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है।
0: कभी तो पकड़ में आएंगे सिकंदर भाई, बुरा तो मानेंगे मगर राह रास्ते पर तो आ जाएंगे।
4: नजर लागी है पानी घटवा न जाए, अरे नजर लागी है पानी घटवा न जाए, घटवा न जाए।
1: हाय राम, अभी तक गुसलखाने के फुहारे के नीचे भरत नाट्यम कर रहे हैं। अजी करते हो?
4: अरे क्या है, नहा रहा हूँ।
1: घंटे भर इस फुहारे की भागीरथी को अपने सिर पर धारण करके तुम्हारा गटवा गीला नहीं हुआ? मैंने कहा निकल आओ, 10:30 बज चुके हैं, तब तो नहीं जाना आज क्या? अरे छुट्टी लेनी है आज की।
4: अरे क्या मैं बेवकूफ हूँ जो उस दिन की छुट्टी लूँ जिस दिन खुद अफसर छुट्टी पर हो।
1: अजी वाह, बड़े कर्तव्य परायण हो गए हो, जो अफसर की गैर हाजिरी में दफ्तर जाना और भी खास तौर से जरूरी समझने लगे।
4: बिल्कुल
1: हो। मगर जब इतनी वफादारी की भावना जाग उठी है तो फिर लेट भी क्यों जाते हो? सुनो जी, कब तक उल्टे सीधे बहाने बनाते जाओगे, फंसोगे किसी दिन बुरी तरह। श्रीमान सिकंदर खूसट विलंबित जी।
4: अरे जा जा, बरसों बीत गए नौकरी करते करते, पूरी मौज मस्ती से है। अरे ऐसे ऐसे बहाने आते हैं कि अफसर नाराज होने की बजाय सक पकाकर हमदर्दी जगाने लगता है, और जितने लेट पहुंचे उतनी जल्दी छुट्टी पर जाने की कह देता है।
1: हाय राम, कैसे ढीठ होते हैं ये लेट लती।
4: और फिर आज तो हम खुद ही अपने अफसर होंगे। अरे पहुंच जाएंगे टहलते टहलते और लौट आएंगे जब तुमसे मिलने को दिल बेताब होगा।
1: चलो हटो भी, चलकर नाश्ता कर लो और दफ्तर पहुंचो वक्त से। हम औरतों को बदनाम मत करो। हाँ।
4: अरे वाह, दफ्तर लेट पहुंचे हम और डरो तुम लोग। चलो बेटा सिकंदर भाई, पत्नी का दर्द। ओके बाय।
5: ये सर, मैं सुपरिंटेंडेंट बोल रहा हूँ।
6: मारे, अरे सुपरिंटेंडेंट साहब तो वो बैठे भीतर कमरे में।
5: यस सर, मैं तो आपका मैसेज मिलते ही दफ्तर पहुंच गया था सर, मगर मैं क्या करूं सर, वो उस अर्जेंट केस की फाइल शायद मिस्टर सिकंदर की मेज की ड्रॉअर में लॉक्ड है सर। जी हाँ, मिस्टर सिकंदर अभी तक नहीं आया सर। आई एम सॉरी सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। जी मैं कोशिश करता हूँ सर।
6: अरे बाप रे, यहाँ तो नजारा ही दूसरा है। फंसे बेटा सिकंदर, आज तो साहब मेरा ही अर्जेंट केस बना देंगे। अरे अब क्या करूँ, क्या बहाना बनाऊँ लेटाने का। हाँ चुपचाप यहाँ से दबे पाँव घर लौट जाऊं और बीमारी की छुट्टी मार दूं। अरे नहीं, वो फाइल तो मेरी ड्रॉअर में बंद है, ये चाबी लेने मेरे घर पहुंचे तो इस अर्जेंट केस के लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करूं इस इमरजेंसी की घड़ी में। अरे वो मारा, ये कुछ हुई ना नई बात है। ठीक है,
7: गुड मॉर्निंग सर।
8: ओ यू विलंबित के बच्चे।
7: यस सर।
8: आज तुमने मेरी सारी इज्जत पट्टी में मिलवा
7: दी। नो सर।
8: मेरी इतने वर्षों की नौकरी को कलंकित कर दिया।
7: नो सर।
8: मैं तुम्हें डिसमिस करा कर जोड़ूंगा।
7: नो सर, नो सर।
8: यस डिसमिस, नॉट लेस देन दैट।
4: मगर कुछ मेरी भी तो सुनिए सुपरिंटेंडेंट साहब।
8: क्या सुनिए भाई?
4: मेरे साथ भी तो कोई इमरजेंसी हो सकता
8: है। व्हाट इमरजेंसी, क्या हुआ, कौन मर गया, कौन अस्पताल चला गया, बोलो।
4: सर मेरी पत्नी सर।
8: क्या?
4: मेरी बीवी।
0: क्या कह रहे हो सिकंदर भाई, कल शाम तक तो भाभी बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैंने खुद देखा। अरे भाई एकदम क्या हो गया?
9: एकदम से वो उल्टियां सर, उल्टियां सर, उल्टियों पर उल्टियां सर, तन घुटने लगा, फिर उल्टियां, उल्टियों पर उल्टियां।

0: सर में घर आ गया, टैक्सी पकड़ी और फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले गया। मगर जब तक सर,
1: तब तक क्या क्या हुआ, क्या हुआ तब तक? हाँ बोलो भाई
0: सर।
1: हाँ बोलो।
0: उल्टियाँ बंद हो चुकी थी और डॉक्टर ने अच्छी तरह मुआयना करके बताया सर सर के वो
1: हाँ बोल भाई बोल,
0: वो पाँव भारी है।
1: पाँव भारी है यानी कि नए बच्चे की माँ बनने वाली?
2: आपको कोई तकलीफ है?
3: आई से शट अप
0: जी।
3: यू लायर, झूठे बहाने बात मत कर।
0: सुपरिटेंडेंट साहब आप मुझे गालियां दे रहे हैं, ये ऑफिस है सर।
3: अरे मेरा बस चले तो गोली से भी उड़ा दूं तुम जैसे झूठे मक्कारों। वाह क्या बहाना बनाया है, बीवी का पांव भारी है। आई से इट इज इम्पॉसिबल।
1: माफ कीजिए सर, मिस्टर सिकंदर भला इसमें भी क्या झूठ बोल सकते हैं?
0: यस
1: सर, सर सच्चाई तो कुछ महीने बाद सामने आई जाएगी सर।
3: सच्चाई?
0: यस सर।
3: अरे ऐसे झूठे बहाने बाजों के कारण तो सच्चे लोगों पर से भी विश्वास खत्म हो गया। सच्चाई जानना चाहते हो?
0: यस सर।
3: तो ये देखो ये रही सच्चाई।
1: ये कैसा कागज है सर?
3: तुम ही पढ़कर बताओ मिस्टर सिकंदर।
0: यस सर। अरे सर ये तो मेरे स्पेशल इंक्रीमेंट का ऑर्डर है सर।
3: ऑर्डर नहीं अभी ड्राफ्ट है, खुद मैंने तैयार किया।
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।
1: स्पेशल इंक्रीमेंट का?
0: यस
1: सर। कौन हकदार होता है इस स्पेशल इंक्रीमेंट का?
3: जो कर्मचारी अपने और सारे देश की भलाई और खुशहाली का राज समझते हैं और ठीक समय पर सही कदम उठाते हैं।
1: मिस्टर सिकंदर इतने समझदार कब से हो गए सर?
3: ये भी जानना चाहते हो? ये रहा दूसरा कागज, बताओ सिकंदर क्या है ये कागज? बोलो।
0: ये तो मेरा फैमिली प्लानिंग यानी सर वो ऑपरेशन कराने का सर्टिफिकेट।
3: छी छी सिकंदर, तुम्हारे बहानों का सिलसिला इतने घिनौने झूठ तक पहुंच सकता है?
0: बस सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैं कहता हूँ मेरी बात सुनिए।
3: आई विल सी दैट यू आर डिसमिस्ड।
0: आई विल नॉट मर जाऊंगा सरकार, मैं अगर नौकरी छूट गई साहब कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा गली में बंदा था।

सिलसिला बहानों का। अभी आप सुन रहे थे सुरेंद्र कौशिक का लिखा ये प्रहसन। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति।

अय्यसुने चित्रलोक, सुनिधि चौहान की आवाज में चमेली फिल्म का गाना, इरशाद कामिल के बोल, संदेश शांडिल्य की तरह से है।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक।
1: आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली, अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली के आज हाथ थाम

परिणीता फिल्म का गीत सुनिधि चौहान की आवाज में आपने सुना। अब मोहित चौहान और ए आर रहमान की आवाजों में ये गाना सुनिए। फिल्म का नाम है रॉकस्टार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलॉसफी

0: यानी कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की

0: स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल,

0: तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद।

दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।

0: जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए। बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा।

0: भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

और ये गीत है साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप भी याद रखेंगे क्योंकि फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। तेरी यादों की डोर से बंधा मेरा मन, न जाने कितने सपने बुनता रहता है। कभी तेरी एक मुस्कान इन धागों को और मजबूत कर देती है, तो कभी तेरा इंतजार इन्हें और भी अनमोल बना देता है। नजर तो नहीं आते ये प्यार के धागे, मगर हर धड़कन में इनकी छुअन महसूस होती है। शायद इसी बंधन का नाम मोहब्बत है, जो दूरियों में भी साथ निभा।

रोज एक ही ख्वाब मेरी आंखों में चला आता है. उस ख्वाब में तुम होते हो और तुम्हारे साथ कुछ अधूरी सी प्यारी सी बातें होती हैं. कभी तुम मुस्कुरा कर पास आ जाते हो तो कभी बिना कुछ कहे ही दिल की बात कह जाते हो. सुबह आंख खुलती है तो ख्वाब टूट जाता है, लेकिन तुम्हारी वही मुस्कान मन में ठहर जाती है. शायद इसी का नाम प्यार है, जब हकीकत से पहले कोई अपने ख्वाबों में बसने लगे.

मैंने आज दिल से तुझे अपना माना है, तेरी हर सांस को ही अपना जाना है। तू भी मेरी धड़कनों का हिस्सा बन जा, मेरे हर ख्वाब का सच्चा किस्सा बन जा। ना मैं तुझसे दूर जाऊं, ना तू मुझसे कभी, ये साथ हमारा टूटे न चाहे आए कैसी भी घड़ी। हम दोनों का ये रिश्ता बस यूं ही रहे, हर जन्म में तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुझे देखकर मन में एक अजीब सा अपनापन उतर आता है, जैसे तेरी हर खामोशी भी मुझसे कुछ कह जाती हो। तू सावन है तो मैं किसी सूखी नदी सी हूँ, तेरे आने से ही जैसे मैं पूरी हो जाती हूँ। तेरी हंसी में मुझे अपना बचपन दिखता है, तेरी आंखों में मेरा हर सपना सजता है। और सच कहूं तो तुझे देखते ही लगता है कि मैं तुझे युगों युगों से जानती हूँ।

मैं उस बात से अनजान हूँ जिसने मेरी रातों की नींद चुपके से ले ली। अब हर रात लंबी लगती है, जैसे समय भी मुझसे रूठ गया हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, पर वजह कोई नहीं बता पाता। खामोशी भी अब कुछ कहती सी लगती है, पर मैं समझ नहीं पाती। बस इतना एहसास है कि कुछ तो है जो मुझे अंदर ही अंदर जगा रहा है, और मैं अब उस नए एहसास को और करीब से जानना चाहती हूँ।

दो नैन है उसके, पर उनमें मेरी ही एक कहानी बसी है। कुछ उसके होठों ने कभी कहा नहीं, पर मैं उसे हर बार आंखों में पढ़ लेती हूँ। कुछ बातें वो छुपा लेता है और कुछ मैं भी मुस्कुराकर अनसुना कर देती हूँ। लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हर एहसास मुझे साफ साफ समझ आता है, जैसे कोई अधूरी किताब हो जिसे हम दोनों मिलकर जी रहे हो, और मैं हर बार उसके नैनों में खुद को उसकी मोहब्बत बनकर देख लेती हूँ।

0: आई रात।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना, तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही

0: घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
1: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन
2: यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी समाचार का रिले कुछ ही पलों के बाद किया जाएगा।

0: आसान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफर।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली